हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद विविध भारती के कार्यक्रम वंदन बार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा

0: विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा की विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

इस झरोखा के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 256। संगीत सरिता, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला घुंघरू की तरह का भाग एक। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। इसी के तुरंत बाद सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8 बजे, 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। आलेख एवं स्वर सोनाली।

पाठक का। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकते हैं दिन में 2 बजे। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार आनंद बख्शी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और पुनः प्रसारण रात 9:30। दिन में 11:00 सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग, 12:00 हिंदी में समाचार और 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर वो कार्यक्रम है जिसमें हमारे श्रोता फेसबुक कमेंट्स द्वारा हमसे जुड़ते हैं दिन में 1:00। दोपहर समाचार होंगे दिन में 2:15 पर और सदाबहार नगमे सुनिए 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम का होगा समय दिन में 3:00 और दिन में 4:00 सुनिए पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। राकेश आनंद बख्शी से यूनुस खान की बातचीत का भाग 1 आपको सुनवाएंगे, संपादन सहयोग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय दिन में 4:00। शाम 5:30 सुनिए कार्यक्रम तराने नए पुराने, शाम 6:00 हिंदी में समाचार, जिसके बाद तराने नए पुराने कार्यक्रम 6:30 तक आप कंटिन्यू सुन सकेंगे। शाम 6:30 होगा झरोखा। संध्या रंजन के अंतर्गत सुनिए चित्रपट संगीत, शाम 6:35 पर, शाम 6:45 पर संगीत सरिता। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7:00 और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8:00 सुनिए हवा महल में नाटिका चूहा प्रकरण, लेखन सुधा जौहरी, निर्देशन सुशील बैनर्जी। रात्रि 8:15 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9:00 होगा कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10:00 सुनिए छाया गीत कार्यक्रम। छाया गीत में आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11:00 रंग तरंग।

ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:35 होने को है। अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 256।

लक्ष्मण को श्रीराम की खोज में गया देख रावण यति का वेश धारण कर सूनी कुटी के समीप पहुंचता है। सीता जी को अनेक प्रकार की मनगढ़ंत कथाएं सुनाकर वो उनके मन में भय अथवा प्रेम जगाने के प्रयत्न करता है। एक यति के मुंह से दुष्टतापूर्ण गुहार सुनकर सीता के मन में संशय

उत्पन्न होता है कि तभी रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है। उसका नाम सुन और रूप देखकर सीता भयभीत होती हैं, किंतु धैर्यपूर्वक उसको श्री राम के पराक्रम की धमकी देती हैं। क्रुद्ध रावण बलात् उन्हें रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चलता है। सीता का विलाप सुन मार्ग के सभी जड़चेतन प्राणी व्यथित होते हैं। गिद्धराज जटायु सीता जी को पहचानकर रावण से उन्हें मुक्त कर देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु अपनी विनय का रावण पर कोई प्रभाव न होता देख जटायु रावण को पृथ्वी पर ला पटकते हैं और चूंच मार मार कर उसे घायल कर देते हैं।

0: अनस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली बेलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज से हम शुरू कर रहे हैं एक श्रृंखला घुंघरू की तरह। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी संगीत प्रेमियों को राजेश जौहरी का नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम वो मंच है जहां आते हैं हिंदुस्तान के मूर्धन्य कलाकार। ये वो कलाकार होते हैं जिनके लिए संगीत न सिर्फ एक इबादत है बल्कि जिंदगी का दूसरा नाम भी। आज ये मंच सुशोभित है ऐसे व्यक्ति से जिनका व्यक्तित्व विविध विधाओं में बिखरा है और निखरा है। मैं परिचय दे रहा हूं हमारे देश और हमारे फिल्म उद्योग के लब्ध प्रतिष्ठित कवि, गीतकार, गायक और संगीतकार रविंद्र जैन साहब का। दादा से जुड़े हैं वो गीत जो अपने जन्म से ही दीर्घायु पाते रहे। आपको याद है ना, घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं। फिल्म का गीत होने के बावजूद इस गीत का साहित्यिक तत्व आज भी सृजनकारों के लिए प्रेरणा है। जब दीप जले आना,

0: एक डाल पे तोता बोले, तेरा मेरा साथ रहे, दूर है किनारा, राम तेरी गंगा मैली, हर हसी चीज का मैं तलबकार हूं, गीत गाता चल। और अनेक ऐसे ही गीत जो मन पटल पर दर्ज हैं। महान कलाकार रविंद्र जैन साहब का संगीत सरिता में होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विविध भारती में संगीत सरिता का होना। विविध भारती की ओर से, संगीत सरिता की ओर से दादा का स्वागत करते हुए मैं आपको नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार दादा।
1: नमस्कार राजेश। और संगीत सरिता में अवगाहन करने वाले तमाम श्रोताओं को नमन करता हूँ। राजेश का सवाल है कि मैंने दोनों पक्षों को कैसे संभाला। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने दोनों पक्षों को नहीं संभाला है, बल्कि दोनों पक्षों ने मुझे संभाला। गीत इस तरह बचपन से मेरी ज़िंदगी में शामिल हो गए कि मेरा परिवार साहित्यिक रहा है। मेरे पिताश्री संस्कृत के बड़े विद्वान थे और बड़े भाई साहब साहित्य को डील करते थे, साहित्य में साहित्य रत्न वगैरह कर रहे थे और उनकी तमाम किताबें, उनसे रचनाएं सुनता रहता था। क्योंकि मैं खुद ज़्यादा नहीं पढ़ सकता था, मुझे डॉक्टर की तरह से पढ़ने को बिल्कुल मना था, मेरी आँखों की रोशनी कम होने की वजह से, लेकिन सुनता रहा हूँ, उनसे घंटों बैठ के सुना है। और जहाँ जहाँ अंत्याक्षरी कहीं होती थी, वहाँ कोई अगर मैं, मुझे कुछ याद नहीं आता था तो कुछ ना कुछ जोड़ना शुरू कर देता था, और वहाँ से ही ये जोड़ने का सिलसिला पंक्तियों का शुरू हो गया। और चूँकि अलीगढ़ का हूँ, इसलिए हिंदी और उर्दू और ब्रज भाषा तीनों ज़बानों का वहाँ संगम है और उनका समावेश मेरे जीवन में बचपन से ही हो गया। चूँकि मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है विधिवत और गायक बनना चाहता था, लेकिन इसमें मुझे संगीतकार बनाने में मैं आकाशवाणी को ज़िम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि इस पे जो प्रोग्राम्स होते थे क्लासिकल के, वो सुन सुन के मैं ये समझ गया था कि मैं इनसे अच्छा नहीं गा सकता हूँ, तो मैं अपनी दिशा बदल दूँ और कंपोजिशन का काम तभी से शुरू कर दिया मैंने। और इस तरह धीरे धीरे दोनों विधाएँ मेरे साथ हो गई, संगीत और गीत। यूँ भी अगर हम संगीत से गीत को निकाल दें तो संगीत सूना हो जाएगा, सिर्फ सा रह जाएगा, लेकिन साथ ही संगीत शुरू होता है, सा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सा पे मैं आपको आगे चल के एक रचना सुनाऊंगा जो शलज पे ही आधारित है। फिल्मी गीतकार में इस तरह बन गया कि जब कलकत्ते से यहाँ आया तो मेरे पास जो धुनें थी उन पे लिखने के लिए और कोई यहाँ के राइटर्स नहीं मिलते थे, गीतकार नहीं थे, जो मैंने टूटे फूटे बोल कहे हुए थे वही हमारे राष्ट्रीय प्रोडक्शंस वालों ने, सीपी साहब ने, राधेश्याम जी ने पसंद किए और उन्हीं को रिकॉर्ड कर लिया, और वो चूंकि चल पड़े तो मुझे गीतकार भी मान लिया गया।
0: दादा, संगीत और गीत की एक नई परिभाषा दी आपने, कितना उपकार किया आपने इस विधा पर। जैसा आपने कहा कि आपके घर में साहित्य का माहौल रहा, आपके पिताश्री, आपके बड़े भ्राता, उसका प्रभाव आप पर पड़ा, लोकधुनों का प्रभाव आप पर हुआ, आपने आकाशवाणी के कार्यक्रम सुने और उससे प्रभावित होते रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप बंबई में आए, आपका सबसे पहला गीत फिल्म उद्योग में और किस फिल्म के लिए, किसने गाया और किस तरह उस गीत का जन्म हुआ?
1: मेरा पहला फिल्मी गीत जो रिकॉर्ड हुआ वो हमारे हरदिल अजीज, और मैं ये कहूँगा कि आवाज़ के एकमात्र धनी आदरणीय रफ़ी साहब, जिन्होंने 14 जनवरी 1972 में पहला गीत रिकॉर्ड किया मेरे लिए, शायद 71 था, एक साल में कहीं भूल रहा हूँ, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन गीत याद है मुझे। वो गीत नारी सिपी साहब की फिल्म सिलसिला है प्यार का शुरू करने जा रहे थे, जो एक शायर की कहानी थी, तो वो फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन वो गीत अभी तक यूं का यूं ही पड़ा हुआ है, वो गीत फिल्म में नहीं आया किसी में, लेकिन आपको मैं चाहूँगा कि उसका मुखड़ा सुना दूं,
0: जरूर,
1: ताकि लोगों को याद रहे, सनद रहेगी आकाशवाणी में।

0: और सचमुच ये सिलसिला तभी से चल पड़ा और आज तक आपकी सेवा में हूँ।
1: और इस तरह हमारे फिल्म उद्योग को रविंद्र जैन नाम का एक महान अध्याय मिला, एक महान संगीतकार और गीतकार मिला। अच्छा दादा, ये बताइए कि आपके ऊपर जैसे साहित्य का इतना प्रभाव रहा, लेकिन फिल्म की सिचुएशन पर गीत लिखना, एक गीत बनाना जो पर्दे पर बहुत सशक्त रूप से उभरे, वो एक अदा है, एक कला है। इस अदा और कला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
0: मेरा फिल्म में कंपोजिशंस का जो अपना मेरा ढंग है वो ये है
1: जी,
0: मैं पूरी कथा पहले सुनता हूँ, उसकी कहानी क्या है, चरित्र क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है, किस प्रदेश की कहानी है, प्लेन्स की है, पहाड़ों की है, ज़मीन की है, गांव की कहानी है, उन करेक्टर्स के मैनरिज्म क्या हैं, उनके हाव भाव क्या हैं, तो मैं वहाँ से रविंद्र जैन को हटा देता हूँ और उसी कलाकार को जीता हूँ जो उस फिल्म में जो पात्र है।
1: वाह वाह, आपकी सफलता के बहुत आगे आकर एक गीत आपकी पहचान बन गया। जैसे मैंने शुरू में कहा, घुंघरू की तरह बसता ही रहा हूं मैं। इस गीत का क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या इस गीत का अभिप्राय है, इस गीत की बैकग्राउंड क्या है, इस गीत का आधार क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये गीत के बारे में बताएं और एक गीत सुनाएं।
0: ये मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि फिल्म सिलसिला है प्यार का सिबिसा बनाना चाहते थे और वो एक शायर की कहानी थी
1: जी।
0: तो शायर शायर जो है फिलोसफर भी होता है और बाद में तो ये गीत फिल्म चोर मचाए शोर में इसलिए लिया गया कि सबको बहुत पसंद था
1: जी,
0: शशि जी को पसंद था और हमारी जो हीरोइन है मुमताज़ उनको पसंद था, सीपी साहब को पसंद था। और ये इसका का बैकग्राउंड जो आप जानना चाहते हैं वो ये, मैं जहाँ जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कलकत्ते चला गया था, मैंने शायद आपको नहीं बताया, कलकत्ता अलीगढ़ से जब मैंने वाकई शिक्षा संगीत प्रभाकर तक की करके
1: जी
0: कलकत्ता इसलिए किया कि मुझे बंगला म्यूज़िक बहुत फैसिनेट करता था बचपन से ही, गुरुदेव की रचनाएं टैगोर की उनको जानने के लिए कलकत्ते गया और ये एक उन्हीं की रचना का एक भावांश है जो आप सुनते हैं घुंघरू की तरह।
1: वाह,
0: तो ये सिर्फ एक मैंने उसमें से एक प्रेरणा ली, हमेशा मैंने कभी नकल नहीं करना चाहा बल्कि प्रेरणा तो कोई ना कोई होती है,
1: कहीं ना कहीं
0: सोच जरूर होता है और आइडियल होता है हर एक का कुछ ना कुछ।
1: बिल्कुल,
0: ये एक उनकी रचना थी, मोन देवा नेवा अनेक कोरे छी मोरे छी हजार मोरों ने आमी नूपुरे मोतो बेजे छी चौरों ने चौरों ने।
1: वाह वाह वाह,
0: तो किशोरदा ने गाया और बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये गीत गाया। किशोरदा को ढूंढने में बहुत टाइम गया, मुझे डेट नहीं देते थे, तो किसी ने कहा कि एक बार वो लड़का आया है कलकत्ते से, उसको तुम सुन लो, सुनो तुमको अच्छा लगे तो गाना। तो मेरी रिकॉर्डिंग फिक्स हो गई थी 18 फरवरी को, ये सेकेंड रिकॉर्डिंग थी मेरी। तो किशोरदा बॉम्बे लैब में सुबह ही 9 बजे आ गए, तब मैंने काम शुरू ही नहीं किया था, तब मैं भी पहुँचा ही था, तो कहने लगे रिकॉर्ड करने से पहले मुझे सुना दो तुम क्या गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। तो मैंने जब उनको मुखड़ा सुनाया तो उन्होंने अंतरा सुना ही नहीं, कहने लगे बस तुम आराम से अभी इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपने बैलेंस करो, मैं यहाँ बैठा हूँ, गाना मुझे याद करा दो और तुम्हारा गाना गा के ही जाऊँगा।

0: अपने संगीत से पत्थर नहीं पिघले न सही, बावरा मैं भी हूँ संगीत में बैजू की तरह।
1: वाह वाह।
0: पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
1: ये गीत तो रविंद्र जैन नाम के उस कलाकार का परिचय और उसका आध्यात्मिक अध्याय बन गया है। कौन चाहेगा आपसे विदा लेना, लेकिन समय है कि आपसे विदा ली जाए और कल फिर इसी कार्यक्रम में आपसे मिला जाए।
2: घुंघरू की तरह आज से आरंभ है इस श्रृंखला की पहली कड़ी में आपने सुना सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत का पहला भाग।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं रूपलेखा इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने। कुमार बारा बंकुई ने इसे लिखा है और सजाद हुसैन का संगीत।

छोड़ सब्र का दामन कोई ये न सके के चार दिन भी मोहब्बत में रंग न सके गेंद खुशी से हर सितम लपे हंसी बसाए जा गेंद खुशी से हर सितम लपे हंसी बसाए जा।

साथियों, आज के संगीत सफर में हम रूबरू होंगे उस फनकार से जिनकी धुनें कम सही लेकिन हर धुन अपने आप में एक अनमोल कृति है। आज हम सुन रहे हैं संगीतकार सजाद हुसैन के संगीत से सजे कुछ खूबसूरत और यादगार नगमे। लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं रुस्तम सोहराब इस फिल्म का गीत सुरैया की आवाजों में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा है, सजाद हुसैन का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं संग दिल इस फिल्म का गीत तलत महमूद की आवाज। रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और संगीत से सजाया है सजाद हुसैन ने।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आज हम याद कर रहे हैं सजाद हुसैन जैसे संगीतकार को। ये कैसे संगीतकार थे जिन्होंने कभी लोकप्रियता से समझौता नहीं किया। उनकी रचनाओं में शास्त्रीयता, मौलिकता और मधुरता का अद्भुत संगम सुनाई देता है। आइए अब सुनते हैं दोस्त फिल्म का ये गीत नूरजहां की आवाज में। शम्स लखनवी ने इसे लिखा है सजाद हुसैन की धुन।

खुमार बारा बंकुई का लिखा ये गीत सुनिए, जिसे संगीतबद्ध किया है सजाद हुसैन ने। आवाज लता मंगेशकर की।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, रुखसाना फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें, शकील बदायूनी की रचना, सजाद हुसैन का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम।

नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त सचिन के तरफ से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। गौतम बुद्ध। सुविचार के उपरांत अब आइए एक नज़र डालते हैं आज के इतिहास के ऊपर। आज 21 जुलाई है और आज के दिन घटित ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें तो आज ही के दिन सन 1883 ईस्वी में कोलकाता में भारत के पहले सार्वजनिक थिएटर स्टार थिएटर की शुरुआत की गई थी। तो वहीं सन 1884 ईस्वी में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट के मैदान पर पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया। सन 1888 ईस्वी में ब्रिटेन के आविष्कारक डनलप ने टायर और ट्यूब तैयार किए जिससे परिवहन के साधनों की गति बढ़ी।

और अब बात करते हैं सन 1963 ईस्वी की। काशी विद्यापीठ को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। सन 1988 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट 1C का प्रक्षेपण किया गया। तो वहीं सन 2007 ईस्वी में प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो श्रोताओं, ये था आज का इतिहास। और अब जान लेते हैं आज के दिन जन्म लेने वाले महान व्यक्तियों के नाम। तो सन 1816 ईस्वी में जूलियस राइटर का जन्म हुआ। वे अंग्रेजी समाचार एजेंसी राइटर के संस्थापक थे। तो वहीं सन 1930 ईस्वी में हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार आनंद बख्शी का जन्म हुआ। सन 1947 ईस्वी में चेतन चौहान का जन्म हुआ। वो भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी थे। और सन 1951 ईस्वी में रॉबिन विलियम्स का जन्म हुआ, जो कि अमेरिकी हास्य अभिनेता थे। तो श्रोताओं, ये थे आज के दिन जन्म लेने वाले महान व्यक्तियों के नाम। और अब जान लेते हैं आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले व्यक्ति। सन 1906 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने दुनिया को अलविदा कहा। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो वहीं सन 1920 ईस्वी में शारदा माँ ने दुनिया को अलविदा कहा। वे जो थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक सहयोगिनी उनकी थी। तो वहीं सन 2019 ईस्वी में श्रीमती शीला दीक्षित ने दुनिया को अलविदा कहा। वे पूर्व राज्यपाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही थीं। तो श्रोताओं, ये थे आज के दिन दुनिया को अलविदा कहने वाले लोग। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक और गीत। श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं आज ही के दिन यानी 21 जुलाई 1930 ईस्वी में हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार आनंद बख्शी साहब का जन्म हुआ था। तो आइए उन्हीं के लिखे गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे।

0: विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अंतराल के बाद पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और अब चलिए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के ऊपर। सासाराम मॉडल सदर अस्पताल का शुभारंभ जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन रोहतास को निर्देश दिया कि नया अस्पताल का

गतिविधियों के ऊपर। सासाराम मॉडल सदर अस्पताल का शुभारंभ जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने सिविल सर्जन रोहतास को निर्देश दिया कि नया अस्पताल का संचालन 2400 घंटे करवाना सुनिश्चित किया जाए। इस अस्पताल में इमरजेंसी सेवा, डायलिसिस सेवा, पैथोलॉजी, आईसीयू और जनरल वार्ड संचालित किया जाएगा। यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। इसमें मरीजों को सारी सुविधाएं दी जाएगी।

आज यानी कि 21/7/2026 को प्रातः 11 बजे से DRDA सभागार सासाराम में जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक की जाएगी। इस बैठक में उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारियों से क्रमानुसार उनके विभाग में लंबित कार्य के निष्पादनार्थ अंतर्विभागीय सहयोग हेतु चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी रोहतास के द्वारा समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम विधि शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन में लंबित वादों की समीक्षा की जाएगी, जिसमें सर्वाधिक लंबित मामलों में अंचलाधिकारी सासाराम, कोचस, डेहरी, शिवसागर, दिनारा और विक्रमगंज अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम विक्रमगंज, जिला सहकारिता पदाधिकारी रोहतास, अपर समाहर्ता रोहतास, जिला भूअर्जन पदाधिकारी रोहतास, DPO आदि से लंबित वादों में माननीय न्यायालयों के प्रति शपथ दायर करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

कल यानी कि 20/7/2026 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों ने भाग लिया। रोहतास से जिला पदाधिकारी श्री दीपक कुमार मिश्र एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में नए राशन कार्ड निगमन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों का आच्छादन, जन वितरण प्रणाली, कस्टम मिल्ड राइस, SIR मामलों के निष्पादन तथा संदिग्ध राशन कार्डों के सत्यापन की बिंदुवार समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विशेष अभियान के अंतर्गत कोई भी पात्र परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आगामी पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रत्येक पंचायत में विशेष शिविर आयोजित कर ऐसे सभी पात्र परिवारों की पहचान की जाएगी जिनका अब तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है। शिविरों में आवेदन प्राप्त कर उनका त्वरित सत्यापन, ऑनलाइन प्रविष्टि अनुमोदन एवं राशन कार्ड निर्गमन निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही आवेदन प्राप्ति से लेकर स्वीकृति तक प्रत्येक चरण की प्रतिदिन समीक्षा करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि रोहतास जिले में 13 अगस्त तक 29,586 नए राशन कार्ड जारी किए जाने हैं, जिसके लिए प्रतिदिन 980 का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिया गया है कि सभी जिलाधिकारी और संबंधित आपूर्ति पदाधिकारी 13 अगस्त की समय सीमा को अंतिम मानकर पूरी मुस्तैदी से काम करें। बैठक में मुख्य सचिव बिहार सरकार द्वारा CMR आपूर्ति को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के अंतर्गत 31 मार्च 2000

2026 तक रोहतास में 3,28,965 मैट्रिक टन धान की खरीद की गई। इसके विरुद्ध 2,29,500 मैट्रिक टन CMR की आपूर्ति लक्ष्य निर्धारित है।

रोहतास जिले के ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला एवं पहाड़ी गांवों के विकास, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार तथा पहाड़ी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य जिला पदाधिकारी रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक रोहतास श्री रोशन कुमार ने स्थलीय जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में जिला पदाधिकारी ने रोहतासगढ़ पंचायत भवन के पास स्थित नवनिर्मित अतिथि गृह में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में पर्यटन विकास, सड़क संपर्क, विद्युत एवं ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण तथा स्थानीय लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने रोहतासगढ़ किला परिसर में स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के कर्मा वृक्ष के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही रोहतासगढ़ रोपवे परियोजना की गुणवत्ता, निर्माण मानकों एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पहाड़ी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोलर प्लांट की स्थापना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पहाड़ी गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना पर भी मंथन किया गया तथा बताया गया कि वन विभाग से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद संबंधित कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

और अब बात करते हैं कैमूर जिला की। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायत तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 14 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

कल यानी कि 20 जुलाई को कैमूर जिला समाहरणालय के मामुंडेश्वरी सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में टीबी के रोगियों को वृहद स्तर पर पोषाहार किट का वितरण माननीय जिला पदाधिकारी महोदय और उप विकास आयुक्त की उपस्थिति में किया गया। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी मरीज के बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु जिले में बहुत सारे पदाधिकारी कर्मी ने निश्चय मित्र बनते हुए पोषाहार का वितरण किया और पदाधिकारियों से प्रश्न पत्र प्राप्त किए। कार्यक्रम में आगे एक नज़र डालेंगे।

और अब दोस्तों एक नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद है दैनिक भास्कर, प्रभात खबर, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान। पेपर लीक, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित अन्य मुद्दों को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ, यह खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियां रही है। हिंदुस्तान के हवाले से खबर है, परीक्षा पर लोकसभा में संग्राम, सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू, 6 बार स्थगन के बाद कार्यवाही स्थगित की गई। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को लिखा है, नीट पेपर लीक, चढ़ावा चोरी पर संसद में हंगामा, दोनों सदनों में 6-6 बार स्थगन किया गया। प्रभात खबर की सुर्खियां है, सड़क से संसद तक के हंगामा, जुटे हजारों लोग।

दैनिक जागरण अपने पहले पेज पर लिखता है कि अब दाखिल खारिज के हरेक आवेदन के लिए लगेगा 200 रुपये का शुल्क और बंगाल में सभी सरकारी कामकाज में बंगला भाषा अनिवार्य किया गया। साथ ही साथ विधानसभा में 87,383 करोड़ का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पेश किया गया।

इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म की गाली गलौज तो लगेगा गुंडा एक्ट और 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के 4 हस्तियों का होगा सम्मान। दैनिक भास्कर अपने पहले पेज पर लिखता है कि संसद पर 14 साल बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन, पुलिस प्रदर्शनकारियों में 12 से ज़्यादा जगह भिड़ंत, सैकड़ों लोग घायल और राम मंदिर चढ़ावा चोरी, अपराध की जांच का मामला, राजनीति न करे सुप्रीम कोर्ट, जांच नई एसआईटी को सौंपने पर

विचार फैसला 27 को, और वांगचुंग ने शर्तें रखी, फिर कहा अनशन जारी रखूंगा। अनशन का आज 24वां दिन, और जापान की क्यूडेंगा भारत को मिली पहली डेंगू वैक्सीन, 60 साल तक के लोगों को लगेगी। प्रभात खबर की सुर्खियां है, जुआ और सट्टा खेला खिलाया तो 3 साल तक का जेल, 1 लाख का जुर्माना। और ठनके से भोजपुर में 4 और सिवान में 2, गया में 1 की मौत। और सुबह शाह से मिले धर्मेंद्र प्रधान, दोपहर को सीजीपी ने नड्डा को सौंपा मांग पत्र, आश्वासन के बाद फिलहाल थमा प्रदर्शन।

हिंदुस्तान अपने पहले पेज पर लिखता है कि यूरोपीय संघ के द्वार खुलने से अमेरिका का मुंह छूटा और चढ़ावा चोरी की जांच के लिए नई टीमें बने कोर्ट, और त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनकर ने दफ्तर में दी जान।

0: और अब चलते चलते जान लें मौसम संबंधित सूचना। आज अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली गिरने और तेज वर्षा की संभावना है। और अब श्रोताओं, समय हो चला है कार्यक्रम में आपसे विदा लेने का, तो अपने रेडियो दोस्त सचिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: राजा रोहित का किला।
0: और अब आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात, कृपया कुछ देर प्रतीक्षा करें।
2: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमेरिका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
4: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों पूरे

0: हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
2: पनामा सर्व्स एज अ नेचुरल ब्रिज फॉर अस।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
2: टेक्नोलॉजी एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेड।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीना इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में

0: पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखाधड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके दो बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमेरिकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए

0: मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में गाए इसी गीत के साथ ही देशभक्ति संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। सुबह के 8:20 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में हम हैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त सचिन। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मुकेश और

0: पहले पंचवा तक।
1: कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
0: पंचवा तक,
1: पाँच तक होती है।
0: उसके अलावा एक मिशन स्कूल है।
1: अच्छा, मिशन स्कूल है, उसमें कितने क्लास तक पढ़ाई होती है?
0: एट तक,
1: आठवीं तक।
0: आठवीं तक।
1: आपके यहाँ जो स्कूल है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: हाँ, कहना चाहेंगे यही कि स्कूल में जो है पहले जैसा शिक्षा नहीं मिल रही है। जितना भी शिक्षक है अपने मन के काम कर रहे हैं, बच्चे कब आते हैं कब जाते हैं उसका कोई निगरानी नहीं है, बच्चे गेट के बाहर हैं या अंदर है उसका कोई मतलब नहीं है।
1: स्कूल पर पहुंचने के लिए रोड है?
0: हाँ बिल्कुल, रोड पे है।
1: रोड पे है। समय से स्कूल खुलता है?
0: समय से स्कूल खुलता है।
1: पांचवी तक पढ़ाई करने के बाद या पढ़ाई कराने के बाद आप लोग अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ ले जाते हैं?
0: वही जाते हैं दूसरे गाँव में स्कूल में, अब मध्य विद्यालय हुआ, बड्डी।
1: बड्डी जाना पड़ता है?
0: बड्डी जाना,
1: उससे आगे पढ़ाई के लिए?
0: वहीं बड्डी में है।
1: बड्डी में ही है। खेती करते हैं?
0: हाँ
1: खेती करते हैं। कौन कौन सी फसल लगाई जाती है आपके यहाँ?
0: यहाँ धान गेहूँ दोनों फसल।
1: पटवन कैसे होता है?
0: पटवन वही, यहाँ तो मरुभूमि स्थान है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, और जहाँ अपना पटवन के वही व्यवस्था है कि कोई अपना पर्सनल बोर किया है तो दो चार बीघा अगल बगल पटा देता है तो पटा देता है, नहीं तो भगवान भरोसे।
1: आपके बगल से नहर गुजर रही है?
0: हाँ, नहर से कोई मतलब नहीं।
1: नहर का पानी नहीं आता आपके यहाँ?
0: नहीं।
1: क्यों नहीं आता है?
0: नहर से कोई मतलब ही नहीं है, नहर से ये ऊंचा सतह है,
1: मतलब नहर नीचे में है।
0: हाँ, नहर नीचे में है,
1: इधर पानी नहीं आ पाता है।
0: बिल्कुल नहीं।
1: आपके यहाँ कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं?
0: नहीं।
1: अगर कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो कहाँ ले जाते हैं?
0: वही सासाराम।
1: सासाराम जाना पड़ता है। काला शहर के एक और व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, वैसे कई लोग हमारे बीच खड़े हुए हैं। नाम अपना बता दीजिए।
2: लोकनाथ राम।
1: गांव का नाम?
2: काला शहर।
1: पंचायत?
2: कोनक।
1: आप अपने गांव के गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुकी है या कुछ बनानी अभी बाकी है?
2: गली बहुत थोड़ बहुत बनल बा, ओकरा बाद में बनला के बाद में पानी के निसार कहीं है नहीं।
1: गली में पानी जमा रहता है?
2: हाँ, अभी अभी लागल बता, अभी देखे के मिला था सामने देखनी पहले।
1: जो गली नहीं बनाई गई आपके गांव में उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: जो नहीं बनल तो बन जी तो बढ़ी में न बा, बनाई के ना कल नहीं बन जाओ।
1: नाली बनाई गई है आपके गांव में?
2: हाँ बनल बा, आधा ले बेसी बाकी बा।
1: जिन जिन गलियों में नाली बन चुकी है
2: हाँ,
1: उन गलियों के घर का पानी निकल जाता है?
2: ना, वही दुआरी पर।
1: नाली से नहीं निकलता?
2: ना, नाली तो सही गायब बा।
1: क्यों नहीं निकलते?
2: नाली जाम बा।
1: जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है वे लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
2: दुआर में नाली नहीं है, ओकर पानी वही दुआरे पर निकलता है।
1: आने जाने परेशानी होती है?
2: बहुत परेशानी बा।
1: बिजली रहती है कि नहीं?
2: बिजली वही रहता है, जब खाए के समय होता है खाए बना के भाग जाता है।
1: वैसे रहती है?
2: हाँ ऐसे रहता है। अबे तो लाइन बा, जब खाए बनाए का टाइम है तो लाइन कट जाता।
1: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए मिल रहा है आप लोगों को?
2: पानी पहले शुरू में गल रहे तो मिल रहे, अब साल भर रहे उनकर बंद बा, कोई पुसारे नहीं के कि माने कि चालू होई ना होई का होई इनमें कहे वाला कोई नहीं के।
1: अभी नहीं मिल रहा है?
2: ना ना बंद बा साफा।
1: खेती करते हैं आप?
2: खेती होला लेकिन हमने की कभी खेती नहीं की।
1: बिजली रहती है आपके यहाँ?
2: बिजली रहेला लेकिन आधे रहेला आधा गायब।
1: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए मिल रहा है?
2: ना।
1: आपके घर में नहीं आता है पानी?
2: पानी बा लेकिन मिलल कहाँ ले,
1: पानी नहीं आता है
2: ना, इनार से पानी भर भर के पी ला जाए।
1: अभी नहीं आ रहा है या कभी नहीं है?
2: ना कभी नहीं है। आई
1: टंकी बनाई गई है?
2: हाँ टंकी सब कर बना, दुआरी पर लगा सब टंकी।
1: आपके यहाँ पांचवी तक स्कूल है, उसके बाद कहाँ ले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए?
2: जेकर जहाँ मन करे तहाँ लेके जाता है। मोहम्मद कोई लिखौले बा, कोई आलमपुर लिखौले बा, कोई चोर लिखौले बा, कोई बड़ी लिखौले बा, जेकर जहाँ जहाँ साधन में तहाँ तहाँ पढ़ावता।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे शिवसागर प्रखंड के काला शहर गाँव के लोगों से की गई बातचीत। काला शहर गाँव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत सुनने से पहले आइए हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। पंकज उदास और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में ये गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इसके गीतकार हैं नक्श लियालपुरी, संगीतकार महेश किशोर, और फिल्म का नाम है एक ही रास्ता।

0: दोस्तों अभी आप एक ही रास्ता फिल्म का ये गीत सुन रहे थे। आवाज़ें थी पंकज उदास और कविता कृष्णमूर्ति की। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं शिवसागर प्रखंड के काला शहर गांव के कुछ और लोगों से की गई बातचीत। एक और व्यक्ति हमारे बीच खड़े हुए हैं, अपना परिचय दे दीजिए।
1: मेरा नाम रामायण राम।
0: गांव का नाम?
1: काला शहर।
0: पंचायत?
1: कुनकी पंचायत।
0: कुनकी पंचायत में पड़ता है ये गांव यानी काला शहर। आप अपने गांव की गली के बारे में बताइए। सभी गली बन चुकी है या कुछ बनानी अभी बाकी है?
1: गली सभी लगभग बन चुकी है,
0: कोई बाकी नहीं है।
1: कहीं कहीं बाकी है, थोड़ा मोड़ा नाली का समस्या है।
0: बनी हुई गली में परेशानी होती है कि नहीं आने जाने में?
1: बहुत परेशानी है, एक आदमी जाएगा तो दूसरा आदमी पार नहीं करेगा।
0: पतली गली?
1: हाँ,
0: पतली। इन्हें परेशानी है? हाँ। कीचड़ वगैरह नहीं ना होता है?
1: कीचड़? कीचड़ नाली नहीं रहेगा तो कीचड़ नहीं होगा, कहीं कहीं नाली नहीं है।
0: जो गली पक्की हो चुकी है उसमें कीचड़ कैसे?
1: क्योंकि सप्लाई नहीं, उसका
0: पानी जमा रहता है।
1: तो
0: नाली बनाई गई है सभी गलियों में?
1: सभी गलियों में नाली नहीं बनाई गई है,
0: कुछ गली में बाकी है।
1: हाँ।
0: जिन जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है उन गलियों के लोग अपना पानी कैसे निकालते हैं?
1: वो जिस तरह किसी में बहवा देते हैं तो खेत वाला कहता है कि इधर निकासी नहीं है, तुम क्यों बंद कर देता है।
0: गली
1: तो,
0: में भी बहता रहता है?
1: हाँ, तो उसको गड्ढा खान कर हम लोग रोक देते हैं। कभी सीजन आता है काटने के लिए, कटने का समय तो पानी रोक देता है लोग। बड़ी परेशानी से फेंकना पड़ता है,
0: फेंकना पड़ता है। जिन गलियों में नाली बन चुकी है उन गलियों के लोगों का पानी बनी हुई नाली से निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है या उनके घर में ही जमा रहता है?
1: नाली से पानी निकल जाता है फिर भी नाली जाम हो जाता है,
0: बाहर नहीं निकल पाता है
1: ना।
0: बिजली रहती है आपके यहाँ?
1: लगभग बिजली हमेशा नहीं रहती है।
0: रहती है?
1: रहती है, लेकिन
0: वोल्टेज कैसा रहता है?
1: वोल्टेज पूरा नहीं रहता है, अपडप रहता है,
0: कम रहता है, कम बेसी होता रहता
1: है। कभी पानी पीने का होता है तो समसबुल चलबे नहीं करेगा।
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
1: नहीं,
0: नहीं मिल रहा है।
1: नहीं मिल रहा है।
0: तो पानी कहाँ से पीते हैं आप लोग?
1: ये दुगो कल है, किसी किसी का अपना अपना समसबुल है।
0: नल लगाई गई है आपके घर में?
1: नल लगाया गया था, पानी नहीं दिया, नल सब खत्म है।
0: अभी नहीं आ रहा है पानी या कभी नहीं
1: आया? शुरू से नहीं आया।
0: शुरू से ही नहीं आ रहा है? टंकी बनाई गई है?
1: टंकी बनाई गई है।
0: उस पर सिंटेक्स लगा?

0: हुआ है,
1: सिंटेक्स लगा हुआ है,
0: बोरिंग भी गलाई गई है।
1: हाँ गलाई है,
0: पानी का सप्लाई नहीं किया जा रहा है।
1: पानी की सप्लाई होती है तो लगभग कुछ ही दूर में रह जाते हैं, इधर आईबे नहीं करती है।
0: अच्छा, कुछ ही दूर,
1: दो चार घर ऐसे उतने दूर में रहते, इधर फेंकबे नहीं, पानी ही नहीं आता है।
0: जिन लोगों के घर में आती है वे लोग पीने के काम में लेते हैं पानी को,
1: वो नाली के पानी उसी में भर जाता है, उसी पाइप में फिर वही बिकता है, पीता है कि क्या करता है। लोग
0: खेती करते हैं,
1: अपना खेत नहीं है, कभी काल किसी से लेकर कर यूँ लेते हैं,
0: कर लेते हैं। हाँ, किसी का लेकर।
1: हाँ,
0: पटवन कैसे करते हैं?
1: पटवन करते हैं मोटर सबमर्सिबल से।
0: बगल में नहर गुजर रही है आपके गांव के?
1: नहर नहीं लगती है,
0: नहर का पानी नहीं आता है।
1: नहीं,
0: क्यों नहीं आता है?
1: क्योंकि ऊंचास पड़ता है, नहर खाले में है।
0: अच्छा, नहर गढ़े में है, खेत ऊंचे पर है।
1: हाँ,
0: इसलिए पानी नहीं आता। कौन कौन सी फसल लगाई जाती है आपके यहाँ?
1: यहाँ दो फसल लगाई थी, गेहूँ और धान।
0: बारिश के पानी पर आप लोग डिपेंड है?
1: हाँ,
0: बारिश हुई तो पैदा हुआ, नहीं तो
1: नहीं
0: नहीं हुआ। आपके यहाँ विद्यालय कौन सी है, सरकारी मालूम है?
1: सरकारी विद्यालय है।
0: कितने क्लास तक पढ़ाई होती है
1: यहाँ? पाँच तक।
0: पाँच तक पढ़ाई होती है, प्राइमरी स्कूल है। उसके बाद कहाँ जाते हैं बच्चे?
1: उसके बाद बच्चे मनचाहा कहीं बड्डी, मोहम्मदपुर, चौर, कला सड़क, पादरी का स्कूल है,
0: वहाँ भी जाते हैं।
1: वहाँ भी जाते हैं।
0: आपके यहाँ जो स्कूल है उसके बारे में कुछ बताइए, उसकी बाउंड्री है कि नहीं, जाने का रास्ता है कि नहीं, समय पर खुलता है कि नहीं?
1: हमारे यहाँ स्कूल है, बाउंड्री है, बाउंड्री है, लेकिन उसको पीछे साइड से भी रास्ता है आने जाने का, पूरा बाउंड्री नहीं है सही सलामत।
0: आने जाने का रास्ता है?
1: आने जाने का रास्ता पीछे साइड से है, उसको पूरा बढ़िया से बाउंड्री नहीं हुआ है, जितना चाहिए बाउंड्री नहीं है।
0: जो आपके यहाँ स्कूल है उसमें आप ही के गाँव के बच्चे पढ़ने जाते हैं या आस पास के कुछ दूसरे गाँव के भी आते हैं?
1: आसपास के आते हैं।
0: आते हैं, जैसे कुछ गाँव का नाम बताइए जहाँ के आते हैं।
1: डंडवाडी।
0: डंडवाडी, वो आप ही के पंचायत में पड़ता है?
1: हाँ।
0: काला शहर के लोगों से हम बात कर रहे हैं। काला शहर एक गांव है जो कुनकी पंचायत में पड़ता है और शिवसागर प्रखंड में पड़ता है। कई लोग वैसे तो हमारे बीच हैं, एक और व्यक्ति से जानने की कोशिश कर रहे हैं। नाम अपना बता दीजिए।
2: मेरा नाम जितेंद्र कुमार है।
0: गांव का नाम?
2: काला शहर।
0: पंचायत?
2: कुनकी।
0: कुनकी पंचायत में पड़ता है काला शहर। आप अपने गाँव के गली के बारे में बताइए। सभी गलियों का पक्कीकरण हो चुका है या कुछ बनानी अभी बाकी है?
2: अभी बहुत कुछ बनानी बाकी है।
0: कुछ बन चुकी है?
2: हाँ, कुछ बन चुकी है, कुछ बनानी बाकी है।
0: जो बन चुकी है गली आपके गाँव में, चाहे चौड़ी गली हो या पतली गली हो, उसमें आने जाने में परेशानी होती है कि नहीं?
2: नहीं, बहुत परेशानी होती है।
0: उसमें भी परेशानी होती है?
2: संकरी मैंने गांव में जो है ना, हर जगह चौड़ा नहीं है, कहीं कहीं बहुत संकरा रास्ता।
0: गली
2: है।
0: पतली होने की वजह से परेशानी?
2: हाँ हाँ, गली
0: बनने से कोई दिक्कत नहीं?
2: ना, बनने से कोई दिक्कत नहीं है।
0: जो गली नहीं बनाई गई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: जो नहीं बनाई गई है वो हम कहेंगे कि यहाँ के हमारे पंचायत का मुखिया की कमी है। बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं।
0: नाली बनाई गई आपके यहाँ की गलियों में या कुछ बाकी भी है?
2: नाली तो अभी बाकी है, देखिए यहीं से अभी बाकी है।
0: कुछ गली में बनी हुई है?
2: हाँ, कुछ बनी हुई है।
0: जिन जिन गलियों में नाली बनी हुई है उन गलियों के घर का पानी बनी हुई नाली से निकल जाता है या नाली बनने के बाद भी गली में जमा रहता है?
2: नहीं, देखिए बात है कि कुछ नाली ऐसा है, यहाँ कुछ ऐसी समस्या है जो कि नाली का पानी भी निकलने के लिए रास्ता नहीं,
0: परेशानी है।
2: परेशानी है, वो बहुत समस्या हो रही है।
0: जिन गलियों में नाली नहीं बनाई गई है उन गलियों के लोग अपना पानी कहाँ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं?
2: वैसे ही इधर उधर कोई निजी जमीन में गिर रहा है, नाला के अभाव में, नाला नहीं बन रहा है ना। नाला बन जाता ना तो सबसे उत्तम होता।
0: बिजली रहती है कि नहीं आपके यहाँ?
2: ना, बिजली रहती है।
0: बिजली रहती है, कोई दिक्कत नहीं? वोल्टेज?
2: हाँ, वोल्टेज ठीक।
0: 125 यूनिट जो फ्री कर दी गई है, इसका लाभ मिल रहा है?
2: हाँ हाँ, का लाभ मिल रहा है,
0: गाँव के लोगों को मिल रहा है।
2: हाँ,
0: नल जल योजना के अंतर्गत नल का पानी पीने के लिए आप लोगों को मिल रहा है?
2: हाँ हाँ, बहुत लोगों को मिल रहा है।

किरण पांडे के गाए इसी गीत के साथ ही रसधार कार्यक्रम अब यहीं पे संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

रंग तरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं पंकज उधास की आवाज़ से।

0: छाया गांगुली के स्वर में आप सुन रहे थे महादेवी वर्मा का लिखा ये गीत। संगीत था जयदेव का, ये फिल्म का नाम था त्रिकोण का चौथा कोण। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: ये आशा भोसले की आवाज है, संगीतकार जयदेव।

0: खीरे।
1: मन्नाडे के स्वर में ये गीत अभी आप सुन रहे थे, रचना थी श्याम सागर की।
2: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
3: वो तेरे प्यार का।
2: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
4: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
2: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
5: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
2: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
6: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
2: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
0: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
4: बेचारा
6: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
5: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
6: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
5: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
7: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
6: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
5: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
6: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
8: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब सुने चंदन दास की गाई गजल। कलाम है निदा फाजली का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

पीनाज मसानी की आवाज थी, मुमताज राशिद का कलाम था। पेश है भूपिंदर की आवाज में ये गजल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं। मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। उन्होंने नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बचाव कार्यों के बारे में जानकारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रति प्रधानमंत्री के अटूट समर्थन, गहरी चिंता और मजबूत एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच सिक्किम में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्योडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई की भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,420 पर और निफ्टी 72 अंक गिरकर 24,167 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गई है। इस समय महिला सिंगल्स के पहले दौर में भारत की देविका सिहाग और पुरुष सिंगल्स में SS प्रणय अपने अपने मुकाबले खेल रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। आज का ये पूरा कार्यक्रम जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के नाम।

0: अनुरोध फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
5: तो दोस्तों आज है 21 जुलाई और शाम 4 बजे आनंद बख्शी के बेटे राकेश बख्शी से बातचीत सुन लीजिएगा। फिलहाल आप आनंद बख्शी के लिखे गाने सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम है यादों की महफिल, फिल्म आपकी कसम, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज का ये पूरा कार्यक्रम गीतकार आनंद बख्शी के नाम है। सुनिए मर्यादा फिल्म का गाना मुकेश की आवाज में, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में, रचना थी आनंद बख्शी की।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

चलते चलते एक गाना और सुन लेते हैं दुश्मन फिल्म का। ये आन मिलो सजना फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गीत, संगीतकार हैं उत्तम सिंह, फिल्म दुश्मन, रचना आनंद बख्शी की।

दुश्मन फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं आज का सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, सुरीला सफर कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, और आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा दें। वैसे जो हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर सक्रिय हैं, उन्होंने ये इबारत पढ़ ली और टिप्पणियां भी लगातार साझा कर रहे हैं। इबारत यूं है कि बचपन में जब पापा जल्दी आते तो एक गुड़िया साथ लाते थे, तो लगता था जैसे पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में सिमट आई हो। फिर दुनिया बड़ी हुई, समय और मौसम बदला, साथ मिला सजना का, नसीब खुशियों से भर गया। पिया का इंतजार करना भी सीख लिया मन ने, कभी घटा बनकर यादें बरसी, कभी गुल और बुलबुल की तरह मोहब्बत ने गीत सुनाए। दिल ने किया सवाल, छोड़कर प्यार का दामन भला कहां जाए, तो एहसास आज भी साथ है वो। जुल्फों की छांव हो या मोहब्बत की महक, दिल की दुनिया इन्हें खूबसूरत लम्हों से आबाद रहती है। होठ गुनगुनाते हैं, जाने क्यों लोग करते हैं मोहब्बत, ओ मेरी शाहे खुबा, और भी बहुत सारे गाने। और बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और शब्द तो बहुत जल्द पकड़ लिया। और हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि आज तो आपने परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। भाई, इसे लीक करना नहीं कहेंगे, इसे तो हम ये कहेंगे कि आप की त्वरित बुद्धि ने बहुत जल्द पकड़ लिया कि आज के इस इबारत में कौन से शब्द हैं और कौन से गाने होंगे। तो ज़रा ये देखिए, सुनिए और बूझिए कि ये गाना भी आपने चुना था या नहीं। इस गाने के बारे में आप क्या कहेंगे? फिल्म मेरे हमदर्द मेरे दोस्त। इस गाने से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात हो तो ज़रा बताइएगा हमें। जरा गीतकार का नाम बूझिए और संगीतकार का नाम बूझिए।

घटा, सावन, सजना, कौन कौन से गाने हैं इन शब्दों पर, याद किया क्या आपने? जरा लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद हो वो भी लिखिए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना था। हमने पूछा था आपसे गीतकार संगीतकार का नाम, बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। मजरू सुल्तानपुरी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और बहुत सारे श्रोताओं ने पप्पा जल्दी आ जाना सात समंदर पार से इस गाने के लिए लिखा है बहुत कुछ। और बहुत सारी टिप्पणियाँ आई है कि बचपन की गुड़िया, बचपन का संसार, लेकिन आज की इबारत में और भी तो बहुत कुछ है। तो वो जो टिप्पणी है हम पढ़कर सुनाएंगे ज़रूर, और वो गाना भी हम सुनवाएंगे, क्योंकि इतने सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमारी मजबूरी बन गई है वो गाना सुनवाना। और कौन से गाने आपके जहन में इस वक्त आ रहे हैं? और आज एक ख़ास बात और है, हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बचपन के बारे में ऐसा लिखा कि लोग कहने लगे, आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का। महबूबा की तारीफ, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। और पूरी पूरी लाइनें भी लिखी है और आगे लिखा है इन्होंने कि आनंद बख्शी कलम के वो जादूगर जिसने अपने हृदय रचे मधुर गीतों से सुनने वालों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उन्हें भुला पाना नामुमकिन है। बिल्कुल सही फरमाया है। और अब बात आनंद बख्शी की चली है, आज उनकी याद का दिन है, विविध भारती से उनके बहुत सारे गाने प्रसारित किए जा रहे हैं और शाम को 4 बजे भी उनके बेटे राकेश बख्शी से बातचीत आप सुन सकते हैं। तो चलिए फिर एक गाना आनंद बख्शी साहब के नाम, रोशन का संगीत है, आपको बूझना है फिल्म का नाम। इस गाने को सुनते हुए आपके जहन में कौन कौन से और गाने कौंध रहे हैं हमारी इबारत से जुड़े हुए? फिल्म का नाम बूझना है आपको, फटाफट बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। देवर लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना, रोशन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है सही, और ये भी लिखा है कि धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर होते हैं इस फिल्म में। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम पहला गाना सुन रहे थे चलो सजना तो हमें याद आया काली घटा छाई प्रेम रुत आई, और एक श्रोता ने लिखा है कि इस गाने को सुनते हुए बाबुल की दुआएं लेती जा ये गाना हमें याद आया है। और बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियां आई है इस बात के लिए, जब हम अब हम लाइन से वो टिप्पणियां पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन हमारा आपसे आग्रह ये है कि और भी जो इसमें शब्द हैं उन शब्दों से जुड़े हुए गाने भी आप लिखें और उन गानों से जुड़े हुए भी टिप्पणियाँ आप साझा करें। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा बचपन तो छोटे से ग्रामीण परिवेश में ही गुजरा है, जहां कभी कभार रेडियो सीमित समय के लिए सुनने को मिलता था। मनोरंजन के नाम पर भजन मंडलियों और गीत, सावन के झूले, बहनों का गरबा और नदी में नहाने जैसे कार्यों के करते पढ़ाई के लिए कब हरदा पहुंच गए कुछ याद ही नहीं। हाँ, याद है पिताजी का झूले पर बैठकर अक्सर गुनगुनाया जाने वाला गीत, रुमझुम बरसे बादरवा, रुनझुन बरसे बादरवा, मस्त घटाएं छाए, और पिया घर आजा, फिल्म रतन जोराबाई अंबाले वाली की आवाज़ में। आज के प्रोग्राम की सूची में ये गीत निश्चित ही सम्मिलित होगा ऐसा अनुमान है। भाई अनुमान हो सकता है, कई बार सच होता है, कई बार गलत भी होता है, तो आप इंतज़ार कीजिए पूरे प्रोग्राम के दौरान। हाँ, लेकिन ये जो झूले वाली बात याद आई है तो ज़रा हमारे बाकी श्रोता भी बताएं कि क्या आप भी झूले पर बैठकर पींगे मारे हैं। वो झूले वाली बात याद कीजिए, सावन वाली बातें याद कीजिए। गानों के साथ तो हम जाने कहाँ कहाँ की सैर कराते हैं मन के उड़न खटोले से, तो आप ज़रा याद कीजिए वो गाने और साझा कीजिए झूले वाली बात, सावन वाली बात। अब एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में न जाने कितने मूल्यवान उपहार बिखरे पड़े हैं, मगर पापा की लाई हुई वो प्लास्टिक की गुड़िया से ज़्यादा अच्छा और कोई उपहार है। गुड़िया की शादी, गुड्डे से और विदा के समय जब वो गुड्डे वाली सहेली कहती अब ये गुड़िया हमारी हुई, तो सारी दोस्ती भूल कर अपनी गुड़िया के लिए लड़ाई करना, तब बीज बचाव में मम्मी को आना पड़ता। क्या बात है भाई, वे कहती कि शादी हुई है तो गुड़िया अब गुड्डे की हुई ना, फिर न जाने कब बचपन बीत गया और फिर मिला एक साथी जिसके साथ चलते जीवन की सच्चाई से सामना हुआ। यादें भी न जाने कितनी अजीब होती हैं, वे कभी दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक किसी गीत के सहारे किसी पुराने मौसम के साथ दिल में उतर आती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अब हमारा साथी है, हमारा हम सफ़र है। तो अपने हम

सफर से जुड़ी हुई बात भी बताइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी साझा कीजिए कि आपके जीवन साथी के साथ दिन में कितनी बार तकरार होती है और कितनी बार प्यार मोहब्बत की बातें होती है, ये भी साझा कीजिए। भाई ये तो प्रोग्राम ही ऐसा है कि एक परिवार की तरह हम एक दूसरे से बोलते बतियाते हैं। फिलहाल अब जो वो गाना आ रहा है जिसकी फरमाइश बहुत सारे श्रोताओं ने की है और बहुत सारे श्रोताओं ने इससे जुड़ी हुई याद साझा की है, टिप्पणी साझा की है।

गुड़िया के अलावा आपके पापा कौन सा तोहफा लाया करते थे शाम को जब घर लौटते थे तो? कभी जब आपके पापा खाली हाथ आते थे तो कैसा लगता था, जरा वो भी बताइएगा। क्या गुड़िया के अलावा कभी टॉफी चॉकलेट भी लाए?

तकदीर फिल्म का गाना था लता मंगेशकर और सुलक्षणा पंडित, मीना पत्के और साथियों की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी की याद को समर्पित था ये गाना और बहुत सारे श्रोताओं ने लंबी तादाद में इस गाने का जिक्र किया और अपने पापा के तोहफों का जिक्र किया। एक श्रोता ने लिखा है कि पापा का साथ होना ही सबसे बड़ा उपहार होता है, बहुत ही भावुक कर देने वाला गीत है ये। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गुड़िये गुड्डे से तो नहीं खेल पाया हूं, लेकिन मेरी धर्मपत्नी मुझे बताती हैं कि वो उनकी बहनें बचपन में अपनी गुड़िया और दूसरे बच्चों के गुड़िया के साथ आपस में मिलकर शादी कराते थे, खूब मजे करते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब के लिए लिखा है कि आनंद बख्शी जी ने गीत सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया गया। उनके शब्द इतने सहज थे कि हर कोई उसमें अपना एहसास, कोई रिश्ता, कोई याद ढूंढ लेता है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है, सादगी में गहराई और हर दिल तक पहुंच जाने वाली बात। बिल्कुल सही फरमाया है कि सादे सीधे सादे अंदाज में, सरल भाषा में गहरी बात लिखना बहुत मुश्किल है। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो पूरी लिस्ट वायरल हो गई है, आप तो प्रश्न करते रहिए, जवाब देते रहेंगे। तो हमने तो आपसे प्रश्न किया है कि अब बताइए कि आनंद बख्शी साहब के कौन से गाने इस वक्त आपको याद आ रहे हैं। कोई एक गाना अगर आपसे कहा जाए, चुनकर बताइए कि आपका बेहद पसंदीदा गाना, तो क्या आप सब बता सकेंगे? अगर बता सकते हैं तो ज़रा बताइए, हम भी देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी साहब वो शख्सियत हैं जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया में कभी एक जैसा किसी का नसीब नहीं होता है, जो देवर फिल्म का गाना सुनवाया था उसके लिए। और झूले के लिए इन्होंने लिखा है कि सावन के महीने में जब झूले पर पींगे मारते थे तो बीच में बैठी लड़कियाँ गाना गाती थीं, पिया मेहंदी मगाए द मोती झील से जाए के साइकिल से, ये याद है मेरी दीदी को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पींगे भरते हुए लोगों को देखा है और स्वयं तो दरवाजे की कुंडी में चादर बांधकर तकिया लगाकर घर में झूला झूला गया है, भाई क्या बात है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो मेरी गुड़िया का जन्म दिवस है, आज वो 13 बरस की हो गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि पापा जल्दी आ जाना, ये गाना इतना भावपूर्ण है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी टिप्पणियाँ लिख भेजी हैं। अब देखते हैं कि हमारे एक श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि गाने हैं सात समंदर पार से, एक था गुल और एक थी बुलबुल, तेरी जुल्फ के छांव में दिल मेरा खोना चाहे, और छोड़कर तेरे प्यार का दामन। फिर आगे लिखा, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं ओ मेरे शाह खुबा। भई गजब, इतने सारे गाने तो आपने बूझ लिए, तो और भी श्रोता और भी गाने बूझे। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में बहुत सारे भावनात्मक शब्द हैं, जैसे कि मोहब्बत, प्यार और एहसास। इन शब्दों पर कई सुरीले गाने सुनवाए जा सकते हैं, गुड़िया लाकर देने की बात तो दिल को छू गई। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत पापा की लाई हुई उस गुड़िया से शुरू हो रही है, जो भावनाओं से जुड़ी हुई पापा की गुड़िया कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला, समय कितनी जल्दी हाथों से निकल गया। हम अपनी बेटी को उसी गुड़िया के रूप में देखते हैं जो जल्दी ही विदा होने वाली है, ये सोचकर आंखें भर आती हैं। और वो पापा भी अपनी गुड़िया की विदाई के कामों में व्यस्त हो गए हैं, जो कभी उसके लिए गुड़िया लाया करते थे। अब देखिए ना, एक गाना कितने सारे श्रोताओं के मन की भावनाओं पर दस्तक दे रहा है, कितने सारे श्रोताओं की आंखें नम कर रहा है, कितने श्रोताओं के जज्बात से जुड़ गया है ये गाना, उनमें से एक तो हम भी हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा भावों को बदलते हैं और जुड़ते हैं, थोड़ा सा अपने बचपन के संसार को आगे बढ़ाते हैं, जब प्यार मोहब्बत की दहलीज पर हमारा मन पहुंचता है। बताइए फिल्म का नाम, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हीरो हीरोइन का नाम और फिल्म का नाम बूझना है आपको।

लव इन टोक्यो फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, हसर जयपुरी की बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और हमने हीरो हीरोइन का नाम आपसे पूछा था, सभी श्रोताओं ने बताया, जॉय मुखर्जी और आशा पारेख। कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बात झूले की चली है तो वो 13-14 साल की उम्र का झूले की मस्ती याद आती है। आज गांव में 2-3 पेड़ नीम के हैं, पहले तो हर घर के दरवाजे पर 2 जरूर होते थे। सावन आते ही बांस के डंडे से रस्सी बांधकर झूला लटकाते और नीचे एक पटरा बांधकर पींग मारते। फिर शाम को अक्सर गांव की लड़कियां झूलने आती हैं और हम सब मना करने पर भी तेज पींगे मारकर झूला ऊपर ले जाते थे।

और कजरी गाई जाती थी, चैती गाई जाती थी, है ना? तो कौन सी कजरी, कौन सी, कौन सा गाना अगर याद है तो वो भी आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिता हमारे बहुत सख्त थे, बाहर का खाने से रोकते थे, यहाँ तक कि गुलाब जामुन भी घर पर बनवाया करते थे माताजी से, और मांग पर भुनी मूंगफलियाँ दिलाया करते थे। बस स्मृतियों में ही सब पल है, और जाने वालों को भला कौन रोक सकता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों को जितना हो सके डांट मार से नहीं, प्यार से समझाने में ही समझदारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ बच्चे के हाथ में गुड़िया पकड़ा देती है, जिससे बच्चा उससे खेलने लगता है और रोना बंद कर देता है। माँ बच्चों को झूले में सुलाकर उस पर डोरी पर गुड़िया लटका देती थी, जिससे झूले के साथ गुड़िया हिलती रहती थी। पर अब वो बचपन है क्या? अब वो गुड़िया है क्या? अब तो नकली गुड़िया आती हैं, और अब मोबाइल है, अब माँ छोटे से बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, उसमें अपने आप से बच्चा स्क्रीन बदलता रहता है, बस यहीं से स्क्रीन की लत लग जाती है। आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं जरा बताते चलिए। एक श्रोता ने लिखा है कि एक जमाना वो भी था कि बिजली, बंगले, सड़क, गाड़ियां, मनोरंजन के तमाम साधन बिल्कुल नहीं थे, फिर भी सजनी को साजन का और साजन को सजनी का इंतजार होता था। बिल्कुल सही बात कही आपने। कैसे मिट्टी के तेल से जलते माटी के दीपक की रोशनी में हम लोग मिले थे, बड़ी मान मनोवल के बाद वो हमारे पास तो आई और शरारत से दिया बुझा दिया कि हमें शर्माती है, फिर अंधेरे में दीपक रोशन हुआ था और जिंदगी भर का साथ बन गया, और आज बेटे नाती पोते बहुत कुछ है। तो सचमुच तब मोबाइल और सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, रिश्ते बड़े प्रगाढ़ होते थे, आँखों की भाषा होती थी, होठों की भाषा होती थी। तो आप अपने अनुभव साझा करते चलिए। फिलहाल बहुत सारे श्रोताओं ने आनंद बख्शी के अनगिनत गाने लिखे हैं, और उनमें से एक गाना हमने चुना है ये। तो आपने क्या ये गाना चुना था, याद कीजिए और बताइए इसमें हीरो हीरोइन कौन है। फिल्म महबूब की मेहंदी, गीतकार का नाम तो अंदाजा लगा ही लिया होगा आपने, संगीतकार का नाम जरा बूझिए।

आपने ये गाना सुनवाया, मेरी भी पसंद का गाना था, किसकी पसंद नहीं हो सकती भला। हमने संगीतकार का नाम भी आपसे पूछा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और गीतकार आनंद बख्शी। और आनंद बख्शी के गानों के लिए जब हमने पूछा कि

0: तो देखिए कितना प्यारा सा गीत था, मौसम प्यार का। हमारे साथियों ने देखिए जो बातें लिखी हैं उनको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन यादों से सुकून लेकिन बदलाव, इसके बारे में हम बात करेंगे कि अक्सर होता है मंदाकिनी जी कि हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, और अच्छी यादें होती हैं तो बड़ा सुकून मिलता है, वहीं अगर खराब यादें होती हैं तो हर समय वही घेरे रहती हैं, किसी काम में मन नहीं लगता है, उदासी से मन व्याकुल हो जाता है, और ना किसी से मिलने का और ना बात करने का ही मन करता है, ना कहीं जाने का मन करेगा, और एक तरफ से व्यक्ति पूरी तरह से मतलब उसको अजीब सा लगने लग जाता है, दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। और हम जब जन्म लेते हैं हर दिन उम्र के साथ बिताया पल अगले पल में यादें बन जाता है, जिनके साथ हम रहते हैं, परिवार के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, संगी साथी, सभी के साथ बिताए दिन यादों में समा जाते हैं, और यादें हमारी अपनी स्मृतियों की अमूल्य धरोहर हैं, और जीवन पर्यंत वे बढ़ती ही जाती हैं, जिनको कोई चुरा नहीं सकता। जैसे हम कहते हैं ना कि ज्ञान विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, बिल्कुल ठीक इन यादों के साथ भी होता है ना मंदाकिनी जी?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए बचपन का जो बिताया पल है, वो घर शहर अगर मोहल्ला की बात करें, गांव है गलियां हैं, हम उन दिनों क्या क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, घर में सीमित साधन होते हुए भी हमारे पास सभी सुख सुविधाएं होती थी, और आपस में मिलकर हम त्योहार मनाते थे, कैसे मनाते थे, उनकी रौनक सब आंखों में याद करते ही तैर जाती है, और कहीं ना कहीं मन को बड़ा सुकून मिलता है। यही यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखती हैं, और परेशानियों में उन्हें याद कर मुस्कुरा भी उठते हैं कि कैसे थे वे दिन, हम कितने खुश रहते थे। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि सीमित दायरा था और ज्यादा आवश्यकताएं भी हमारे पास नहीं हुआ करती थी।
0: बिल्कुल, और उन दिनों रिश्तों में प्यार होता था, एक लगाव होता था मंदाकिनी जी, और अपनापन होता था, या कोई भी मेहमान या रिश्तेदार आते तो लगता था कि वे अपने साथ खूब दिन रुके, और उनके जाने की तारीख ये बहुत जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि वो कैसे भी पता चल जाए।

0: वो कितने दिन यहाँ रुक रहे हैं, कब जाने वाले हैं, तो उसी हिसाब से वो दिन बिताने या मौज मस्ती करने के बारे में हम लोग सभी लोग ऐसा सोचा करते थे। फिर उनके रहने पर तरह तरह के जो घर में पकवान बना करते थे, तो छत पर देर रात तक की बातें करना, बच्चे बच्चों के संग खेलते थे, नदी नहर तालाब पर जाना, नहाना, खेत घूमना और पेड़ों पर झूलना आदि, बाग से फल तोड़ना चुराना, ये सब बहुत सारी यादें हैं जो एकदम से जुड़ जाती हैं उन।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बचपन का वो जो समय था हमारे लिए इतना कीमती था कि आज भी हम उसे भुला नहीं सकते हैं। न जाने कितनी यादें थी, लालटेन में पढ़ते थे, कुछ बच्चे शाम होते ही खुले आसमान में चांद तारों को निहारते हुए सोते थे, और सब आज ही कहकर याद करते हैं कि क्या दिन थे वो भी। हमारे जमाने में तो ऐसा होता था और ऐसे हमारे जमाने में वैसा होता था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आज भी हमें मिल जाते हैं। लेकिन केवल वक्त के बदलते दौर में मंजरी हम उन यादों के साथ तो नहीं जीवन गुजार सकते, है ना। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, परिवेश परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है और जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। लोगों की सोच बदल गई है, अब जीवन शैली समृद्धि की ओर बढ़ चली है। आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई सुविधाएं आ गई हैं, रसोई में सिलबट्टे की जगह मिक्सी ने ले ली है, चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है, अंगीठी की जगह भी गैस ने ले ली है, और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए हैं हमारे घरों में। कभी हम पैदल चला करते थे, आज साइकिल तो स्कूटर कार से जाने लग गए हैं। घर में टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, सभी कुछ आ गया है और सब ऑनलाइन भी हो गया है।
0: बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं ना मंदाकिनी जी की यादों को सजो कर रखे, क्योंकि भविष्य के लिए हमें पहले के दिनों के संग और आज के दिनों में तालमेल बिठाना ही पड़ता है। और वैसे ही हम धीरे धीरे आज के सांचे में सुख सुविधाओं के आदि हो गए, जैसे कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, तो पुरानी यादों को दोहराते भी है। और यादें जहां हमें भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाती हैं और बदलाव हमें आगे बढ़ना सिखाता है, इसलिए पुरानी यादों को भूलिए नहीं और ना ही नए समय से दूरी बनाइए। यानी जीवन का जो सौंदर्य इसी में है कि हम बीते कल से सीखें और आज की पूरी शिद्दत से जिए और आने वाले कल का पूरे आत्मविश्वास से स्वागत करें, है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और जिंदगी तो पल पल बदलती है मंजरी, और इसी प्रकार हमारी यादें भी धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, पुराने लम्हों को याद करते हैं किसी वजह से, तो हमें वो सब याद आ जाता है जिसका जिक्र अभी तुम कर रही हो।
0: और हमारे साथी भी देखिए एक संदेश में लिखा है उन्होंने कि बीते पलों की यादें जीवन का सबसे खूबसूरत और अमूल्य खजाना होती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, इस जिंदगी में जब हम कुछ पल ठहर कर स्मृतियों की खिड़की खोलते हैं तो एक असीम शांति और सुकून का एहसास होता है। यादों की मिठास मन को गहरा सुकून देती है, जो हमें मुश्किल वक्त में संबल प्रदान करती है। वहीं जीवन का अटल नियम बदलाव हमें निरंतर आगे बढ़ने और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रेरणा देता है। पुरानी यादें हमारी जड़ों से भावनात्मक जुड़ाव प्रदान करती हैं। इन पुरानी यादों को एक मजबूत पूंजी के रूप में सजोएं, लेकिन वर्तमान के बदलावों को खुले मन से स्वीकारें। बहुत अच्छी
1: बात है, जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, उसे हमें स्वीकार करना ही होगा, है ना।
0: बिल्कुल।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि यादों में सुकून इसलिए है क्योंकि वहां सब कुछ अपने हिसाब से हमें सजावा लगता है। जो लोग चले गए, जो लम्हे गुजर गए, जो गलतियां हमने की थी, वो सब यादों में आकर धुंधली और खूबसूरत तो हो जाती हैं। वहां कोई शोर नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई डर नहीं होता, बस एक ठहराव है जो दिल को थाम लेता है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी सुकून में उलझे रहें तो वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि बदलाव को समझना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि जिंदगी स्थिर नहीं है। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, हमें स्वयं को भी उनके साथ बदलना पड़ता है। और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हैं कि जो ये बदलाव है इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी जिंदगी में संतुलन बना रहता है।
0: बिल्कुल मंदाकिनी जी, और देखिए यादों की बातें करते करते हमारे पास अभी अंतराल का भी समय होने वाला है, तो अंतराल के बाद फिर हम सबसे मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबकी यादें साझा करेंगे, तो लेते हैं एक अंतराल।
1: ठीक है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो हम लोग बात कर रहे थे यादों के बारे में, तो हमारे साथी क्या लिखते हैं, लिखती है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बाराखड़ी और अंक लिपि लिखा करते थे और अब आज उस समय की यादों सजोते हुए स्मार्टफोन और को दिल में बसाकर मैसेज भी लिखते हैं, क्योंकि पुरानी यादें हमें सुकून, शांति और खुशी देती है, वर्तमान की भागदौड़ में ऊर्जा देती है, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें समय के साथ हो रहे बदलाव को भी पल पल समझना और अपनाना होगा, नहीं तो जीवन में हम पीछे रह जाएंगे। बहुत सारी यादें इन्होंने दी अपने संदेश में।
1: और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादें जीवन की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं, कठिन समय में वही यादें हमें सुकून देती हैं और आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं, लेकिन हमेशा यादों में ही खोए रहना ठीक नहीं होता, यादों को दिल में संजो कर रखें लेकिन वर्तमान को पूरे मन से जिएं और आने वाले बदलावों का खुले दिल से स्वागत करें, क्योंकि सुंदर यादें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं और सकारात्मक बदलाव हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, यही जीवन का संतुलन भी है।
0: और एक साथी लिखती है कि यादों से सुकून कहां पर, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो ही मुस्कुराते मिलते हैं, सामने है जो बस वो तो एक झूठी मुस्कान लिए फिरते हैं, यादों का सुकून आज भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाए आप तो हमें रास्ता उसका दिखा दीजिए।
1: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी की चौखट में सजी काली स्लेट पर बचपन में सफेद सलेटी से वर्णमाला, बाराखड़ी, बहुत ही प्यारा लिखा है जिसे आपने शायद पढ़ भी दिया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यादों से सुकून कहाँ, अब तो हर दर्द की सीमा पार है, जो यादों में थे वो मुस्कुराते मिलते हैं, सामने हैं। अच्छा, ये भी आपने बता दिया है कि हमारे श्रोता कहते हैं कि जो सामने लोग मिल रहे हैं वो हमें झूठी मुस्कान के साथ मिलते हैं, ऐसा नहीं है, हम सखियां तो आपसे सच्ची मुस्कान के साथ मिलती है हमेशा, है ना। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि यादों में सुकून तो सच में बहुत मिलता है, कितनी सारी पुरानी बातें हैं जिनको हम हटाना नहीं चाहते हैं और बच्चे कहते हैं अभी हम हटाइए दूसरा लाइए, और ये एक माया है जिससे लगाव मन में रहता है, उसे हटाना नहीं चाहता, फिर उसको जब छोड़ते हैं नई चीज आती है तो बहुत अच्छा भी लगता है।
0: तो चलिए इन्हीं यादों के साथ एक सुन लेते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: बहुत अच्छा गीत सुनवाया भी आपने, यादों का मेला तो हमारे साथ लगा ही रहता है।
1: जी
0: और हमारी श्रोता लिख भी रही थी कि वो जब अलमारी खोलती हैं और पुराने कपड़े देखती हैं, बहुत सारी चीजें जो अलमारी में पड़ी हैं वो उनकी यादों में सजीवी, और फिर वो खो जाती हैं यादों में। अलमारी खोलती कई देर हो जाती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं तो कहाँ खो गई। तो इस तरह से भी हमारे जीवन में बहुत बार होता है कि पुरानी चीजें हमसे छूटती नहीं हैं।
1: बिल्कुल। और हम लोग बात करने वाले हैं सखी विशेष के अंतर्गत मंदाकिनी जी, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी के बारे में। आज सखी विशेष के अंतर्गत हम स्वाति लोढ़ा जी के बेहद जो प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभा की धनी और सफल व्यक्तित्व की महिलाएं डॉक्टर स्वाति लोढ़ा जी, PhD, शिक्षाविद, लेखिका, सामाजिक उद्यमी और कारपोरेट प्रशिक्षक होने के अलावा आप जोधपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संस्थापक, निदेशक और JNU में प्रबंधन संकाय की डीन और मुंबई स्थित AIMSR आदित्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च की निदेशक भी रह चुकी हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, डॉक्टर स्वाति लोढ़ा की हम बात कर रहे हैं। इस संस्थान को देश के शीर्ष 10 उभरते 20 स्कूलों में स्थान मिला है, और इसके बाद वे प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नेतृत्व विभाग में भी प्रमुख बनी हैं। और डॉक्टर स्वाति की बात जब चल रही है तो उन्होंने कई शैक्षणिक और सामाजिक पहलों की संस्थापक वो रही हैं। PD प्राइवेट लिमिटेड, इनकी स्थापना उन्होंने, स्वाश PD प्राइवेट लिमिटेड, इसकी स्थापना उन्होंने 1997 में की थी। और ये संस्था युवाओं को महिलाओं को पेशेवरों के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।
1: इसके अलावा लाइफ लेमोनेट के आप संस्थापक भी हैं और ये उनके प्रशिक्षण एवं कोचिंग की पहल है, और वे नेतृत्व, पेरेंटिंग, व्यक्तित्व विकास और जीवन कौशल और पर कार्यशाला एवं सेमिनार आयोजित करती हैं। उनके उल्टा स्कूल, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के सक्रिय, सार्थक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए शुरू की गई उनकी एक सामाजिक पहल है। वर्तमान में भी वे एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति लोढ़ा ने 10,000 से अधिक कॉरपोरेट अधिकारियों और युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रशिक्षित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर स्वाति के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं जिसमें शिक्षा, व्यक्तित्व विकास और जीवन के क्षेत्र में सक्रिय योगदान, देश भर में छात्रों को, शिक्षकों को, अभिभावकों और कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए प्रेरक व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन करना।
1: जी, महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, सकारात्मक सोच, संवाद कौशल और आत्मविश्वास जैसे विषयों पर मार्गदर्शन देना, लेखन के माध्यम से भी जीवन मूल्यों, प्रेरणा और सफलता के सूत्र साझा करती हैं।
0: बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा की बेस्ट सेलर पुस्तक डोंट रेज योर चिल्ड्रन, रेज योर सेल्फ, और साल 2020 में इन्होंने अपनी स्व सहायता पुस्तक कम ऑन गेट सेट गो लिखी, और कविता से गद्य में जो है कदम भी रखा, और इस पुस्तक का 15 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है, और इसे भारत सरकार द्वारा 2002 में राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था।
1: इसके साथ ही इन्हें वीर दुर्गादास पुरस्कार 2009 में सूर्यदत्त राष्ट्रीय

पुरस्कार 2014 में, भारत गौरव पुरस्कार 2016 में, JITO बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2017 में, टाइम्स पावर वुमेन पुरस्कार 2019 में और ग्रोथ बिट्स वुमेन आइकॉन पुरस्कार 2021 में मिला। आपके पति शैलेश लोढ़ा जो एक कवि और अभिनेता लेखक भी हैं, और जी डॉक्टर स्वाति लोढ़ा का मानना है कि सफलता केवल अच्छी शिक्षा से नहीं बल्कि सही सोच, अनुशासन, निरंतर सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से मिलती है। वे युवाओं को अपने सपने पर विश्वास रखने, चुनौतियों से सीखने और जीवन में निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। तो ऐसी सफल महिला से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और हम लोग बढ़ते हैं एक गीत की ओर।

0: तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं उफ घरों में सामानों की उठाई धराई के बारे में।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जब पहले का समय होता था मंजरी, आज भी लगभग यही होता है, लेकिन कुछ अंदाज तौर तरीके बदल गए हैं। उठा धराई के काम का कहीं अंत तो होता नहीं। सुबह होते ही घर की महिलाएं या घर के लोग जो हैं घर के सामानों की उठा धराई में ही लगे रहते हैं। उनके दो हाथ 10 के बराबर हो जाते हैं। जिधर से निकले वहीं से सामान को झाड़ना पोछना सही से रखना शुरू कर देती हैं, खासतौर से महिलाएं। जो सामान जहां से उठाया वहीं रख दिया। परिवार में सबको समझाते हुए वो थकती नहीं कि भी सभी चीजें सही समय पर रखें, मगर भला किसी के कान में कोई असर नहीं पड़ता, यानी जू तक नहीं रेंगती।
0: और एक समय था जब घर के छोटे बड़े दोनों तरह के घर हुआ करते थे मंदाकिनी जी, लेकिन सलीका बड़ा होता था। घरों में हर चीज अपनी जगह तय होती थी। दादी अम्मा कहती थी कि जो चीज जहां से उठाओ वहीं रख दो। अब यही छोटी छोटी सी आदत घरों को व्यवस्थित भी रखती थी और समय भी बचाती थी। पहले घरों में रसोई में तरह तरह के डिब्बे हुआ करते थे, आपको याद होगा है ना, और उनमें रंग से हम पहचान जाते थे कि अरहर की दाल के जो है वो है डब्बा है वो उसका ढक्कन जो है वो हरे रंग का है। चावल के डिब्बे का नाम बिगड़ चुका है, घिस चुका है, और चीनी के डिब्बे का ढक्कन चूहा कुतर गया है, लेकिन डिब्बा नहीं बदला क्योंकि चींटी जाने की जगह नहीं उसमें हो पाई थी, है ना। तो जब माँ या दादी की रसोई कितनी भी उनकी छोटी सी दुनिया जैसी होती थी, आंख बंद करके भी वो बता देती थी कि चाय की पत्ती वाला डिब्बा दाईं तरफ तो दूसरे खाने में रखा है और जीरा उसके ठीक पीछे। सच पूछिए तो मंदाकिनी जी, उस जमाने में डिब्बे भी शायद अपनी जगह छोड़ने से डरा करते थे, है ना। और कोई बहू भला अम्मा की धराई को इधर उधर कर भी देना तो डांट पड़ने के आसार बन जाते थे, बल्कि क्या है कि पढ़ ही जाते थे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग थे उनका हम सभी कहना भी मानते थे, उनका सम्मान भी करते थे। जैसा कि आज बच्चे भी चिल्लाकर माता पिता को डांट देते हैं, यूं कहें कि टोक देते हैं कि क्या मम्मी आप रोज शोर करती हैं या क्या पापा, है ना। तो पहले अनुशासन होता था और सबसे मजा आता था जब बक्सा जब हम खोलते थे, अम्मा का संदूक खुलता था और कोठरी में अम्मा अपने उस बड़े से बक्से को संवारती थी, बच्चे फुदकते कंधे पर लटक जाते थे या पास में बैठकर उनके सामानों को निहारा करते थे और देखते थे कि दादी अम्मा का क्या खजाना है। ऊपर करीने से जो करीने से तह की भी साड़ियां होती थी, उनके बीच में नीम की सूखी पत्तियां जो आज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती हैं, और कहीं कपूर की हल्की सी खुशबू होती थी, और अम्मा की पल्लू में डिबिया बटुआ छुपा लेती जिसमें उन्होंने एक एक पाई जोड़ी होती थी। तो इस तरह का नजारा हमें याद आता है।
0: बिल्कुल। और उस बक्से में ना जाने कितनी सारी चीजें निकलती थी, जैसे चांदी के सिक्के, चांदी की सोने की सुपारी और चांदी की तश्तरी, कोने मुड़े हुए टूटे, और दादा का खत भी उसमें होता था मंदाकिनी जी, और पोटली में पुरानी आरती संग्रह, दुपट्टे में लिपटा श्वेत श्याम फोटो का एल्बम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो का एल्बम, और उसकी यादों में खो जाती थी और बच्चे पूछने लग जाते थे ये कौन वो कौन। यानी ये भी उठाई धराई का एक हिस्सा होता था, जब संदूक खुलता था तो उसमें यादों में ही आदमी खोया रहता था, व्यक्ति खोया रहता था। और अब अम्मा जो थी अपनी साड़ी के पल्लू में संदूक की चाबी बांध कर रखती थी, कभी कमर में खोस ली थी, और कभी अगर कोई पूछ भी बैठे कि अम्मा चाबी कहाँ है तो वो मुस्कुरा कर यही कहती भाई तुम्हें उससे क्या काम।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा।
0: ये सब बातें भी उस समय बेहद याद आती हैं।
1: हाँ बिल्कुल, यही नजारा होता था जो आप अभी पेश कर रही हैं हमारी सखी और सखियों को। सूती बनारसी रेशमी साड़ी तो कहीं चमकी ले गोटे का गोला, जिसकी जो है जरी पीली पड़ चुकी होती थी, शादी के लहंगे से निकला हुआ वो भी संजो कर रखा होता था। छोटी पोटली, 2-3-5 के सिक्के, बिछिया की कई जोड़ियां, घिसी हुई टूटी पायल जो शायद किसी को बनवाने को तो नहीं बोल पाई, एक संकोच मन में रहा होगा अम्मा के, और या अब नई मिल गई होगी नई पहन ली होगी कि कभी इसको ठीक करवा के फिर से पहन लूंगी। और कंगन मोतियों की मालाएं जो थी, कजरोटा, शीशा कंघी, दुर्जनिया तंबाकू का डिब्बा और उसमें धरे सूती धागा, और वो सुई बटन हुक न जाने क्या क्या, मतलब कपड़ों को धूप दिखाई जाती थी, छत पर जाकर कपड़े सुखाए जाते थे, बक्सा झाड़ा जाता था, उन्हें फिर से धरा जाता था, और इसी में पूरा समय गुजर जाता था।
0: बिल्कुल, और कितनी सारी यादें पास चली आती थी। और सर्दी के मौसम में ऊनी कपड़ों को धोना, सुखाना, धूप दिखाना, रजाई गद्दे धूप में डालना, पलटना, फिर वापस धरना, घर भर के कपड़ों की सिलाई ठीक करना, अलमारी बक्से जमाना, यानी गर्मी आने से पहले ही वापस इन ऊनी कपड़ों को समेटना, और पापड़, चिप्स, कचरी, जाने क्या क्या बढ़िया है, इन सबको बनाना, और बारिश से पहले पीपे भरकर सब रख लिया जाता था, और दिन महीने साल

0: उसकी उठाधराई के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी और सब काम एक अभियान जैसे होते थे और जैसे लगता था घर आंगन में एकदम मेला लग गया है।
1: और किसी के कोई शिकन या शिकायत नहीं होती थी चेहरे पर कि हम थक गए हैं या सारे दिन हम काम ही करते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। सब मिलकर घर को संवारते थे, बड़ा प्यारा नजारा होता था। मुझे याद है मेरी मौसी कहा करती थी कि हम गेहूं में तेल लगाकर उसको सुखाया करते थे, फिर उसको डब्बे में भरा करते थे। तो हम पूछते आप थकती नहीं है, कहती काहे की थकान, सब मिलकर काम करते हैं। तो घर के सभी सदस्य जानते थे कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है, कहाँ रखी है और कहाँ मिलेगी, और इसीलिए काम भी जल्दी होता था और बिना कारण जो भाग दौड़ हुआ करती है आज के जमाने में वो नहीं होती थी। आले ताखे जिनमें लालटेन, कुप्पी, मोमबत्ती, माचिस रखी रहती थी और लाइट जाने पर हाथ बढ़ाकर जला लिया जाता था उसे। हाथ के पंखे होते थे और खटिया, पलंग, तकिए सिराने पर भी वो रखे होते थे।
0: आराम से रखे, मिल जाते थे आराम से, है ना?
1: जैसे ही लाइट गई हमारा हाथ जाता था या दादी अम्मा का, नानी का, और उठाकर पंखा जलना शुरू हो जाता था।
0: तो ये भी एक सही एक सामान को रखने का तरीका था कि एक जगह रखते थे और घर का बड़ा हो या छोटा, सामान कम हो या ज्यादा, हर चीज का अपना एक ठिकाना होता था। शाम को पूरा परिवार मिलकर घर समेटता था, चारपाई अपनी जगह, अखबार तय करके रख दिया जाता था, सिलाई का डिब्बा बंद होकर अलमारी में चला जाता था। सुबह घर ऐसा लगता था जैसे रात भर किसी ने प्यार से उसकी छोटी सी गूद दी हो।
1: बिल्कुल सही कह रही हो मंजरी जी। लेकिन अब आते हैं हम आज के दौर पर जहां बिल्कुल सब कुछ अलग हो गया है। कभी चश्मा यहां, मोबाइल वहां, चाबी किसी मेज पर, रिमोट सोफे के नीचे, मतलब आधा समय कहां है सामान, कहां है मेरे मोजे, कहां है मेरा मोबाइल, इसी धुन में जो है पूरे घर में हंगामा बना रहता है आज के समय में। और सामान ढूंढने में लगभग पूरा समय, ऑफिस को लेट हो जाते हैं लोग बाग, लगता है जैसे घर का हर सामान रोज अपनी जगह बदलने की कसम खाकर बैठ गया हो।
0: बिल्कुल, और बच्चों के कमरे तो बिल्कुल अलग ही होते हैं कि उनमें चाहे जैसा भी सामान रखा हो तो बच्चे चाहते भी नहीं है कि आप उनको समेटिए, वो कहते हैं कि भाई आप रहने दो माँ। और अब तो माओं का भी धैर्य छूट गया है कि भाई उन्हें लगता है कि क्या करना है इनका समेट के, तो फिर फैलाएंगे, क्योंकि वो भी जॉब कर रही है, थकी आई है, तो खाने में भी समय देना है उन्हें। तो जो उनके लिए अब क्या हो गया, छुट्टी वाला ही दिन उठाई धराई का हो गया है।
1: बिल्कुल, नौकरी पेशा जो महिला है ना, उन्हें संडे बहुत प्यारा होता है, पता है मंजरी? जब उन्हें कोई रविवार को बाहर बुलाता है तो वो जाना पसंद नहीं करती है, क्योंकि पूरा दिन वो संडे का इसी काम में बिताती है। तो आज सुविधाएं बढ़ गई है, सामान भी इतना बढ़ गया है घर में, दुनिया भर की अलमारियां, दुनिया भर की हमने सामान उठा के घर में भर लिए हैं, और कहीं भी हम इधर उधर रख देते हैं तो फिर ये आवाजें लगाने का सिलसिला है, कभी खत्म नहीं होता, भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी शर्ट कहाँ है।
0: यानी कहने का मतलब ये कि जो उठाई धराई का जो काम था वो उस समय महिलाएं पूरे दिन भर इसी में लगी रहती थी और कोई शिकवा शिकायत नहीं, चेहरे पर शिकन तक नहीं होती थी। तो आज के समय में है कि भाई अगर कोई आपका कर रहा है काम तो आप मिलकर हाथ बटाइए और उठा धराई थोड़ी कम हो गई लेकिन आप अपना सहयोग दीजिए।
1: हाँ, तो मंजरी इसका अंत में जो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि घर की शांति जो है केवल सुंदर सजावट से नहीं आती बल्कि छोटी छोटी आदतों से आती है। जब हर वस्तु अपने स्थान पर हो तो मन भी शांत रहता है और समय भी बचता है और घर स्वर्ग जैसा लगता है।
0: बिल्कुल, और हम लोग सुनते हैं गीत।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंजरी, अभी
1: फिर
0: हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिखे हैं कि भाई हल्की फुल्की बातें घर में सामान की जूठा पटक है, बहुत ज्यादा रोचक है ये विषय। जब हम घर में किसी सामान को एक नई जगह से सेट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा मजा भी आता है, या कभी कभार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं, इस सामान को इस जगह पर रखना है, इस जगह पर नहीं रखना। इसमें परिवार वालों के अलग अलग मत हो जाते हैं, सबकी अलग अलग मर्जी होती है, किसी को वो सामान यहाँ जचता है, किसी को वहां जचता है, मुझे यहाँ मजा आ रहा है, और ये बहुत छोटा छोटा झगड़ा होने लगता है लेकिन मजेदार होता है। और लास्ट में सामान जहां पर भी रखा जाता है वो देखना पड़ता है कि अक्सर गृहिणियों की पसंद ही होती है कि लास्ट में घर की जो महिला है,
1: हाँ।
0: मुख्य महिला, वो क्या चाहती है, वहीं पर सामान रखा जाता है।
1: और एक साथी लिखते हैं, जहाँ घर जहाँ लोग रहते हैं वहाँ रखी चीजों की जगह बदलती रहती है, कभी सफाई के लिए, कभी सजावट के लिए और कभी बदलाव के लिए। इससे घर की सफाई होती है, बेकार वस्तुओं की पहचान होती है और घर अधिक व्यवस्थित बना रहता है। साथ ही इस बहाने से कई पुरानी खोई चीजें मिल जाती है जो भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा कर देती हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखती है कि घर के सामान की उठा पटक कई बार लगता है, अच्छा ये चीज यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, अच्छा ये सामान यहाँ नहीं वहां रख कर देखते हैं, और ऐसा करते करते फिर चीज की सही जगह कौन सी है ये भी भूल जाते हैं।
1: और एक लिखते हैं कि उफ, घर में सामानों की उठा पटक और घर में गूंजती आवाजें, जरा ये अलमारी इधर सरका दो, वो डिब्बा ऊपर रख दो, अरे ये सामान यहाँ किसने रखा। बस यहीं से शुरू हो जाती घर में सामानों की उठापटक। इसी बीच अचानक कोई पुरानी तस्वीर, खोया जरूरी सामान या किसी अपने का लिखा हुआ पत्र मिल जाए तो चेहरे की थकान पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन इस उठापटक में कभी चाबी नहीं मिलती, चश्मा गायब हो जाता है या फिर अन्य कोई जरूरत की चीज, फिर जवाब मिलता है अभी तो यहीं रखा था। ऐसे में झुंझलाहट और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन उठापटक करते समय धैर्य भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और खत है हमारे संदेश के रूप में कि सामान की उठापटक का मौसम आने ही वाला है, ये कहीं आ ही गया है, यानी त्योहार का मौसम। अगस्त माह से तैयारियां आरंभ हो जाएंगी और इसमें शामिल रहेगा घर की सफाई, रंग रोगन, पर्दे बदलना, इन सबको करते करते कुछ तो सामान की उठापटक होगी ही, कुछ शरीर की भी, कभी गिरते हैं, कभी सामान उठाते हुए लड़खड़ा जाते हैं, कभी बड़ों की आवाज आती है, संभाल कर रखना भाई, गिरना नहीं गिराना नहीं, कहीं आवाज आती है अभी मजा अभी यहाँ से हटा दो, बस यही करते करते कुछ टूट भी जाता है, कुछ बिखर भी जाता है।
1: यानी बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखकर भेजी हैं।

0: और इसी की तरह देखिए मुहावरों की दुनिया में भी हमारे साथियों ने लिखकर भेजा, जो हमने आज दिया था कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे पर, तो इस पर लिखते हैं कि मुहावरों की दुनिया भी अजब गजब की है, जहां हमें गागर में सागर जैसा अनुभव होता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यहां नोचने का अर्थ झटकने से खींचना, उखाड़ना या खरोचना होता है। जो व्यक्ति अपनी गलती के कारण शर्मिंदगी व्यक्त करने की बजाय क्रोधित होकर दूसरों पर गुस्सा निकालता है, उसी पर यह मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मेरी बिल्ली और मुझे से म्याऊं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मुहावरों की दुनिया बड़ी निराली है। अभी हाल ही में मैं एक कहानी संग्रह की समीक्षा लिख रही थी, क्या बात है, और उसमें कहानी की नायिका बहुत खूबसूरत है और कुछ ऑफिस के कर्मचारी उसके बारे में तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं। मैं उस एक जगह पर अटक गई और फिर वहीं बड़ी देर तक कुछ नहीं सूझा, तो मैंने इसी मुहावरे का प्रयोग किया और इस मुहावरे के प्रयोग से मेरी समीक्षा को तर्क मिल गया, क्योंकि साथी कर्मचारी जब हर तरह से असफल हो गए तो नायिका के बारे में गलत गलत अफवाह उड़ाने लग गए।
0: तो चलिए एक पहले गीत सुन लेते हैं, फिर हम आगे और संदेश पढ़ते हैं।
1: चलिए

0: तो बात चल रही थी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे क्या है ना। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अपनी असफलता या लज्जा पर गुस्सा होना और झुंझलाट को किसी निर्दोष पर या व्यर्थ की चीजों पर निकालना। मुहावरे की उत्पत्ति और भाव, जब तक कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन चूहा भाग जाता है, बिल्ली पकड़ी नहीं पाती, उसे पकड़ नहीं पाती, शर्मिंदा होकर पास खड़े खंबे पर अपने नाखून गड़ाने लगती है। इसी स्थिति को इंसानों की इस मनोदशा से जोड़ा गया है, जहां व्यक्ति अपनी गलती या कमजोरी स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मन देता है और मतलब का गुस्सा दिखाता है। वाक्य प्रयोग से बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ कुछ उन्होंने उदाहरण भी दे दिए हैं, जैसे हम अपने परीक्षा पेपर में देते हैं। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत प्यारे प्यारे उदाहरण लिखकर हमें भेजे हैं।
1: और इसके साथ ही एक लिखते हैं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी ही गलती होने पर खुद पर शर्मिंदा होना और गुस्सा करके किसी पर भड़ास निकालना या किसी चीज को नोच डालना, इन्होंने लिखा है। और इसी के साथ ही एक साथ लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, लोकोक्ति का अर्थ किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है, अन्य विकल्प असंगत है, अतः सही विकल्प किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना है। एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा है कि तुम खुद परीक्षा में पास नहीं हो सके और मास्टर जी पर दोष लगा रहे हो, ये तो वही बात हुई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: वही एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है, अपनी सफलता या शर्मिंदगी के कारण गुस्सा होना और उस झुंझलाहट में दूसरों पर गुस्सा निकालना, यानी बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करना। जब कोई व्यक्ति किसी काम में नाकामयाब हो जाता है या उसे अपनी ही गलती पर शर्मिंदगी महसूस होती है लेकिन वो उस गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता।

0: सकता तो वो अपना गुस्सा या खीज किसी और चीज पर निकालता है। घर में भी अगर बड़ों का मन किसी बात पर खराब है तो अपनी खीज बच्चों पर हम निकालते हैं और अपने से छोटे पर भी हम निकालते हैं। इसे ही कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
1: और एक साथी लिखते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जब कोई गलती पर शर्मिंदा ना होना गुस्सा किसी पर उतारते हुए क्रोधित हो जाए। ऐसी ही कहावत गुजराती की, लाज माने बदले गाजवू, शर्मिंदा ना होकर गुस्सा करना, इन्होंने लिखा है। जी
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में और अन्य संस्थानों में देखा जाता है कि वहाँ उच्च अधिकारी अपनी खुद की असफलता के कारण उसे छुपाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों पर क्रोधित हो जाते हैं और वो फिर अपने घर पर बेचारी पत्नी और बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं। इस मुहावे का चरितार्थ करते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, जो की बहुत ही गलत बात है।
1: और एक साथी लिखते हैं कि घर परिवार रिश्तेदार में खिसियानी बिल्ली वाले बात हमेशा ही होती है। रिश्तेदारी में ही दो बहनों में कुछ मनमुटाव हो गया, जबकि उसमें से एक बहन बैठने पर कुछ कुछ बात बोल रही थी, दूसरी बहन को लगा कि ये उन लोगों की बात हो रही। उस समय तो कुछ नहीं बोली, बाद में वो हम ही लोग से उलझ गई और हमें समझ में नहीं आया कि इसके पीछे इतनी ये आग बबूला क्यों हो रही है। सबके सामने खूब चिकी चिल्लाई, बाद में जब उसे पता चला तो हम सब में से ये कहकर खूब हंसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
0: और एक आखिरी और है संदेश, वो लिखते हैं कि पुराने समय में घी दूध मक्खन को छत पर रस्सी का छीका बांधकर सुरक्षित रखा जाता था ताकि बिल्ली उछलकर भी वहां तक नहीं पहुंचे। जब बिल्ली वाकई में चढ़ने के लिए खंबे नोचती है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचती तो फिर वो खंबा नोचने लग जाती है।
1: तो चलिए इसी के साथ सुन लेते हैं।
0: गी। गी।

0: तो मंदाकिनी जी, देखिए बातें करते करते प्रोग्राम एकदम समापन की ओर आ गया है, तो चलते हैं, लेते हैं सबसे विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: मंदाकिनी जोशी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: Thank you.

0: आज है जाने माने गीतकार आनंद बख्शी का जन्मदिन। वो गीतकार जिसकी गीत यात्रा 1958 से शुरू हुई तो पूरे 44 साल चली, यानी तकरीबन 5 दशक का सफर। इस सफर में आनंद बख्शी के गानों ने कभी हमें रुलाया।
1: जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई।
0: कभी थपकी दी और बहलाया।

0: हमारी खुशियों की साझेदारी की।
1: जय जय शिव शंकर,
0: कभी इन गानों ने हमारी मोहब्बत का

0: आज हम आपको सुनवा रहे हैं राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और कुछ सुने किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत।
1: नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर आया हूँ। 1950 में बख्शी साहब ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन दिल्ली में गए थे
0: जी,
1: उन्होंने वॉइस टेस्ट दिया था
0: उद्घोषक बनने का।
1: हाँ जी, और वो फेल हो गए थे।
0: बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी और खुद से एक वादा किया था जो सारा मामला है। पर सोचिए कि ये कनेक्शन बख्शी साहब का रेडियो के साथ है। एक और कनेक्शन है, जब उनका पहला गाना उन्होंने रेडियो पर सुना था, यहीं से बातें शुरू कर।
1: चुन्नू पतंग को कहता है काई,
2: चुन्नू पतंग को कहता है काई, बोलो बेटा टिंगू ये रंग है या राइट, राइट राइट राइट,
0: बोलो जी ये रॉन्ग है या राइट।
1: पहली बार उन्होंने अपना गाना सुना था
0: जी
1: एक गली में, दिल्ली में घूमते घूमते,
0: अरे
1: ये तो मेरा गाना बज रहा है। तो उनका जो बचपन का सपना था कि एक दिन मेरे गाने बजेंगे रेडियो पर
0: जी,
1: वो उस दिन पूरा हुआ।
0: क्या बात है। तो ये बख्शी साहब का जो रेडियो कनेक्शन है, उसके अलावा एक और कनेक्शन है, आप जानते हैं क्या? वो ये है कि दुनिया का कोई भी रेडियो स्टेशन जो फिल्मी गाने बजाता है, कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता जब बख्शी साहब के गाने नहीं बजते हो।
1: यस, और एक और कनेक्शन है।
0: अच्छा,
1: कि उनकी जो जीवनी है
0: जी,
1: उसको ट्रांसलेट इंग्लिश से हिंदी में आरजे यूनुस खान ने किया।
0: जी, वो भी ये मेरा सौभाग्य है,
1: तीसरा कनेक्शन बन गया।
0: जी जी बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं, बख्शी साहब कहाँ पैदा हुए थे और वो जो खानदान था वो किस हैसियत का खानदान था, वहाँ लोग क्या क्या काम किया करते थे?
1: तो बख्शी साहब पैदा हुए थे भारत में, फिर उसका विभाजन हुआ। भारत में रावलपिंडी में पैदा हुए थे, 17 साल उन्होंने रावलपिंडी में गुजारे, और फिर विभाजन हुआ तो फिर वो पाकिस्तान बन गया
0: जी।
1: तो 1947 में वो इंडिया आए,
0: सरहद के इस पार आ गए।
1: हाँ, जो उनके 17 साल थे, वो उन्होंने एक गाना है उनका, मेरे देश में पवन चले पुरवाई
0: जी,
1: मेरे देश में,
0: बिल्कुल।
1: तो वो कहते हैं कि अगर मैंने गांव की जिंदगी नहीं जी होती तो ऐसा मैं गाना लिख ही नहीं पाता।
0: क्या प्यारी बात।
1: अगर मैंने वो गाना लिखा है इसलिए क्योंकि मैंने वो पानी पिया है, खेतों में नहा हूं, खेतों से अनाज उठाया है,
0: इसीलिए जिगरी दोस्त का वो गाना जो है वो इतना सुंदर बन पड़ा है।
1: हाँ,
0: उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है।
1: हाँ, पवन चले पुरवाई।
0: हाँ,
1: क्योंकि इसे हमारे खुले गांव में,
0: हाँ,
1: सबसे ज्यादा मजा जो है वो एक आकाश का होता है, खुला आकाश, और दूसरा पवन।
0: बिल्कुल,
1: पवन का जो मजा है और जो बरसात का मजा है, पवन और खुले आसमान के नीचे, उसकी वो बातें बहुत करते थे।

0: उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। उन्होंने
1: वो जब रावलपिंडी से दिल्ली आए थे तो एक छोटी दवाई की शीशी में, खाली शीशी में वो मिट्टी भी लाए थे रावलपिंडी की, और जिंदगी भर उन्होंने वो मिट्टी रखी थी अपने कबड़ में उस बॉटल के अंदर।
0: मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मिट्टी से प्यार, जो गांव से प्यार है, उसकी एक मिसाल है मेरे देश में। पवन चले पुरवाई में बख्शी साहब लिखते हैं, अमवा की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियां हो पतझड़ मस्त बहारें जैसे, पत्थर भी हैं तारों जैसे मेरे गांव की गलियों के, मेरे खेत की मिट्टी ने सोने की मूरत पाई, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। ये गांव की मिट्टी से उनका प्यार था।
1: अमवा

0: ये गांव वाले लिख सकते हैं। और एक रावलपिंडी की मिट्टी, पिंडी की मिट्टी,
1: उसका पिंडी कहते थे जी, रावलपिंडी नहीं कहते थे।
0: उन्होंने एक कविता लिखी है, उसका जिक्र कीजिए।
1: उन्होंने वो कविता लिखी थी क्योंकि उनको क्या होता है, वो भले वो विभाजन हो गया और एक दूसरा देश बन गया
0: जी,
1: लेकिन जन्म तो वहीं हुआ था ना,
0: बिल्कुल,
1: तो उनके लिए वो जन्मभूमि है। जब इंसान अपनी माँ से बिछड़ जाए 5 साल की उम्र में, तो वो भी तो मिट्टी है, वो भी तो एक भूमि क्या होती है, वो भी तो पैदा करती है ना, भूमि गर्भ होती है, गर्भ में से ही सब निकलता है ना, अनाज निकलता है, पानी आता है। तो वैसे ही जब माँ भी गुजर गई 5 साल की उम्र में, और मिट्टी भी रह गई पीछे 17 साल की उम्र में, तो एक जो दर्द महसूस होता है कि वो जो एक मातृभूमि है वो चली गई, दोनों माँ चली गई, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसकी कोख से जन्म लिया। तो इसलिए वो ऐसी उन्होंने ये कविता लिखी थी, कविता का नाम है
0: पिंडी की मिट्टी। तो मेरा सौभाग्य है कि वो कविता मैंने पढ़ी है, एक हाँ, किताब है बख्शी साहब की कविताओं की जिसमें वो संग्रहित हाँ,
1: मैं जादू हूँ चल जाऊंगा
0: जी,
1: उसमें लिखी मेंशन की हुई है। हाँ।
0: बख्शी साहब के बचपन की कुछ दिलचस्प घटनाएं हमारे साथ बांटिए, जैसे वो बच्चों के साथ खेलते थे, वो सिनेमा, साइकिल, गाना, ये सारी चीजें।
1: क्योंकि उनके जो ग्रैंडफादर थे दादाजी, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे।
0: अरे ये तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई,
1: सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ एंटायर पंजाब, ऑल द जेल्स,
0: पंजाब प्रांत,
1: पूरा प्रांत, अनडिवाइडेड पंजाब का जो जेल्स थे वो जेलर थे, उसकी वजह से सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, वेरी बिग, वेरी पावरफुल मैन। उनका उनका जो घर है अभी कुछ 3-4 साल पहले ही वो डिमोलिश हुआ है, 3 मंजिल का घर था वो। और ही वॉज द ओनली चाइल्ड फैमिली जिनके पास साइकिल थी। तो वो साइकिल भी इतनी खास चीज थी तब कि जब वो कहीं भी जाते थे साइकिल छोड़ आते थे, कोई ना कोई घर में साइकिल छोड़ जाता था वापस,
0: सब पहचानते थे
1: कि दरोगा जी के पोते की साइकिल है ये।
0: क्या कहलाती है, मोहियाल,
1: मोहियाल, मोहियाल, हाँ, पंजाबियों में एक कम्युनिटी होती है मोहियाल्स
0: जी।
1: तो हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमारे कम्युनिटी में, अभी मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं, मोर देन 50% रिलेटिव्स हमारे आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में है, बिकॉज वी आर अ मार्शल क्लैन
0: जी जी,
1: हाँ, वी वर द प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय ऑफ सोसाइटी। और उनको शौक था फिल्मों का, और फिल्म देखने के लिए पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम पे फिल्म का काम करना या फिल्म देखना कंजर

0: का काम होता था,
1: खराब माना जाता था।
0: हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहां पे पास में, तो वहां पे वो टेम्पररी नौकरी ले लेते थे कभी हफ्ते में 2-3 दिन। क्यों? पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में।
1: अरे गजब।
0: हाँ, क्योंकि अगर आप सिनेमा में काम करोगे और लोगों को सीट बताओगे सीट कहाँ बैठना है, या डोरमैन का काम करोगे स्कूल के बाद, तो फिल्म पूरी देखने को मिलती है फ्री में, तो फिर दादाजी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, फिल्म देखने को मिलने भी नहीं वाले। तो ये उनका टाइम पास होता था कि चलो मैं इसी बहाने फिल्में देखूंगा। तो जिस
1: वाह।
0: दिन पिताजी को पता चला कि इसने ऐसी नौकरी पकड़ी हुई है टाइम पास,
1: और जबकि वो बच्चे थे उस वक्त।
0: बच्चे थे और स्कूल की पढ़ाई नहीं ठीक से कर रहे थे और जाके इधर नौकरी कर रहे थे सिनेमा हॉल में फ्री में फिल्म देखने के लिए, तो जो उनके दादाजी की जो छड़ी थी, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद, जबरदस्त मार पड़ी कि तुमने ऐसा क्यों किया जब हमारे को पैसों की जरूरत ही नहीं है, और तुम भी ये काम कर रहे हो, गलत काम है ये फिल्में देखना, अभी तुम्हारा पढ़ाई का वक्त है। इतना शौक था उनको,
1: जी।
0: और वो करीब कुछ 12-13 साल की उम्र से ही नज़में लिख भी रहे थे, उसकी धुन भी बनाते थे, उसको गाते भी थे और उस पर एक्टिंग भी करते थे। क्योंकि
1: वाह वाह
0: जब
1: वाह।
0: मोहल्ले में रामलीला होती थी
1: जी
0: तो उनको भी पकड़ा जाता था डायलॉग,
1: अच्छा।
0: मतलब स्क्रिप्ट लिखने के लिए रामायण का। तो जितने भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल होते थे हिंदू के, तो उसमें सारे में बख्शी साहब टीनेजर उनको बुलाया जाता था, अरे वो बख्शी को बुलाओ, अरे वो दरोगा जी के पोते को बुलाओ, वो अच्छा लिखता है, अच्छा गाता है, अच्छी एक्टिंग करता है। तो सब कर लेते थे, लिख भी लेते थे, उसको धुन भी बना देते थे, गा भी लेते थे, उसकी एक्टिंग भी कर लेते थे।
1: और उनका ख्वाब बंबई जाने का था।
0: हाँ, फिल्में देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बनी है, बंबई से बंबई में बनती है। अच्छा, बंबई किधर है?
1: समंदर के पार है।
0: समुद्र के पार है। तो उनको ये था कि मैं बंबई जाऊं, लेकिन उनको पता नहीं था बंबई क्या है, ये कि बंबई में फिल्में बनती हैं,
1: हाँ
0: तो अगर गाना गाना है या गाना लिखना है या एक्टिंग करनी है या धुन बनानी है तो बंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो गांव में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं।
1: एक छोटे से बच्चे को यह समझ
0: हाँ
1: में आ गया कि उसकी
0: हाँ
1: मंजिल बंबई है।
0: हाँ तो जब वो 14 साल के थे, उनको नेवी में भर्ती किया गया, क्योंकि हमारी सारी एंसेस्ट्री नेवी में थी, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स या पुलिस, बिकॉज देवर अ मार्शल क्लैन।
1: तो 14 साल की उम्र तो बहुत कम होती है, तो कैडेट बन गए वो।
0: कैडेट, यू द नेवल कैडेट, और उनकी भर्ती हुई दो शिप थी, INS हिंदुस्तान और INS दिलावर, इन दो शिप में पढ़ाई जाती थी नेवल की जो पढ़ाई है।
1: और ये तो अंग्रेजों का जमाना था।
0: हाँ, 1942, तो जो पहला साल उनका नेवी में था कराची पोर्ट में, तो वहां म्यूटिनी शुरू हो गई। तो जो म्यूटिनी हुई वो बम्बई में हुई, बॉम्बे पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट, मद्रास पोर्ट और कराची पोर्ट।
1: ये जो बगावत थी नेवी
0: बगावत,
1: की, ये
0: हाँ,
1: बहुत मशहूर है
0: बहुत
1: और
0: मशहूर है,
1: इसका
0: बहुत,
1: इतिहास में दर्ज
0: बल्कि
1: है
0: ये
1: इसका
0: पहली
1: नाम।
0: बगावत, सेकंड बगावत थी जब ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि हम इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे।
1: जी
0: क्योंकि देखिए, आम आदमी प्रोटेस्ट करे तो वो तो करेगा प्रोटेस्ट, लेकिन अगर आपकी नेवल फोर्स आपके अगेंस्ट चले जाए, आपकी आर्मी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपकी पुलिस आपके, कू बन जाता है, लेकिन भी अ
1: हाँ
0: कू,
1: बिल्कुल
0: तो दैट
1: बिल्कुल
0: इज वेन रियलाइज यार ये तो इन पे राज करना मुश्किल होगा।
1: जी।
0: तो उन्होंने उसमें भाग लिया था, और उनका जो ये जो उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी ना, नेवी इसलिए नहीं ज्वाइन की थी क्योंकि वो पेट्रियोटिक थे, उन्होंने नेवी ज्वाइन की थी कि कराची में बोट में पढ़ाई होती है, शिप में पढ़ाई होती है, और वो शिप में घुमाते हैं, तो जब मेरी शिप बंबई जाएगी मैं शिप से जंप मार के भाग जाऊंगा, नेवी छोड़ के भाग जाऊंगा और जाके फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा।
1: अरे
0: तो
1: अरे अरे।
0: उनका जो गोल था वो देश के लिए नहीं था नेवी
1: हाँ
0: ज्वाइन करना, वो जो देश के लिए गोल था वो जब म्यूटिनी हुई तब पैदा हुआ, वहां उनको एहसास हुआ, क्योंकि जब वो पकड़े गए सब और जेल हुई, तो तब उनको उनमें ये एक एहसास हुआ कि हम गुलाम हैं। तब तक उनको वो गुलामी का एहसास नहीं था,
1: क्योंकि उम्र भी बहुत कम थी।
0: बहुत कम थी।
1: जी
0: और क्या होता है कि दादाजी भी पुलिस में है, सच पावरफुल पोस्ट, तो आपको कोई गुलाम की तरह रखेगा नहीं ना, तो आपको गुलामी का एहसास नहीं होता। तो जब भी इनको कराची में अरेस्ट किया गया, जब म्यूटिनी को स्मैश किया गया, डिमोलिश किया गया बाय द ब्रिटिश, उनके जो ऑफिसर थे वो अंग्रेज था, तो उन्होंने पकड़ा इनको, सबको पकड़ा, जेल में गए। तो जेल में जब गए और बख्शी साहब को देखा, तो उसने बोला ये बच्चा कौन है, ये तो अंडर एज है। तो बख्शी साहब को उन्होंने बोला कि तुम तो बच्चे हो, यू आर नॉट 18 एज येट, तो अगर तुम्हें जेल होती है, अगर मैं तुम्हें जेल में भेजता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जेल की लाइफ बहुत अलग लाइफ होती है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी इतनी कम उम्र में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं,
1: जी
0: लेकिन क्योंकि मैं एक ऑफिसर हूं ब्रिटिश नेवी का, तो मैं
1: बिल्कुल।
0: तुम्हें रस्टिकेट करूंगा नेवी से। तो उनको रेस्टिकेट किया गया, यू हैव टू लीव। फिर लीव करके फिर उनके बाद वो गए, उन्होंने जब पार्टीशन हुआ, इंडिया आए, दिल्ली आए, तो वहां उन्होंने फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन की, सिग्नल्स।
1: इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो रॉयल इंडियन नेवी के जो फौजी अफसर थे, उनके प्रति बहुत सम्मान था बख्शी साहब के जहन में, क्योंकि अगर वो जेल भेज देते

0: तो पूरी जिंदगी बदल जाती है।
1: हाँ, तो वो कहते हैं ना कि एक तो माँ होती है जो जन्म देती है, और एक
0: जी
1: जो माँ होती है जो एक आगे जिंदगी बढ़ाती है.
0: जी
1: तो ही ऑलवेज थॉट कि इट इज अ वेरी मदर लाइक एक्ट,
0: जी
1: एक माँ की तरह एक उन्होंने उस बच्चे को एक सेकेंड लाइफ दी कि तू जा, देखो
0: जी
1: मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी जेल में,
0: और छोड़ दिया, सबसे
1: छोड़ दिया.
0: इंपॉर्टेंट
1: हाँ,
0: बात।
1: यू आर रस्टिकेटेड विद डिसऑनर.
0: अब जब
1: फॉर
0: घर आए तो क्या हाल हुआ?
1: घर आए तो फिर नेचुरली एकदम, फिर तो इमिजिएटली अपना एक साल में पार्टीशन हो गया ना देश का, अपना भारत का. तो फिर उससे पहले उनको उधर भेजा गया गुरुकुल, जम्मू के
0: जी
1: पास में गुरुकुल था, तो वहां गुरुकुल में भेजा गया पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ रावलपिंडी में वो सिनेमा हॉल में ये चले जाते थे छोटा मोटा काम करने के लिए, पैसे नहीं मिलते थे लेकिन फिल्म देखने को मिलती थी. तो ये सब पकड़ी गई, सब उनकी सब चोरी पकड़ी गई था ये तो. और दूसरी एक बात थी कि एक बार उनके स्कूल में दो दोस्त बने थे उनके, तीन, ये तीन दोस्त थे स्कूल में, और तीनों का ये सपना था कि हम बंबई जाएंगे कुछ काम करेंगे. बख्शी साहब का था कि मैं फिल्म ज्वाइन करूंगा,
0: और बाकी
1: बाकी
0: दो
1: दूसरों का
0: बंदे?
1: कुछ था, उनका कुछ सपना था. तो इन्होंने तीनों ने स्कूल की सारी किताबें बेच दी,
0: अरे बाप रे।
1: बैग वैग सब बेच दिया, पानी की बॉटल सब बेच, सब कुछ जो भी स्कूल का सामान था सारा बेच दिया. और उस जैसे पैसे मिले वो जाके सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में खड़े हो गए कि सुबह हम मिलेंगे इतने बजे और हम ये ट्रेन पकड़ेंगे, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, यहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से वहाँ जाएगी, वहाँ से बम्बई पहुँच जाएगी,
0: हाँ हाँ
1: और
0: हाँ
1: हम घर में नहीं बताएंगे. अभी वो चले गए, पहुँच गए, अपना सामान वामान बेच के सब पैसे वैसे जेब में, जो भी 5, 10, 6 रुपया, 1 रुपया जो भी मिला होगा उसका जेब में डाल के, अपने दो तीन एक जोड़ी कपड़ा वपड़ा कपड़े की थैली में लटका के, पानी वानी, पहुंच गए स्टेशन. 5, 6, 8, 12 घंटे निकल के वो आए नहीं दोनों दोस्त,
0: अरे अरे अरे,
1: घर चले गए वापस. घर चले गए वापस तो फिर मालूम पड़ा कि तो सारी किताबें बेच दी इसने, कल स्कूल है,
0: फिर
1: स्कूल
0: पिटाई
1: जाने के लिए
0: हुई।
1: सब जबरदस्त पिटाई हुई.
0: अरे
1: तो
0: अरे,
1: उसका इलाज उन्होंने क्या ढूंढा कि यहां से निकालो, ये यहां खराब हो गया गांव में,
0: यहां गलत संगत हो
1: गलत
0: गई।
1: संगत होगी इसकी,
0: हाँ,
1: इसके बेकार बेकार से सपने हैं इसके बंबई जाने के, फिल्म लाइन ज्वाइन करने के, तो इसको गुरुकुल भेजो, गुरुकुल में खूब पिटाई होगी, इसकी पढ़ाई भी होगी और साथ में
0: स्ट्रिक्ट लोग हैं वहां
1: डिसिप्लिन,
0: पर।
1: स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता ना, बिकॉज एवरीथिंग इज धार्मिक, तो वहां ये सुधर जाएगा. तो भेजा.

0: गुरुकुल ज्वाइन किया तो गुरुकुल में एक ऑफिसर आया था, ही वाज अ ब्रिटिश बॉक्सर, ब्रिटिश था वो, अंग्रेज था और वो बॉक्सर था और टीचर था, बॉक्सिंग सिखाता था वो।
1: अच्छा, मतलब गुरुकुल में इस बात पर बहुत ध्यान दिया जाता था, मतलब कि बच्चे हट्टे कट्टे बने, तंदुरुस्त बने, वो
0: ब्रिटिश राज था ना, ब्रिटिश को था कि हम हर जगह हमारा पैर दबा के रखें। तो जो दो गुरुकुल में पढ़ाई इंग्लिश नहीं होती थी लेकिन उनको अपना दबदबा सब जगह रखना था, तो उन्हें वहां भी अंग्रेज को भेजते थे वो, कि ताकि वो नजर रखे सब बच्चों पे और स्टूडेंट्स पे कि हो क्या रखे, हमारे अगेंस्ट रिवोल्ट तो नहीं हो रहा गुरुकुल में। बॉक्सर था तो वो बॉक्सिंग सिखाता था सबको, पीटी वीटी कराता था। तो बॉक्सिंग सिखाने के लिए कोई सीखने को रेडी नहीं था, तो किसी को शौक नहीं था, क्योंकि हमारी जो एंसेस्ट्रल है अपना, हमारी जो कल्चर है उसमें वो है ना कुश्ती,
1: बिल्कुल
0: बॉक्सिंग तो है ही नहीं हमारे इसमें, तो उसको अभी कैसे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए। तो अगर बॉक्सिंग सीखोगे तो बड़ा ग्लास दूध का मिलता था, उसमें मलाई ऊपर रहती थी।
1: अच्छा,
0: तो वो दूध का ग्लास और मलाई के साथ पीने के लिए उन्होंने बॉक्सिंग क्लास ज्वाइन कर ली, कि यार साला इधर मलाई और दूध मिलेगा,
1: दूध मिलेगा।
0: फॉर एवरी क्लास एवरी स्टूडेंट गेट्स वन ग्लास ऑफ मिल्क विद मलाई ऑन टॉप। वो जमाने के ग्लास इतने बड़े बड़े रहते थे,
1: बिल्कुल। और वो पंजाबी व्यक्ति दूध का
0: शौक, मलाई, गांव में पैदा हुए हैं
1: जी,
0: तो ज्वाइन किया। अच्छा, वहां पर वो जो ऑफिसर था ना, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था, वो सिखाने के लिए नहीं आया था, वो अपना गुस्सा निकालता था सब पे, और रोज एक स्टूडेंट को पकड़ के इतनी पिटाई करता था कि वो बच्चे बेहोश हो जाते थे। तो बख्श साहब ने देखा, यार ये तो खूब पिटाई हो रही है लेकिन यार धूप भी मिल रहा है। तो वो क्या करते थे, रोज जब क्लास होता था ना, हफ्ते में एक दिन क्लास होता था, वो किसी न किसी के पीछे छुप जाते थे
1: ताकि रिंग में ना आना पड़े।
0: हाँ, और रेंज भी नहीं आया, आंखों से आंखें नहीं मिल सके। तो 3-4 महीने तो बड़ा दूध पिया, मलाई खाई, मजे के ले लिए, लेकिन एक दिन वो अंग्रेज ने देख लिया इनको, बोला यार तुम कौन हो, हैव यू ज्वाइन न्यू, तुम क्या नया आए हो इधर, इसे नहीं, कब आए तुम इधर क्लास में। वो सर 4-5 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए
1: अभी तक मेरे हाथ
0: नहीं लगा ये। उनकी तो डबल पिटाई की उन्होंने,
1: अरे बाप,
0: अरे जबरदस्त खूब पीटा बख्शी साहब को। बख्शी साहब अगले दिन भाग गए वहां से।
1: अरे अरे,
0: सुबह उठे सीधा ट्रेन पकड़ी। क्या वो जमाने के जो बच्चे थे ना
1: जी,
0: वो आज के जमाने के जो हमारे मेट्रो बच्चे हैं या टायर 2 सिटी के बच्चे, वो उतने

0: नहीं थे वो, तो सीधा अगले दिन ट्रेन पकड़ी जम्मू से, राहुल घर वापस आ गए कि बाबा बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई नहीं करनी और। तो उसके बाद फिर विभाजन हो गया,
1: हाँ,
0: तो फिर वो पूरा स्टोरी चेंज हो गई ना, सारे लाइफ पाथ ही बदल गया पूरा।
1: तो एक दिन रातों रात ये तय किया गया कि पूरा परिवार दिल्ली जाएगा।
0: हाँ, तो उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा हमारे मोहल्ले में दंगा होने वाला है, और क्योंकि वो दरोगा जी थे वो,
1: हाँ,
0: तो उनके हर घर को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि ही रिप्रेजेंट्स नॉट ओनली कल्चरली सर्टेन पोजिशन बट ऑल्सो मैन ऑफ पावर, कि भाई इसका घर तोड़ेंगे आज उस हिसाब से। तो इनको रातों रात निकलना पड़ा वहां से, तो जो भी हाथ लगा, बर्तन बर्तन
1: जेवर,
0: गहने वहने, हाँ खाना, जो भी छोटा मोटा खाना पीना पानी, वो लकी थे क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और पंजाब जेल, तो उनको दिल्ली आने के लिए एक डकोटा प्लेन में आए। देवर टू थ्री फैमिलीज, देवर वेरी प्रिविलेज पीपल, और वो डायरेक्ट फ्लाइट से दिल्ली आए फ्रॉम रावलपिंडी। पता नहीं कभी बीच में रुके होंगे फॉर रिफ्यूलिंग, आई डो नॉट नो, बट आई नो दैट दे केम टू दिल्ली टू रेफ्यूजी कैंप। और बहुत लकी थे क्योंकि लाखों कहानियां हैं जो लोगों का लूटा
1: ट्रेन में
0: गया,
1: आए,
0: रेप हो
1: दंगों का
0: गया,
1: शिकार
0: मर्डर हो
1: हुए।
0: गया, तो उनकी पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी, तो सारे के सारे सेफ। तो जो भी वो उनका हाथ लगा, और घर की चाबी बाजू वाले को देके आए थे कि बाबा हम आ रहे हैं वापस, 2-3 महीने में वापस आ जाएंगे, क्योंकि
1: इतना
0: किसी
1: यकीन
0: को,
1: था।
0: किसी को ये नहीं था कि वापस कभी नहीं आ सकेंगे। तो इस विश्वास से कि हम एक दिन वापस आ जाएंगे, सब चीजें ठंडी हो जाएंगी, वापस आ जाएंगे, तो पड़ोसी को घर की चाबी दे के आ गए। तो यहाँ कुछ 4-5 दिन निकले और सब सेटल हो गए, खाना पीना, और रेफ्यूजी कैंप में जगह मिल गई रहने के लिए, क्योंकि दरोगा जी थे वो, रिटायर्ड नहीं हुए थे, ही वॉज इन पावर स्टिल बट ही वॉज दिल्ली, तो रेफ्यूजी कैंप में उनको जगह वगैरह मिल गई, सब ठीक हो गया। तो सबको पूछा कि भाई क्या क्या लाए हो, कि उस जमाने में चांदी के बर्तन वॉज वेरी कॉमन, तो बर्तन चांदी के, ज्वेलरी जो लेडीज होती है तो ज्वेलरी लगती है, हमारे कल्चर में तो यही ज्वेलरी, गोल्ड लेना, क्योंकि 5 बहन है, और ही वॉज ओनली सन फ्रॉम द फर्स्ट मदर एंड 2 ब्रदर्स फ्रॉम द सेकेंड मदर।
1: सौतेली माँ भी उनकी एक थी।
0: हाँ, सौतेली माँ, तो ये सब पूरी दादा दादी साथ में, पूरे सब ज्वाइंट फैमिली। तो सबने बताया कि किसी के पास ज्वेलरी, किसी के पास ये वो कपड़े वपड़े। तो जब बख्शी साहब का पूछा कि तू क्या लाया घर से, क्योंकि उनको रातों रात भाग के निकला ना वहां से, कि सुबह होने से पहले हमें यहां से निकल जाना है, तो जब उन्होंने बताया सामान जो लाए हैं, तो उनको खूब डांट पड़ी दादाजी से, बाबूजी से और दादाजी दोनों से, कि बेवकूफ क्या उठा के लाया, ये क्या काम आएगा किसी के, ये सब क्या लाए थे वो 17 साल की उम्र में, रातों रात वहां से जब निकले, अपनी गुजरी हुई माँ की फोटोज, क्योंकि वो 5 साल की उम्र में गुजर गई माँ, तो उनकी मेमोरीज बहुत कम है माँ के साथ,
1: तो वो तस्वीर उनके लिए
0: वो
1: बहुत मायने
0: तस्वीर ही
1: रखती
0: उनकी
1: थी।
0: मेमोरी थी, कि ये
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि मेरी तो माँ बहुत जल्दी गुजर गई, तो मेरे पास तो ज्यादा यादें नहीं है माँ के साथ, तो ये तस्वीरें ही हैं जिनको मैं देख देख के वक्त गुजारता हूँ, इन्हों जब मुझे एहसास होता है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि क्या है, उनके पिताजी ने भी शादी कर ली सेकेंड, तो नेचुरली एक कोई भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाता ना, तो बच्चे को थोड़ा प्यार नहीं मिलता, ये नहीं कि कम मिलता है, वो हर एक बच्चा अलग होता है, कोई बच्चे को लगता है कि मुझे ज्यादा सेंसिटिव होता है कि मुझे कम प्यार मिल रहा है, तो फिर वो माँ की तस्वीर देख के रोते थे वो। तो उनको ये था कि उन्होंने बाबूजी को बोला था कि पैसे तो हम काम करके कमा लेंगे, कोई भी काम करके आप आदमी इंसान पैसे कमा लेता है, लेकिन माँ की तस्वीर अगर रह जाती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा।
1: गजब, क्या गजब की बात
0: तो
1: बोली।
0: मैं लोगों को हमेशा ये जो किस्सा सुनाता हूं, उसका मकसद ये है सुनाने का, जो इंसान 17 साल की उम्र में रातों रात कपड़े नहीं उठाए, पानी नहीं उठाया, खाना नहीं उठाया, ज्वेलरी नहीं उठाई, जो चांदी का ग्लास था वो नहीं उठाया, माँ की तस्वीर उठा के लाया, वो ही इंसान आगे जाके गाना लिख सकता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी
1: वाह,
0: प्यारी है ओ माँ।

0: और कोई नहीं
1: क्या
0: लिख
1: बात
0: सकता
1: है।
0: ऐसा गाना। मुझे याद है जब हम मम्मी के साथ लड़ते थे, क्योंकि हम हर बच्चा मम्मी के साथ लड़ता है, क्योंकि मम्मी एक है जो हमारे नॉनसेंस ले लेती है ना, बाकी तो बाप तो सीधा उठा के दो चांटे लगा देगा। तो मम्मी के साथ वो लड़ते थे, डैडी के लड़ नहीं सकते क्योंकि एक जनरेशन गैप है। ऊपर से एक पिताजी का एक होता है ना रोब होता है, बाबूजी दादाजी पिताजी इनका एक रोब होता है बहुत हमारे घर में।
1: बिल्कुल
0: मम्मी फ्रेंड होती है ना,
1: यस, बिल्कुल
0: हाँ
1: बिल्कुल
0: हम दोस्ती ज्यादा मम्मी से करते हैं, तो मम्मी से बहुत लड़ते थे। तो हमेशा डैडी हमें बोलते थे कि तुम जो बदतमीजी से बात करते हो अपने मम्मी के साथ, तुम बुरे बच्चे नहीं हो, तुम्हारी माँ जिंदा है इसलिए तुम्हें पता नहीं माँ की क्या कीमत होती है।
1: क्या
0: हमसे
1: बात है।
0: पूछो जिनकी माँ नहीं है, माँ से कैसे बात की जाती है, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम्हें माँ की कीमत नहीं पता।
1: माँ का मोल समझो।
0: हाँ
1: दूसरी चीज वो जो लेके आए थे अपने घर से, वो थी पिंडी की मिट्टी।
0: वो मिसप्लेस हो गई, पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो वेयर इट वेंट। मैंने बहुत उसको खोजा, और उनके जाने के बाद जब मैंने उनका वॉलेट खोला, मुझे उनकी कृष्ण जी की फोटो मिली, एक गीता का

0: एक वर्ष मिला मुझे उसमें, एक बॉटल नहीं मुझे वापस मिली,
1: कि उन्होंने अपने गांव की मिट्टी एक बोतल में भरी कि अब ये छूट रही है मेरी मातृभूमि। ये कितनी बड़ी बात है
0: हाँ, इसलिए उन्होंने कितने खूबसूरत गाने लिखे हैं मिट्टी पे,
1: जी।
0: कितने खूबसूरत, मतलब एक से नंबर एक गाना है उनका मिट्टी पे, और मिट्टी खो देने का, माँ खो देने का, और मिट्टी खो देने का, इंसान खो देने का। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, जाने कहाँ चले जाते हैं वो लोग,
1: दुनिया से जाने
0: दुनिया से
1: वाले,
0: जाने वाले। आप देखो ऐसे ऐसे गाने उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जिया है उसे।
1: वो उनकी जिंदगी

0: रावलपिंडी से जुड़ी यादें वो शेयर करते थे, और वो कौन कौन सी यादें, अभी तक हमने बहुत सारी यादें वहां की बांटी हैं, तो कुछ और बात है जो रह गई जो उन्होंने आपको सुनाई हो रावलपिंडी से जुड़ी हुई कहानी?
1: जब रावलपिंडी में थे तब उनको पता चला था कि लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: हाँ, क्यों स्टूडियोज होते थे बड़े बड़े,
1: तो वो लाहौर गए थे काम ढूंढने के लिए। नहीं, उनकी एक कविता एक उर्दू मैगजीन में छपी थी, क्योंकि पढ़ाई उर्दू में होती थी वहां पर रावलपिंडी में, तो उनका जो लिखाई है वो भले ही हिंदी है, हिंदी गाने हैं, लेकिन वो उर्दू में लिखते थे हिंदी गानों को हमेशा, क्योंकि उन्होंने हिंदी सीखी नहीं थी। जो उनकी हिंदी थी वो बोलचाल में थी
0: जी जी,
1: हाँ, लेकिन लिखने में वो हिंदी गाने उर्दू में लिखते थे।
0: ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि बख्शी साहब अपने गाने उर्दू में लिखा करते थे।
1: हाँ, मैट्रिक पास ना, 8th स्टैंडर्ड तक, तो वो पब्लिश हुई थी उनकी एक नज़म लाहौर में, तो वहां इंडस्ट्री भी थी, तो वहां भी वो गए थे कि चलो इसी बारे में थोड़ा काम भी ढूंढूंगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो वो फिर वापस आ गए थे
0: जी। पार्टीशन के बाद जब पूरा परिवार दिल्ली आया, दिल्ली में किस तरह के हालात हुए और वहां से कहां गया पूरा परिवार?
1: बिकॉज देवर रेफ्यूजी कैंप में थे ना वो, तो दिल्ली से फिर उनको पुनः शिफ्ट किया गया रेफ्यूजी कैंप,
0: सरकार ने भेजा,
1: सरकार ने, फिर वहां से वापस वो दिल्ली आए, क्योंकि पंजाबी थे वो, तो उनको महाराष्ट्र सूट नहीं किया, दे वांटेड समबडी, क्योंकि हमारे सारे रिलेटिव वही है पंजाब में ही है, पंजाब हरियाणा, तो उन्होंने बोला कोई ये हमारा इधर तो कोई है ही नहीं, हमारा कोई पहचान वाला ही नहीं है महाराष्ट्र में, तो पुणे से फिर वापस उनको शिफ्ट किया गया, फिर उनको घर दिया गया दिल्ली में, सराय रोहिल्ला जगह है, सराय रोहिल्ला। तो फिर पार्टीशन हुआ अगस्त में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव आर्मी में हैं, तो उन्होंने ही ज्वाइन इन द सिग्नल्स एज एन इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीफोन ऑपरेटर।
0: ओके,
1: तो उनका जो कोड नेम था एज अ सोल्जर, क्योंकि सोल्जर को सिग्नल में वॉच कोड सिखाया जाता है
0: जी जी,
1: और टाइपराइटिंग सिखाई जाती है, जो तब की कम्युनिकेशन थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो हर ऑफिसर को कोड नेम दिया जाता था, क्योंकि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर नेम, सो दैट अगर हमारी रिकॉर्डिंग टैप हो रही है एनिमी से, इफ एनिमी रिकॉर्डिंग आवर,
0: तो वो नहीं जान पाए,
1: उनको पता नहीं चलेगा ये कौन बात कर रहा है,
0: बंदा कौन है, उसकी लोकेशन क्या है,
1: लोकेशन क्या है। तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह,
1: वाकई में आजाद थे वो,
0: क्या बात,
1: आजाद दिल के।
0: अच्छा, उनकी आर्मी सिग्नल कोर में पोस्टिंग से पहले
1: जबलपुर में पोस्टिंग हुई थी।
0: हाँ,
1: ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम जबलपुर,
0: ट्रेनिंग वहां हुई,
1: 3 साल की जो ट्रेनिंग थी वो जबलपुर में हुई, तो उनका जो सर्टिफिकेट है जो मैंने पब्लिश भी किया है किताब में,
0: जी जी,
1: वो जबलपुर का है, वो सिग्नल सेंटर जबलपुर जो आपका गांव है,
0: बिल्कुल वहां पर स्पेलिंग लिखी जबलपुर। आज भी आर्मी सिग्नल कोर का जो ठिकाना है वो अभी भी जबलपुर में है, एक बड़ा सा गेट है, और क्योंकि मेरा शहर है तो जब कभी हम वहां से निकलते हैं, जो भी साथ होता है उसको मैं हमेशा ये कहता हूं कि यहां बख्शी साहब रहे हैं।

0: इलेक्ट्रिशियन के काम में उनको दिलचस्पी होने लगी थी। मैंने उनकी कॉपी दिखी है जो आपने दिखाई थी ट्रेनिंग वाली, उसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बने हैं, बहुत सारे नोट्स लिखे हैं साइंस के, तो वो देख के ऐसा
1: लेकिन
0: लगता
1: कमाल की बात है, ही वाज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन, लेकिन डरपोक नंबर वन, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का कुछ हो जाए घर में ना गड़बड़, डरपोक नंबर वन,
0: तो वो टच नहीं करते थे,
1: स्क्रू ड्राइवर डालने में भी घबराते थे कि शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, हाथ में लगा शॉक लग जाएगा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, ही वाज लाइक दैट।
0: नहीं लेकिन वो जो नोटबुक आपने मुझे दिखाई थी उसमें तो क्या सर्किट
1: सब कुछ, लेकिन
0: बहुत सुंदर राइटिंग में सब कुछ है।
1: फोबिया होता है शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उनको वो शॉक लगने का बहुत डर रहता था, एक चिपकली का डर, एक शॉक लगने का डर, और एक लिफ्ट में चढ़ने का डर, तीन उनके डर थे, और अकेले रहने का डर। तो उनका अकेले रहने का जो डर था ना, उसको एनालाइज किया गया। वो करीब लेट 1990s में, मेरे ख्याल में गुजर जाने से कुछ दो तीन साल पहले, ही मेट अ साइकोलॉजिस्ट कि अभी तो मैं इतना सक्सेसफुल हो गया हूं, मेरा नाम है सब जगह, इज्जत है, जो मैंने सोचा भी नहीं था जिंदगी में होगा वो भी हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे डर है प्लेन में नहीं चढ़ने का, लिफ्ट में नहीं जाने का, घर में अकेले नहीं रहने का।
0: मतलब कोई ना कोई उनके साथ होना जरूरी था।
1: घर में भी हमारा काफी बार डैडी के साथ झगड़ा क्यों होता था, क्योंकि वो बोलते थे अभी मम्मी बाहर गई है तुम घर बैठो, बाहर नहीं जाना, मम्मी आएगी तब जाना। बोलते अभी अब जाना है खेलने के लिए जाना है क्रिकेट खेलने जाना है या गोटी खेलने जाना है या गिती गिती खेलने जाना है, दोस्त बुला रहे, नहीं नहीं मम्मी आएगी या भाई आएगा गोगी आएगा तब जाना। तो हम लड़ते थे डैडी के साथ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद जब मैंने उनकी डायरी खोली तब मुझे पता चला कि ये जो डर था उनका घर में अकेले नहीं रहना, कोई ना कोई होना चाहिए घर में, या तो जो हमारे घर में लोग काम करते हैं वो होने चाहिए, या मैं या माय ब्रदर और माय सिस्टर और माय मदर, कोई होना चाहिए अकेले नहीं। उसको एनालाइज किया गया हूं साइकोलॉजिस्ट का, उन्होंने रिमार्क लिखा है दैट बिकॉज यू आर अबैंडन्ड एज अ चाइल्ड, बिकॉज यू लॉस्ट योर मदर एट द एज ऑफ 5 और आप पिताजी ने दूसरी शादी की, और क्या होता है भले वो माँ अच्छी हो दूसरी आई है, लेकिन वो माँ नहीं है,
0: तो एक अकेलापन आ जाता
1: है। अकेलापन से ज्यादा होता है अबैंडनमेंट।
0: जी जी,
1: अबैंडनमेंट हर्ट्स यू।
0: यस,
1: अकेलापन में नॉट हर्ट यू, लेकिन इफ यू फील अबैंडनड यू आर हर्टिंग योरसेल्फ
0: कि मेरा तो कोई नहीं है,
1: मेरा तो कोई नहीं है, नहीं मुझे छोड़ा गया है,
0: हाँ,
1: मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। तो क्योंकि 5 साल की उम्र है ना, तो उसको लगता है कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है, तो बचपन से माँ चली गई मतलब माँ ने छोड़ दिया मुझे, तो वो एक जख्म था, वो भरा नहीं कभी, इसलिए वहां पे क्या गाने लिखे बख्शी साहब ने, कमाल सर, आई डोंट थिंक एनी बडी हैज रिटन एज गुड एज आनंद बख्शी रिटन ऑन मदर।

0: 60s, 70s, 80s में माँ की बहुत अहमियत थी सोसाइटी में, तो फिल्म में कहीं ना कहीं माँ का कैरेक्टर आ ही जाता था, स्ट्रांग कैरेक्टर,
1: और वहां फिर गाने लिखने की।
0: हाँ, जो आजकल नहीं है फिल्मों में। आजकल फिल्मों में आपको देखो दोस्ती खत्म हो गई है, दोस्ती में कोई गाना नहीं है, कोई रिलेशनशिप ही नहीं दिखा रहे दोस्ती का, तो ये सब है। तो उनका जो ये था ना कि मैं अकेला नहीं रहूंगा, उसकी दो वजह थी। एक तो ही फेल्ट लेटर तो व्हेन ही ग्रो ओल्डर देन ही रियलाइज दैट शी डाइड, बिकॉज शी डाइड इन चाइल्ड बर्थ। जब सेकंड चाइल्ड पैदा हुआ ना बख्शी साहब के बाद, तो वो चाइल्ड बर्थ में गुजर, उस जमाने में ना चाइल्ड बर्थ में बहुत डेथ हो जाती थी
1: जी जी लेडीज की, बिल्कुल।
0: लेकिन वो जख्म जख्म होता है, कोई जख्म बढ़ते नहीं, हर जख्म नहीं बढ़ता
1: वाला। और प्लेन में सफर न करने वाला डर क्यों?
0: दैट इज जस्ट अ फोबिया। एंड साइकोलॉजिस्ट ने बोला, अगर आपको, उन्होंने बोला कि भाई जब मैं आर्मी में था तो मैं तो पैराशूट से जंप मारता था 70 रुपए के लिए ज्यादा, हमको 70 रुपए ज्यादा मिलते थे अगर हम पैराट्रूपिंग करें। वो आदमी प्लेन में नहीं चढ़ रहा है, आप सोचो। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि भाई इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कमाल का क्योर दिया हमको। उन्होंने बोला कि आप जब बंबई आए थे ये डर था? ही सेड नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डर बाद में आया, कब आया? जब शोहरत आई। शोहरत के साथ डर आया। उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लेन में वापस चढ़ना है, अगर आपको लिफ्ट में वापस जाना है, आपको वही करना पड़ेगा जो आपकी जिंदगी थी 1950

0: सिक्स में स्ट्रगल, ट्रेन में जाना, बस में जाना, कार स्टेशन से वो टिकट निकालते थे फर्स्ट क्लास का, और वो वही ट्रेन पकड़ के चर्चगेट जाते थे, फिर चर्चगेट में जाके समुद्र के किनारे मंडरे पे बैठते थे, जहाँ वो बैठ के गाने लिखते थे, वहाँ 1-2 घंटा गाना लिखा, 2-3 जो भी मूड हुआ तो लिखा, नहीं हुआ तो ऐसे बैठ के, वो जो जिंदगी जी थी उन्होंने
1: उसको रिपीट
0: 1956 में, उसको रिपीट किया गया ताकि ये डर जाए, क्योंकि वो आदमी खो गया है, उस आदमी को वापस कैसे लाना है, वो आदमी बनो
1: किया। अरे गजब।
0: तो वो आदमी वापस आएगा, तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस ने वो आदमी पैदा किया था ना, जो ट्रेन में जाता था काम ढूंढने, बस में चढ़ता था काम ढूंढने, लिफ्ट पे चला जाता था काम ढूंढने, वो इंसान खो गया, क्योंकि अब इसके पास गाड़ी आ गई है, वेल्थ आ गया है, घर आ गया है, नाम और शोहरत आ गया है, तो वो इंसान खो गया है। तो उस डॉक्टर ने कहा था उनको, साइकोलॉजिस्ट ने, तुम वो इंसान बनो, क्योंकि वो इंसान पीछे रह गया है। फिर हफ्ते में 3 दिन चर्चगेट जाते थे ट्रेन में, और ऐसे बहुत लोगों ने मिले हैं लोग, आई सॉ योर फादर टुडे यार एट पेंड्रा स्टेशन यार, माई फ्रेंड्स यू आर गोइंग ऑन ट्रेन यार,
1: ट्रेन से जा रहे थे। क्या बात है।
0: हाँ, एक जर्नलिस्ट मुझे, मैं 2-3 जर्नलिस्ट से मिला रहे, हम बख्शीश आपको देखते थे यार
1: ट्रेन में जाते
0: हाँ
1: हुए।
0: क्यों जाते थे, तो बोले कभी बैठेंगे तो सुनाऊंगा कहानी।
1: अरे बाप रे, ये भी बहुत ही कमाल की कहानी।
0: तो
1: चलते
0: हमें, अगर हमें ताकत चाहिए ना, जो हमारी ताकत जवानी में थे, तो आपको वो इंसान बनना पड़ेगा,
1: ये बहुत
0: तो वो
1: बारीक बात
0: स्पिरिचुअल
1: है
0: ताकत वापस
1: जी,
0: आएगी।
1: बहुत बारीक बात। वापस जबलपुर चलते हैं, जहां आर्मी सिग्नल कोर में बख्शी साहब की ट्रेनिंग चल रही है, और वहां बख्शी साहब अपनी कलाकारी भी दिखाते हैं, और आर्मी वालों को ये यकीन हो जाता है कि यार ये बंदा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए नहीं बना है।
0: तो क्या हुआ कि उनका सपना जो था वो मोहल्ले वालों ने एनकरेज किया, अरे तू बंबई जा यार, तू बंबई जा यार, यार तू किधर क्या कर रहा है यार, तू गांव में क्या कर रहा है, बंबई जा। तो वो तो एक बचपन का सपना होता ना, लेकिन जब वो आर्मी में अडल्ट हो गए थे, विभाजन हो गया था देश का, मतलब इट वॉज अ वेरी सीरियस एटमोसफियर ना, यू हैव लॉस्ट योर हाउस, यू हैव लॉस्ट योर प्रॉपर्टी, यू हैव लॉस्ट योर वेल्थ, यू हैव लॉस्ट एवरीथिंग, जस्ट नौकरी, सरकारी नौकरी है बस, और देश के लिए आप काम कर रहे हो, बिकॉज दैट व्हेन यू जॉइन द आर्मी इट वॉज पेट्रियोटिज्म, व्हेन यू जॉइन द नेवी इट वॉज मैं बंबई जाऊंगा, वहां से जंप मार के फिल्म लाइन ज्वाइन कर लूंगा। जो उनका जो बचपन का सपना था उसने रूप लेना शुरू किया, कैसे, उनके जो कलीग्स थे आर्मी में, जो सोल्जर्स होते हैं साथ में आपके काम करते हैं, और जो आपके सीनियर्स थे, उन्होंने इनको एनकरेज किया। और एक तो कैप्टन, उन्होंने तो ऑफिशियल आर्मी के लेटरेट पे चिट्ठी भी लिखी थी, दिस इज टू सर्टिफाई दैट आनंद प्रकाश बख्शी वैद इज एन एक्सीलेंट राइटर एंड एक्सीलेंट सिंगर एंड ही परफॉर्म्स वेरी गुड स्टेज शोज एंड आई सोनचो कमांडर ऑफिसर कैप्टन रिकमेंड हिम टू एनीबडी इन द फिल्म इंडस्ट्री टू प्लीज गिव हिम अ वर्क एज अ सॉन्ग राइटर।
1: गजब गजब, यानी एक फौजी अफसर ये लिख रहा है कि ये बंदा बहुत अच्छा कलाकार है, इसको सिनेमा में काम दो,
0: में काम दो।
1: वाह वाह,
0: वो है मेरे पास चिट्ठी है, हमारे पास रेडीनेस को संभाल कर रखा है, क्योंकि वो चिट्ठी जाके दिखाते थे बॉम्बे में आके, देखो मेरे ऑफिसर ने मुझे भेजा है, अब यहाँ क्या उसकी कीमत,
1: इंडस्ट्री वालों को थोड़ी पता है
0: क्या कीमत है कैप्टन की
1: जी। आर्मी में वो परफॉर्म क्या करते थे, बड़े खाने के दिन
0: प्लेस, फिक्शन नॉन फिक्शन, उसमें एक्टिंग भी कर लिखते भी थे, कंपोज भी करते थे, गाते थे भी और एक्टिंग भी कर लेते थे, यू वाज द मेन स्टार ऑफ बड़ा खाना शोज।
1: और ये
0: एनुअल इवेंट,
1: इंपॉर्टेंट बात है कि उस जमाने में उन्होंने उस दौर के मशहूर गानों को सुन के उनकी धुन पर गाने लिखना शुरू कर दिया।
0: हाँ, जब आर्मी में थे तो बरसात की एक रात लगी थी
1: जी,
0: उन्होंने उस फिल्म को 29 टाइम्स देखा था, 29 टाइम्स। क्यों देखा था, ताकि वो कहानी को घोल के पी जाएं, और फिर उस फिल्म के गाने लिखे थे पूरे।
1: ये उनका रियाज था।
0: वीकेंड पे जो छुट्टी मिलती थी ना, तो जाके फिल्म देखते थे सिटी में, वापस आके बैरिक्स में उसी फिल्म के पूरे गाने वापस लिखते थे और सुनाते थे सब। इसीलिए सबने रेकमेंड किया, यार तूने तो यार क्या लिखा यार, ये तो वैसा ही है जैसा हमने फिल्म में देखा था यार, उससे भी अच्छा लिखा तूने यार। तो वो एनकरेजमेंट, पहले बार उनका जो सपना था ना वो कॉन्क्रीटाइज हुआ कि मैं यहां के लिए नहीं बनाऊं, मैं वहां के लिए बनाऊं।
1: तो उन्होंने आर्मी छोड़ी, कैसे बंबई आए, साल कौन सा था?
0: 1950 में छोड़ी, जो भी उनकी सैलरी थी उसको जमा किया, सेविंग्स बंबई 1950, और 3 महीने में सारे पैसे खत्म हो गए,
1: बंबई तो शहर ही निराला है,
0: और वापस आर्मी ने को लिया, 6 साल काम किया आर्मी में, सिग्नल्स ने ही उनको वापस से एक्सेप्ट किया।
1: 1950 में बंबई आए,
0: तीन महीने में
1: वापस चले गए, और वापस आर्मी में
0: हार के, और वो जो टोली ना, उनके सीनियर ने उनको छुट्टियां दी थी, तो दे वो वेलकम डेम, उनको बल्कि सिंपथी हुई कि यार बेचारा अपना सोना मुंडा वापस आ गया है, लिहाज को रख लो यार, क्योंकि आपने जो 3 साल काम किया है ना, वहां भी तो नाम कमाया, तो उनको नौकरी मिल गई इमीजिएटली। फिर उनकी शादी हो गई,
1: और शादी भी लखनऊ में हुई।
0: हाँ, शादी लखनऊ में हुई।
1: ये लड़की कैसे मिली?
0: शादी में एक लड़का मिला उनको, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, वो रावलपिंडी का था, उनकी गली का, तो बोला यार तू इधर क्या कर रहा है, तो बोला मेरी तो शादी है। तेरी शादी है? हाँ। तो तू इधर क्या कर, मेरी बहन की शादी है, तो मेरे मम्मी का भाई था वो।
1: अच्छा,
0: क्योंकि वो दोनों में

0: इतनी मैरिज होती थी ना।
1: ये रिश्ता किसने जोड़ा था?
0: उनकी एक बुआ थी, शी वॉज वो पत्री बनाती थी, जन्म पत्री।
1: अच्छा अच्छा,
0: एस्ट्रोलॉजी, शी वॉज एन एस्ट्रोलॉजर। तो उन्होंने एक पोस्ट कार्ड में, पोस्ट कार्ड हमारे मेरे पास है, मैंने उसको अभी फाइनली डिस्प्ले किया हॉल में
1: जी,
0: उसको फ्रेम करके रखा हुआ है। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी बख्शी साहब के, उनके पिताजी को, बाऊजी को, कि मैंने नंद के, नंद उनका घर का नाम था, नंद,
1: हाँ, आनंद से नंद,
0: नंद, नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
1: बिल्कुल
0: कृष्ण भक्त है वो
1: जी।
0: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है, लड़की, और वो थोड़ी सावली है, वीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प, और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस।

0: आनंद से नंद,
1: नंद नंद इज ऑल्सो नेम फॉर कृष्णा,
0: बिल्कुल
1: कृष्ण भक्त है वो
0: जी।
1: तो नंद के लिए मैंने कुड़ी देखी है लड़की, और वो थोड़ी सावली है, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, और थोड़ी भारी है, स्लाइटली प्लम्प। और सबसे कमाल की बात है, शी इज अ सीमस्ट्रेस ग्रेजुएशन इन
0: सिलाई कढ़ाई, बहुत अच्छा करती है।
1: हाँ, और सबसे अच्छी, सबसे खास बात है कि वो साइकिल चलाती है।
0: अच्छा, साइकिल चलाना बहुत बड़ी खासियत है,
1: बहुत बड़ी बात थी लेडीज के लिए, गर्ल के लिए। लड़की साइकिल चलाए वो, अरे ये तो डेक्कन क्वीन है भाई ये तो।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। तो बख्शी साहब देखने गए?
1: नहीं नहीं कुछ देखना होगा ना, क्या कौन से जमाने की बात कर रहे हैं सर आप? देख रहे
0: सीधे शादी तय,
1: शादी तय। और उनका भाई था, उनको पता नहीं था कि भाई है इसका ये।
0: हाँ, ये देखिए ये कमाल की बात है। और यही बख्शी साहब ने आगे चल के गाना लिखा, लड़की साइकिल वाली,
1: बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वो।
0: हाँ।

जाने माने गीतकार आनंद बख्शी के जन्मदिन पर ये थी उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत।

बख्शी साहब की यादों का सिलसिला इतना विस्तृत है कि सारी बातें एक एपिसोड में शामिल करना मुमकिन नहीं है। अगले हफ्ते राकेश आनंद बख्शी से बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। तो मिलेंगे आज ही के दिन अगले हफ्ते शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो आप अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं देश की सुरीली धड़कन।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गॉर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर।

प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हर रोज़ की तरह आज भी आप सुनेंगे 5:10 पर भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन और 5:30 पर हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुनेंगे युवावाणी। हमारे केंद्र से सांध्यकालीन प्रसारण में आप लोकगीत सुनते हैं, क्रमशः संध्या 6 और रात्रि 9 लोकधारा में। साथ ही आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार भोजपुरी समाचार बुलेटिन 6:05 पर और 7:30 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।

आज के किसान वाणी कार्यक्रम में श्री विधि तकनीक से धान की खेती की जानकारी देंगे अमित कुमार सिंह और अलावा इसके चर्चा की जाएगी केले की उन्नत खेती और धान की रोपनी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक करें पूरी।

फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत के अंतर्गत आप 6:40 पर सुनिएगा भोजपुरी फिल्म संगीत।

और साथ ही कार्यक्रम ई मन पसंद आज आप सुनेंगे 8:15 से। चित्रपट तराने कार्यक्रम में सदाबहार गीतों से दिल बहलाइएगा 10:30 पर। आकाशवाणी के पटना केंद्र से विधानमंडल समीक्षा आप सुनेंगे 7:50 पर और दिल्ली से प्रसारित संसद समीक्षा सुनिएगा रात्रि 8:00।

9:15 पर गज़लों की महफिल सजेगी, लुत्फ उठाइएगा। और 9:30 पर विविध भारती के प्रसारणों में आज आप सुनेंगे आज के फनकार। रात्रि 10 बजे दिल्ली से प्रसारित संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम अपने केंद्र से रिले करेंगे, सुनना नहीं भूलिएगा। हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग आप सुनेंगे 10:15 से। सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित समाचारों के बाद। तो श्रोताओं, यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। 5:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत।

राम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं तो एक नया अर्थ सामने आता है। अब तात्पर्य है श्याम रंग से, अब रंग भी श्याम और पिया भी श्याम, तो शब्दों

ध्यान दीजिएगा, मैं जो सरगम गाऊंगा पीयूष पवार जी संतूर पर आपको वही बजा के सुनाएंगे। और जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अभी आपने राकेश तिवारी के स्वर में यह भक्ति रचना सुनी और कार्यक्रम का समापन गोल्डी शर्मा की आवाज़ में इस भक्ति गीत से।

गोल्डी शर्मा की आवाज़ में अभी आपने यह भक्ति रचना सुनी और इन्हीं भक्ति गीतों के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों को संबोधित हमारा प्रसारण युवावाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ, मौसम की भी बेरुखी हो रही है और आप चाहे जहाँ कहीं भी होंगे, चाहे जिस काम में होंगे, खेल के मैदान में हो या खेतों में हो, बाजार में हो या किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हों या पढ़ा रहे हों, हर किसी की निगाह आजकल आसमान पर होती है, क्योंकि बादल जब बरसता है तभी अन्न बरसता है। अन्न धन की बारिश तभी होगी जब बादल पर्याप्त मात्रा में आसमान से बरसेंगे। और हम तो वैसे हैं ही किसानी क्षेत्र के इलाके के भाई, मुख्य काम तो कृषि ही है ना, खेती गृहस्थी है। तो चलिए, ये एक चिंता की बात है, लेकिन तब है कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है। जी हाँ, पानी बरसेगा, खेतों में शानदार फसल आएगी, ऐसी उम्मीद है। ऐसी बात कुछ विज्ञान, ये मौसम विज्ञान वाले लोगों ने भी कहा है कि नहीं, पानी बरसेगा, अच्छा खासा बरसेगा, लेकिन हाँ, थोड़ा तो भाई इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आप देखिए ना, हमारे जो कार्यकलाप हैं, हमारे जो काम धाम हैं, वो चाहे जो कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई हो या धंधा पानी हो, भाई खाली समय तो आता ही आता है। जब हम बैठे रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, लेकिन खाली समय का सदुपयोग यदि कर पाया जाए, किया जाए, तो उसका आनंद कुछ और ही है। समय का समय जो है एक तरह की ऊर्जा है, हम ये समझ लें, क्योंकि बैठ करके समय बर्बाद कर देना, कहा जाता है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि जो समय को बर्बाद करता है, वही बर्बाद किया हुआ समय उसको बर्बाद कर देता है। यानी समय में बड़ी ताकत है भाइयों, कहावतें भी हैं कि समय बलवान होता है। तो इसीलिए समय जो है, अगर

खाली बचा हुआ है, जिसको आप ऐसा लग रहा है कि भाई खाली समय है, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बैठ करके दिन बिता दिए और समय कट गया, दिन ढल चुका, चलिए अच्छा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक पल का हिसाब जो है वो हमारी ज़िंदगी मांगती है। सच बात तो यही है कि ईश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिनसे हम अपनी अपने काम धंधे को संवार सकते हैं, अपनी दिनचर्या को शानदार बना सकते हैं मेहनत करके। तो इसीलिए है कि हम चाहे जहाँ कहीं भी हों, अपने समय पर भाई ध्यान रखना बड़ी ज़रूरी है। कुछ लोग होते वैसे हैं कि बाहर दुनिया भर की बात इधर की उधर हो जाती है और काफ़ी वक्त निकल जाता है, तो ऐसा नहीं करते हुए हमें चाहिए कि अपने समय का सदुपयोग करें। अब रहा कि समय का सदुपयोग कैसे हो, कैसे किया जाए, तो कुछ नहीं करना है समय का सदुपयोग, तो भाई सकारात्मक सोच रखी जाए, अच्छी संगत रखी जाए, अच्छी बातें हों, अच्छी योजनाएं बने, उन पर अमल भी किया जाए। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई रीडिंग ऑफ बुक्स, किताबें पढ़ना, बहुत सही बात है, किताबें पढ़ेंगे हम लोग, सदग्रंथ, अच्छी किताबें, शानदार साहित्य जिसमें है, अगर वो हम पढ़ते हैं तो ज्ञानवर्धन भी होता है, शब्दों से भी हमारा परिचय होता है, नए नए शब्द जब मिलते हैं तो हम डिक्शनरी निकालते हैं, देखा जाए भाई इसका क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है, कैसे प्रयोग किया गया है, कौन सी खास बात है इस शब्दावली में। तो तमाम चीज़ें हैं जो कि किताबों के पढ़ने से हमें मिल जाती हैं। एक चिंतक ने कहा कि दवाइयों से शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन किताबों के पढ़ने से हमारी आत्मा स्वस्थ हो जाती है। कहने का मतलब है कि हम प्रफुल्लित और आनंदित महसूस करते हैं। ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति, ज्ञानवान जो व्यक्ति होता है, उसके पास करने को, कहने को, समझने को, समझाने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बात और कही गई है ना कि जो सक्सेसफुल आदमी है, जो सफल व्यक्ति है, वो कोई ऐसा नहीं है कि अलग काम करता है, नहीं, वो अलग ढंग से काम करता है तब वो सफल है। चलिए हम भी अलग ढंग से काम करेंगे, हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हैं, अपनी अपने काम में आनंद लेंगे। एक विद्वान का कहना है कि आप चाहे जिस जगह पर जाते हों, वहाँ वैसे जाइए जैसे कोई मंदिर जाता हो, क्योंकि वही जगह, वही काम आपको वो सब कुछ दे देता है जो आप भगवान से मांगते हैं। मित्रों, ये समय के सदुपयोग से ही जुड़ी हुई बातें हैं। हम चाहे जहाँ भी काम कर रहे हों, कम ही आमदनी हो तो क्या हुआ, है तो आश्रय हमारा, तो अपने समय का हम एक एक पल का हिसाब करें, हिसाब रखें, और हम आगे बढ़ते जाएंगे, कभी पीछे मुड़कर देखना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, कह कहे लगा करके टाइम, वक्त जब हम बिता देंगे तो भाई पश्चाताप करना ही पड़ेगा। दिन ढलने पे लगता ही है कि हाँ, दिन निकल गया लेकिन आज कुछ काम नहीं किया हमने। तो अपने पल का इस्तेमाल किया जाए। आज के समय में चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं हर क्षेत्रों में। पढ़े लिखे नौजवान मित्र साथी जिनको नौकरी नहीं मिली है, रोज़गार नहीं मिली है, लेकिन हाँ कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, वो जहाँ बैठ जाते हैं वहीं पर कुछ ना कुछ कारोबार हो जाता है भाई। कोई पढ़ाने लगता है, कोई बच्चों को मार्गदर्शन देने लगता है, कैरियर गाइडेंस, गाइडलाइंस देने लगता है, क्या करो, कैसे करो। आजकल तो इतना वेन्यू निकला है कि कहना ही नहीं है, थोड़ा सा अध्ययन कर लिया जाए अगर नेट पर, इंटरनेट का ज़माना है, तो बहुत सारी बातें उसमें आती हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। तो ये समय का सदुपयोग है कि हम जब भी खाली होंगे तो कुछ ना कुछ अध्ययन कर लेंगे, किताबों का कर लें या इंटरनेट से कोई आलेख पढ़ लें, या जो कोई भी अवसर, या मान लीजिए प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में, या जो है नौकरियों के बारे में, या कैरियर कैसे संवारें, किस क्षेत्र में कितनी गुंजाइश है, कितनी संभावनाएं हैं, अगर इसका अध्ययन कर लें हम, तो समय का सदुपयोग भी हो जाएगा, औरों के काम भी हम आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने के पहले हम एक गीत सुन लेते हैं, फिर और भी अन्य बातें होंगी। लीजिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा नगमा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो हमने गीत भी सुना और गीत के साथ साथ संदेश भी सुना। हम और भी गीत सुनेंगे, लेकिन चलिए कुछ और भी बातें कर देते हैं काम की। श्रोताओं, तीज त्यौहार या पर्व त्यौहार आप जो कह लें, हमारे पूर्वजों ने हमें लगता है कि इसीलिए बनाया है कि हम अपने खाली समय का सदुपयोग भी कर लेंगे और तरोताज़ा भी हो लेंगे। लोगों से मिलने के भी त्यौहार बनाए गए। दशहरा खास करके आप याद कीजिए, हम लोग पहले बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ दूर गांव में जाया करते थे और वो भी आते थे। अपने जो होते हैं कोई रिश्तेदार अगर चला आता है कभी अपने घर में, तो ऐसा लगता है जैसे महोत्सव सा हो गया हो। फला आए हैं, उनके आने की खुशी, ये खिलाओ वो पिलाओ, यहाँ सुलाओ वहाँ बैठाओ। तो ये हमारी तहजीब है, हमारा संस्कार है, हमारी सभ्यता है और हमारे पूर्वजों ने इसी को तो बहुत ही शानदार ढंग से जिया है। तरह तरह के पर्व त्यौहार बनाए गए, हंसी मजाक के भी बनाए गए, देवताओं के स्तुति गायन के लिए, पूजा पाठ के लिए भी त्यौहार बनाए गए, मिलने जुलने के भी त्यौहार बनाए गए। दूर से जो परिवार के परिजन होते हैं वो त्यौहारों में घर लौट आते हैं, खुशियाँ इस तरह से मिलजुल करके बांटी जाती हैं। हम उन्हीं त्यौहारों में आज एक त्यौहार की बात करना चाह रहे हैं जो त्रिपुरा की पहचान भी है और त्रिपुरा राज्य का गौरव भी है। जी हाँ, खर्ची पूजा या खारची पूजा, खर्ची पूजा भी कहते हैं, खारची पूजा भी कहते हैं। खर्ची पूजा हमारे देश के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख और ऐतिहासिक हिंदू त्यौहार है। यह हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शुरू होने वाला 7 दिवसीय उत्सव है जो त्रिपुरी समुदाय के 14 कुल देवताओं, चतुर्दश देवता की आराधना और पृथ्वी माता के शुद्धिकरण को समर्पित है। जी हाँ, खर्ची शब्द त्रिपुरी भाषा के दो शब्दों खर, जिसका मतलब है पाप, और ची, जिसका मतलब है सफाई, से मिलकर बना है। यानी इसका अर्थ हो गया पापों और अशुद्धियों की सफाई। पूजा के पहले दिन शाही पुजारियों, जिन्हें चंताई कहा जाता है, द्वारा सभी 14 देवताओं को सैदरा नदी ले जाया जाता है और पवित्र जल से स्नान कराने के बाद वापस मंदिर लाया जाता है। यह भव्य उत्सव मुख्य रूप से अगरतला, पुराने अगरतला स्थित 14 देवताओं के मंदिर, जिसे चतुर्दशा देवता मंदिर भी कहते हैं, में आयोजित किया जाता है। मूल रूप से यह त्यौहार शाही परिवार से जुड़ा हुआ है और इस दौरान भक्त देवताओं से राज्य और लोगों की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो श्रोताओं, सच में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमें यही सिखाती है कि सिर्फ अपने लिए ही आराधना मत करो, बल्कि जन हिताय च, आत्मनो मनोरथाय जन हिताय च, अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए तो है ही है, जनहित के लिए हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं। वो आपको याद होगा, शांति पाठ गाते हैं ना हम लोग, औषधय शांति, वनस्पतय शांति,

तो यह है हमारी सभ्यता और उसका रूप इसमें दिखता है आपको खर्ची पूजा में। इस त्यौहार को 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इसमें त्रिपुरा के 14 पैतृक देवताओं और धरती माता की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस पूजा में बहुत काफ़ी हर्ष उल्लास का माहौल देखा जाता है। खर्ची पूजा पारंपरिक हिंदू और आदिवासी उत्सव भी है, जो हर साल जुलाई या अगस्त महीने में अगरतला स्थित 14 देवताओं के मंदिर, चतुर्दशा देवता मंदिर में आयोजित

काफ़ी हर्ष उल्लास का माहौल देखा जाता है। खर्ची पूजा पारंपरिक हिंदू और आदिवासी उत्सव भी है, जो हर साल जुलाई या अगस्त महीने में अगरतला स्थित 14 देवताओं के मंदिर चतुर्दशा देवता मंदिर में आयोजित होता है। तो ये देखिए, हम अपने बिहार में हैं, हमारे यहाँ भी अनेक त्यौहार हो, छठ पूजा दुनिया भर में आज धूम मचती है। जब कभी भी चैती छठ आए या नवंबर वाला आपको कार्तिक वाला छठ आए, तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जलसा हो रहा हो। तो ये है लोक आस्था, जिसमें लोक आस्था में आदमी आदमी से जुड़ता है, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे यहाँ छठ में क्या क्या नहीं होता और देखकर कितनी खुशी होती है, वैसे ही ये खर्ची पूजा भी त्रिपुरा में ऐसा ही है, जहाँ पर लोग खुशियाँ मनाते हैं और सभी एक दूसरे से मिलजुल करके बधाइयाँ देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। तो ये एक माहौल है जो हमें तरोताज़ा, इसी से मैंने कहा कि पर्व त्यौहार हमारे पूर्वजों ने इसीलिए बनाए हैं कि हम बैठ करके अपने खाली समय का सदुपयोग कर रहे हैं। अब आप देखिए ना, जब रोपनी का समय ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय जब बैठकी हो जाएगी, लोग कहते हैं कि भाई हाँ बैठकी ही है, सब काम हो गया बैठकी ही है, उसी समय आप याद करिए सावन के झूले आ जाते हैं, कजरी गाई जाती है झूम झूम करके, मस्ती के साथ में, जिस मस्ती के साथ में रोपनी हुई है गीत गा गा करके, उससे कहीं और ज़्यादा मस्ती झूले पर देखी जाती है। तो ये है समय का सदुपयोग, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई उच्च नीच नहीं, सभी लोग झूला पर शरीक होते हैं, झूलते हैं, गाते हैं, भगवान का गीत भी उसमें होता है, खुशियाँ भी और भी हंसी मजाक के साथ भी मनाई जाती हैं। ज़्यादातर अरे रामा से ही वो गीत शुरू होते हैं, कजरी वाले। तो ये है आनंद। तो खाली समय का हम सदुपयोग भी करें और पर्व त्यौहारों को भी मनाएं। और आइए अब एक और गीत सुन लेते हैं आगे बढ़ने के पहले।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, ये आजकल साइबर क्राइम्स जो हैं उनसे हर व्यक्ति को बड़ी सावधान रहना है, खास करके अपना ATM, अपना OTP किसी के साथ भी साझा न करें, भूल कर भी नहीं। चलिए हम बात कर लेते हैं। अब आजकल आपने देखा होगा फोटोग्राफी जो है वो पहले वाली अब नहीं रही, अब तो प्री वेडिंग भी फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होता है, और उसको बड़े पर्दे पर अब दिखाने का शौक लोगों को है। ये क्या होता है कि फोटोग्राफरों के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर हो जाता है। फोटोग्राफी में कैरियर की बात अगर हम लोग करते हैं तो आजकल शानदार, देखिए सिनेमा, आपको यूट्यूब, बहुत सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स, UTT करके बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जहाँ पर अब अगर आप में हुनर है फोटोग्राफी का तो आप उस हुनर का प्रयोग करिए और कमाइए। तो ये कैरियर का चीज़ है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी का क्षेत्र आज केवल अब शौक ही नहीं रह गया, बल्कि यह विशाल और अत्यधिक लाभदायक करियर विकल्प बन चुका है। मित्रों, इस क्षेत्र में आप वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी और फोटो जर्नलिज्म जैसे विभिन्न माध्यमों से असीमित आय और रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में छुपा है आपके करियर का हिसाब किताब। तो ये एक चीज़ हुई फैशन और विज्ञापन फोटोग्राफी के भी क्षेत्र में, फैशन डिजाइनरों, पत्रिकाओं और ब्रांड्स के लिए उत्पादों और मॉडल्स की तस्वीरें खींचना, जो कि ग्लैमर और अच्छी कमाई से भरा क्षेत्र है। वाइल्ड लाइफ और ट्रैवल फोटोग्राफी की बात करिएगा, ट्रैवल एजेंसियां, पर्यटन विभाग और पत्रिकाओं के लिए

प्राकृतिक दृश्यों, जंगलों और वन्य जीवों को कैमरे में उतारना एक अच्छा करियर का आयाम देता है। फ्रीलांसिंग और स्टॉक फोटोग्राफी भी है। आप स्वतंत्र रूप से अपना स्टूडियो शुरू कर सकते हैं या अपवर्क और शटर स्टॉक जैसी वेबसाइटों पर अपनी तस्वीरें ऑनलाइन बेचकर कमाई कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कोर्सेज भी हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। 12वीं के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से फोटोग्राफी में डिग्री डिप्लोमा यदि आपने कर लिया तो समझिए कि अवसर ही अवसर है। आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें, बहुत सारे अनुभव भी उस संस्थानों से मिल जाएंगे। तो श्रोताओं, देखिए अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमें अपने कार्यक्रम को अब यहीं विश्राम देना होगा। तो आज के इस कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी अपना प्रसारण सुन रहे थे, युवावाणी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीत। गायक कलाकार हैं मीरा सिन्हा। क्षमा करेंगे, गायक कलाकार हैं रीना सिन्हा।

रीना सिन्हा के गए इसी बरसाती गीत के साथ ही लोकगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी पटना है। अब रउआ चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहले बाड़न कि युवा लोग के भविष्य के साथे कोनो खिलवाड़ बर्दाश्त ना कल जाई। नई दिल्ली में एनडीए संसदीय पार्टी के साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बतौलें कि प्रधानमंत्री बैठक में कहलन कि पेपर लीक मामला के दोषी लोग के कड़ा सजा मिली। उ कहलन कि श्री मोदी छात्र के साथ साथ युवा के अच्छा भविष्य खातिर प्रतिबद्धता जतौले बाड़न। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरा दिन आज दोनों सदन के कार्यवाही विपक्ष के हंगामा और टोका टोकी के बीच सुचारू रूप से चलल। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के कार्यवाही ठीक ठाक चलल। राजद के गौतम कृष्णा के एगो सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बतौलन कि सरकार शिक्षक के तबादला खातिर शिक्षक स्थानांतरण नीति लाइल बिया, एकरा तहत प्रक्रिया शुरू हो गई बा। श्री तिवारी कहलन कि TRE4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग के जल्दीय अधियाचना भेज दिहल जाई। हमार संवाददाता बतौले कि आज विधानसभा में 7 गो आहुत महत्वपूर्ण विधेयक पेश कल गई। एमे बिहार जुआ विधेयक, बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक, बिहार चीनी उपकर्म अर्जन संशोधन विधेयक और बिहार कृषि भूमि विधेयक 2026 शामिल बा। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार कहलें कि बिहार चीनी उपकर्म संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पास भइला से राज्य में गन्ना उद्योग के नया ऊर्जा मिली। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री कुमार कहलें कि ऐसे रोजगार के नया अवसर बढ़ी। विधान परिषद में भी आज के कार्यवाही में कई गो महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कल गई। ग्राम पंचायत में होल्डिंग टैक्स वसूली के मुद्दा पर सरकार अपन रुख साफ कैले बिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विधान परिषद में विपक्षी सदस्य के आशंका के दूर करत कहले कि गरीब पर टैक्स लगावे के बात पूरी तरह से निराधार आ भ्रामक बा। मुख्यमंत्री कहलन कि सरकार गरीबन पर कोनो नया टैक्स नइखे लगावत। उ विपक्ष से यह मुद्दा पर कोनो भ्रम ना फैलावे के अपील कैले बाड़े। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज जीविका के तहत चुनल गई 2446 गो अभ्यर्थी लोग के नियुक्ति पत्र बंटलन। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के दौरान श्री चौधरी नियुक्ति पत्र देत वक्त कहलन कि राज्य सरकार युवा लोग के नौकरी देवे के संकल्प लेके काम कर रहल बिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहलन। राज्यसभा सांसद आ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज संसद के कार्यवाही में हिस्सा लेलन। श्री कुमार राज्यसभा के सदस्यता लिहला के बाद पहिलका बेरी संसद के कार्यवाही में शामिल भइलन। इससे पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात भी कैलन। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय भइला से बरखा के सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग आज भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल, शेखपुरा, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम आ दक्षिण मध्य हिस्सा में कई जगह पर तेज हवा के साथ बरखा के अलर्ट जारी कैले बा। उन्हें सुपौल, अररिया आ

0: किशनगंज समेत प्रदेश के उत्तर पूर्व हिस्सा में कई जगह पर बरखा के दौरान ठनका गिरे के आशंका बा। मौसम विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान कटिहार जिला के मनिहारी में सबसे ज्यादा 109 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कल गई बा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र आ प्रदेश में अलग अलग हिस्सा में भारी बरखा के वजह से गंडक, कोसी, बागमती आ कमला बलान समेत कई गो नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखल जा रहल बा। हमार संवाददाता बतौले कि कई जिला के निचला इलाका में पानी फैल गईला से लोग के परेशानी के सामना करे के पड़ रहल बा। हमार गोपालगंज संवाददाता बतौले कि वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़ल गईल बा, गंडक नदी के जलस्तर बढ़ गईल बा, बाकी पानी के बहाव अभी सामान्य बनल बा। एने जिला अधिकारी समीर सौरभ विभागीय अधिकारी के संगे बांध के निरीक्षण कैलन आ जरूरी निर्देश दहलन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पांचवा सक्षमता परीक्षा के परिणाम जारी कर देले बा। बोर्ड के अध्यक्ष त्यागराजन SM परिणाम जारी करत बतौलन कि 5 जून के भेल परीक्षा में सब श्रेणी के 30% छात्र पास भेल बाड़न। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का प्रसारण किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आप सुन रहे वाणी अपन लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी, और आज आपके साथ श्रोता भाई बहन के साथ हम बनी सुगिया बहन और हमरा साथ बनी सुमन भाई। सुमन भाई नमस्कार।
1: सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई के ओर से प्रणाम। सुगिया बहन रहो के नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: सुगिया बहन देखी अब रोपनी जोन बा, अगर ये जुलाई महीना अंतिम चल रहा बा
0: और मतलब हमने के एकदम खत्म के कगार पर बा।
1: हाँ, जौन पहले स्थिति बा
0: जी,
1: तौन अभी तक हमने के 24-25%
0: जी
1: पूरा जिला में रोपनी भई बा
0: जी।
1: तो रोपनी के जोन रफ्तार बा उ कम बा, आ कारण एक बा कि देखी वर्षा तो कम भैले बा
0: जी।
1: हमने के जो नहरी क्षेत्र बा, नहरी क्षेत्र में भी पानी नहीं पहुँच पा
0: जी।
1: जल संसाधन विभाग बा, जो सिंचाई विभाग बा, उ नहर में फुल पानी छोड़ता, लेकिन जगह जगह तो बड़की नहर निखे गई
0: जी। बिल्कुल,
1: बड़की नहर से भी
0: मतलब जो खेत हमनी के खेत नहर से दूर बा ओकरा के में खेती करे में हमनी के ज्यादा परेशानी
1: बा। देखिए जो खेती के जो सिंचाई के व्यवस्था बा हमनी के जिला में
0: जी,
1: बड़की नहर से माइनर छोट छोट नहर ओकरा से निकलल बाड़ी सन, छोट नहरन से अरहा टाइप के जोना के कहल जाला
0: ताल जकरा के भी कहल
1: जाला, ताल तो नहीं, करहा जोन होखेला कि एक जगह से दूसरा जगह
0: पानी ओकरा के पहुंचावल जा सके,
1: तो खेत तक वो पानी पहुंचावे के सबसे बड़ साधन है करहा, पानी, आहर, यह सब साधन बा
0: जी जी।
1: अब सच्चाई ये बा कि देखी मैक्स अधिकतम जगह गाँवे गाँव ये सब ध्वस्त हो गए सिंचाई व्यवस्था, कहीं अतिक्रमण हो गई, कहीं ओकर साफ सफाई ना भइल, तो इससे जोन नहर के पानी बा, जोन सिंचित क्षेत्र के पानी बा
0: पर्याप्त मतलब जस्ट उचित जगह तक पहुँच

0: पीछे पहुंच पावत। अब ओकर असर हमनी के धान के रोपनी पर पड़ रहा बा। जैसे नहरी क्षेत्र में देखें राजपुर के एरिया बा, नासरीगंज बा, काराकाट बा, सूर्यपुरा बा, नोखा बा, ये सब नहरी क्षेत्र बा, अभी भी एजा रोपनी के रफ्तार बहुत तेज नहीं है। तो यह से हमनी के जो प्राचीन जो पटवन के प्रणाली बा, ओकरा के अपनावे के पड़ी, ओकरा के सुदृढ़ करे के पड़ी। हमनी के जोन करहा बा, बाहा बा, पैन बा, आहर बा, तालाब बा, पोखर बा, ओकरा के सुदृढ़ करके ओकरा के
1: फिर से वापस हमनी के ओही स्थिति में लावे के जरूरत।
0: जोन तनी मनी अगर कोई दो चार कट्ठा कोई ओकरा के भर भूर कइले बा, तो ओकरा के मोह त्याग के ओकरा के छोड़े के पड़ी। और सरकार के भी दायित्व बा, प्रशासन के दायित्व बा, चूंकि कोर्ट के भी आदेश बा कि जल निकायन के ओकरा के अतिक्रमण ना कइल जा सके, ओकर बंदोबस्ती ना कइल जा सके, तो ओकरा के मुक्त करा के तबे हमनी के जोन धान के कटोरा जोन भात जोन शाहबाद के
1: पूरा भर सके।
0: हाँ, तो धान के कटोरा के जोन स्थिति बा तो ना के बरकरार रखल जा सकेला। और देखी रवा आजकल देखनी हाँ कि देखी अस्पतालन में बड़ी संख्या में बढ़िया बढ़िया घर के औरत लोग बा बीमार होके पहुँचल बा, अधिकतम में कुपोषण के शिकार वालों।
1: जी देखिए बहुत अच्छा विषय हुआ उठेले बने। एक और मुख्य कारण बा फास्ट फूड, जोन की हमनी के मतलब हर तीसरा चौथा घर में खाए के देखे कि मिलता कि बच्चा के देखी बड़ा के देखी पास्ता मैगी बर्गर पिज्जा ये सब चीज़ के या कुरकुरे मुरमुरे ये सब पता ना कितना चीज़ रहेला दुकान में बच्चा सब भी खालन। एकर सीधा असर हमनी के सेहत पर पड़ता।
0: सुगिया बहन जो कहनी है फास्ट फूड, फास्ट फूड तो हमनी के भोजपुरी में है। भोजपुरी जो संस्कृति बा, भोजपुरी जो क्षेत्र बा, ओकरा ले बढ़िया सतुआ से बढ़िया फास्ट फूड का बा
1: जी, लेकिन
0: एक मिनट में बन के तैयार होके वाला
1: घोरी या खाई। सही बात कहनी है, लेकिन अभी जो फैशन के दौर में चल रहा बा जंक फूड,
0: कहनी है जंक फूड जो की सड़ल गलल बा, सड़ा गला के जो बनता और ओकरा में कोई तरह के विटामिन नहीं है, तो ये के चलते आदमी बीमार पड़ रहा है।
1: आँख मांगता रंग बिरंगा चीज देख के खाए के, आँख दिमाग के मैसेज देता, दिमाग कहता जीव के कि तू खा, लेकिन हमनी के शरीर तो वो मांगत नहीं है। तो एकरा पर हमनी के विचार करे के जरूरत बा और सबके समझावे के।
0: एकरा में देखी सबसे बड़ चीज बा के गृहिणी लोग के बहुत आगे आवे के पड़ी, अपना बच्चन के समझावे के पड़ी। जैसे हमनी के यह क्षेत्र के लोग शाहबाद के कोई चाहे बिहार के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहीं अगर कोना में जाई तो 10 गो अगर मिल जाई जाई तो कहल जाए कि आज लिट्टी पटका जाओ। हमने के ना कहल जाए कि आज पिज्जा बर्गर बन
1: जी, जी बिल्कुल सही बात।
0: लेकिन नया पीढ़ी लिट्टी से भी दूर हो रहा है
1: जी।
0: तो
1: हम परंपरा के हमने के
0: जोन मतारी लोग जोन बच्चन के भोजन दी तो उन्हें
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ऐसे हमने के जरूरत बा कि बढ़िया अनाज खाई जाओ, पौष्टिक अनाज खाई जाओ, साबुत अनाज खाई जाओ,
1: मल्टीग्रेन आटा खाई जाओ, जो ना में कि
0: मकई मल्टीग्रेन जोन कहत नहीं हमनी के देखी मेरवन के जोन रोटी रहे, मेरवन के रोटी जोन बनत रहे मल्टीग्रेन, तो आज के देन बा।
1: आज देखी बात दोनों मिला के चीज एक
0: खाली गेहूं के रोटी के भोजन में कहीं स्थान ना रहे, कहीं प्रचलन में खाली गेहूं के रोटी ना होत रहे, बल्कि ओकरा साथ चना पिसा जाए, मकई पिसा जाए, बाजरा के रोटी रहत रहे,
1: ओकरा साथे साथे ओमें मड़ुआ भी डालल जाते
0: रहे, मड़ुआ के रहे जो हमनी के भोजन के मुख्य आधार रहे। तो आज सब खत्म हो गए और दवाई में बड़ बड़ कंपनियन
1: के जितना पैसा बा सब दवाई में फेंका जाता है।
0: बड़ बड़ जोन कंपनी बा ना एक चम्मच दो चम्मच डाल के ओकरा के आल कहता कि मल्टीग्रेन है, 10 किलो गेहूं में आज 100 ग्राम में दूसर कुछ डालता है कहता कि मल्टीग्रेन है,
1: देखिए
0: ओकर भी मात्रा।
1: सुमन भाई तो एक ओकरा के कहे ना हमनी के जब घर से गेहूं पिसावे जाता तो वही करी हमनी के मिला के
0: हमनी के एकर देखी बहुत बड़ा संदेश भी बा कि मोटा अनाज खाए के
1: जी।
0: मोटा अनाज के उत्पादन खातिर जो ना के श्री अनाज कहल जा रहा बा ओकरा के अति सरकार अनुदान भी दे रहा बा, और हमनी के फिर से अपना पुरातन खान पान के ओरे चले के चाहिए। देखिए प्रकृति के भी नियम है सुगिया बहन कि जौन आज बा तो काल
1: कल ना रही,
0: आ जौन कल रही तो फिर
1: परसों
0: ना रही, लौट के फिर आज के
1: तरफ जगह दुनिया जैसे गोल पर फिर वही तरह घूम के वही जगह पर
0: भोजन भी जरा फैशन है भोजन दोनों वही स्थिति बा। आज जौन 50 साल भोजन रहे तो लौट के धीरे धीरे आ रहा
1: फिर वापस आ
0: 50 साल पहले के जौन पहनावा बा तो लौट के आ रहा
1: जी।
0: तो हमनी के एकरा पर देखे के चाहिए कि अपन इतना देर मत कर दीजा

0: पूरा लागल जन जितना कमाई
1: कमा
0: बा
1: के रख ले बने, वो
0: तो
1: सब
0: पहले
1: डॉक्टर
0: दर
1: के
0: दवाई
1: पास
0: में
1: दे
0: चल
1: दी।
0: जाए।
1: जी जी देखिए
0: आज
1: बहुत
0: का
1: अच्छा।
0: खबर सुनाई तनि बताई
1: जी
0: फरिया
1: जरूर।
0: फरिया के।
1: देखिए अभी तो हमनी के बहुत अच्छा रुआ जानकारी देनी है, और एकरा बाद हमनी के आज के कार्यक्रम के तहत कुछ खबर, कृषि संबंधित खबर जानल जाए। ओकरा बाद आज की बातें के अंतर्गत एक वार्ता के माध्यम से हमनी के जानकारी लिया जाए अमित कुमार सिंह से। वार्ता के विषय रही श्री विधि तकनीक से धान की खेती। नई उम्र की नई फसल में आज हमनी के चर्चा के विषय हुई केले की उन्नत खेती, और आज की नसीहत में एक बार फिर से चर्चा कर जाए विषय हुई धान की रोपनी जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जरूर करें, और साथ ही साथ हमने के मौसम के पूर्वानुमान भी जानल जाए। ये रहे हमने के कार्यक्रम के कुछ विवरण, और अब समय बाकी हमने के खबर जानल जाओ।
0: देखी खबर ई बा एगो
1: जी बताएं
0: कि पहले जब हमने के दाखिल खारिज कोनो जमीन के खरीद बिक्री करत रही जा
1: जी
0: तो अगर दाखिल खारिज कराना आवश्यक होखेला
1: जी।
0: दाखिल खारिज हो कि रजिस्टर टू में जोन अंचल कार्यालय में वह जमीन पर खरीदे वाला के नाम चढ़ जाला या जेकरा बाप ओकर नाम चढ़ जाए। मान ली हमनी के कोनो खानदाने के संपत्ति बा बंटवारा कर लेने जाए तो वही जा हमनी के
1: नाम
0: नाम चढ़ जाए ओकरा के दाखिल खारिज कहे नहीं जाए म्यूटेशन भी कहे नहीं जाए तो पहले ओकरा खातिर कोनो पैसा ना लागत है कोई शुल्क ला लागत रहे। अब सरकार ओकरा पर 200 रुपया दाखिल खारिज खातिर शुल्क लगा रहल बा। एकरा खातिर सरकार कानून भी बना रहल बा और एकरा के विधानसभा में भी उठौल प्रश्न भी कैलस और एकरा पर कानून बना के अब 200 रुपया लागी। तो अब जौन भी दाखिल खारिज हुई ओकरा पर 200 रुपया लगावे के प्रावधान कैल गेल।
1: चलिए एक तो बहुत अच्छा खबर बा कि जेकर मतलब नीखे कागजी कार्रवाई पूरा हो सकत ओकर हो जाए।
0: हाँ दूसरा ये बाकी देखें खेती से नीखे संबंधित लेकिन सबका से संबंधित बा कि आजकल देखी घरे घरे व्यक्ति व्यक्ति के हाथ में फोन बा
1: जी।
0: ऐसा ऐसा फोन पर आदमी सच मान लेते न गलती सलती जितना कुल आवत आ संदेश ओकरा के सही मान लेते न आ अपन खुल के मन भर ओकरा पर लिखत न ओकर जवाब देते न। तो अगर रवा सोशल मीडिया पर कोई के गलत शब्द के प्रयोग करके भेजतनी कोई के अपशब्द लिख देतनी कोई के इज्जत रवा के साथ खिलवाड़ कर तनी लिख के शब्दन के माध्यम से तो अब ओकरा पर सरकार CCA एक्ट लगाई एक तरह से वो गुंडा एक्ट होखेला और क्राइम कंट्रोल एक्ट ओकरा के कहल जाला। आ वो बहुत ही कठिन धारा है आ सबसे माने खतरनाक धारा मानल जाला। तो यह से जितना किसान भाई लोग माने अपना अपने अपना घर परिवार के भी संदेश जरूर दें कि भाई कोई पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करे के कोई के धर्म पर कोई के जाति पर कोई के व्यक्ति पर अगर व्यक्तिगत मामला में अगर वो आपत्तिजनक टिप्पणी करतलन कोई खराब बात लिखतलन तो उनका पर भी CCA एक्ट लग जाए गुंडा एक्ट में कार्रवाई पुलिस करी।
1: देखिए कुछ खबर हमरो पास बा
0: बताएं।
1: देश के कई राज्य में मानसून के सक्रियता के बाद धान के रोपाई के कार्य तेजी से चल रहल बा। कृषि वैज्ञानिक किसान के सलाह दे रहल बनी जा कि खेत में उचित जल प्रबंधन बनौले रखें और संतुलित मात्रा में उर्वरक के प्रयोग करें ताकि फसल के अच्छा बढ़वार हो सके। कृषि विभाग खरीफ फसल विशेषकर धान मक्का और दलहनी फसल में कीट और रोग के नियमित निगरानी करे के सलाह दिले बा। किसान से कहल गेल बा कि खेत के समय समय पर निरीक्षण करें और ओका आवश्यकता पड़े पर कृषि विशेषज्ञ के सलाह से ही अनुशंसित दवा के उपयोग करें। कृषि विशेषज्ञ ये भी कहले बानी किसान के कि बरसात के मौसम में भिंडी लौकी तोरई करेला और अन्य मौसमी सब्जी के वैज्ञानिक खेती अपनावे के सलाह दिया जा रहा बा। एकरा से कम समय में अच्छा आय प्राप्त कर जा सकता साथ ही खेत में जल निकासी के उचित व्यवस्था बनौले रखे के भी सलाह दिया गई बा।
0: बड़ा बढ़िया समाचार बतौनी और अब देखिए अब हमने के कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जा
1: जी
0: और अब सुनल जाओ हमने
1: श्री विधि से धान के उन्नत खेती पद्धति कैसे हमने के अपनावल जा।
0: आ श्री विधि ऐसा न सुगिया बहिन
1: जी
0: अगर कम समय में बिचड़ा 14 दिन में लगावे के बाद एक गो लगावे के बाद एकरा में पैदावार बहुत अधिक होला।
1: एकरा में पानी के भी उतना जरूरत नहीं है जितना अन्य धान में बा।
0: हाँ तो आई हमने के सुनल जा।

श्री तकनीक धान उत्पादन की एक नई विधि है जिसे धान की सघनीकरण पद्धति कहते हैं। धान उत्पादन की श्री विधि एरोबिक विधि है जिसमें मूल्य संवर्धित नाइट्रोजन उर्वरकों, एकीकृत पोषण प्रबंधन एवं जैविक उर्वरकों के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह तकनीक छोटे एवं मध्यम जमीन वाले किसानों के लिए काफ़ी लाभदायी है। श्री विधि में खेती करने के लिए ऊंची जमीन एवं मध्यम जमीन जहाँ जल जमाव न होती हो उपयुक्त है। वैसे श्री विधि में धान की लगभग सभी किस्मों की खेती की जाती है, लेकिन कम अवधि का धान ज़्यादा अच्छा होता है। ऊंची जमीन के लिए अभिषेक, सहभागी, साबौर अर्धजल, MTU 1010, ललाट, शिवम, बिरसा धान 101, बिरसा धान 102, प्रभात, सदाबहार, तुरंता, वंदना, ये सब किस्में जो हैं 110 से 120 दिन की प्रभेद वाली हैं। इसका बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगा और जो रोपाई की पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं और इसका जो उपज होगा 60 से 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर होता है। मध्यम जमीन वाला जो प्रभेद है, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र सरस्वती, राजेंद्र श्वेता, सरजू 52, राजेंद्र सुवासिनी, NDR 359, राजेंद्र कस्तूरी, सीता संतोष, ये 125 से 135 दिन की प्रभेद है। इसकी उपज क्षमता 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। सुगंधित धान राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र कस्तूरी, राजेंद्र भगवती, पूसा सुगंध 2, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 4 एवं 5, कामिनी, पूसा बासमती 1, ये प्रभेद जो है 125 से 135 दिन में तैयार होती हैं। इसकी उपज क्षमता 65 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। संकर धान के लिए जो प्रभेद हैं, पंत संकर धान 1, एराइज 6201, 6444, PHB 71, सहयाद्री 2, 3 एवं 4, PSC 833, 37, पूसा RH10, KRH2 125 से 135 दिन समय लेते हैं। इसका उत्पादन क्षमता 75 से 85 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। बीजों उपचार, बुआई से पहले स्वस्थ बीजों की छटनी कर लेनी चाहिए। इसके बाद 10% नमक का घोल का प्रयोग करें। नमक का घोल बनाने के लिए 1 किलोग्राम सामान्य नमक 10 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में बारी बारी से थोड़ा थोड़ा बीज डालकर हिलाएं। भारी एवं स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएगा और कटा पीटा सड़ा टूटा हल्का बीज ऊपर तैरने लगेगा। तैरने वाले सारे खराब बीज को फेंक दें तथा नीचे बैठे बीज को साफ पानी से 2-3 बार धो लें। फिर इस बीज को फफूदनाशी एवं जीवाणुनाशी दवाओं के घोल से उपचारित करें। 5 ग्राम इमीसान 6 या 10 ग्राम बेबिस्टिन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 लीटर पानी में घोल लें और इस घोल में बीज को 5-6 घंटे तक उपचारित करें। इसके बाद बीज को छानकर छाया में सुखा कर बोएं। नर्सरी तैयार करने के लिए बीज स्थली के लिए वैसे खेतों का चयन करना चाहिए जहां सिंचाई के सुविधा के साथ साथ जल निकास की भी सुविधा हो। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए 250 वर्ग मीटर में नर्सरी डालना चाहिए। बीज स्थली को छोटे छोटे क्यारियों में विभक्त कर लेना चाहिए। 1.5 मीटर चौड़ा, 4 से 5 इंच ऊंचा तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार रखना चाहिए। मिट्टी हल्की और भुरभुरी हो तथा बीज स्थली के ऊपर बर्मी कंपोस्ट की हल्की परत डाल दें। सिंचाई या अतिरिक्त पानी हटाने के लिए प्रत्येक नर्सरी प्लांट के बीच लगभग 1.5 फीट का फासला रखें। बीज को 36 घंटा पानी में भिगोने के उपरांत छानकर 24 घंटा जूट के बोरे में रखकर नमी बनाए रखने के बाद अंकुरित धान के बीज को सावधानी पूर्वक बीज स्थली के ऊपर समान रूप से छिड़क दें। तब उस बीज स्थली में बर्मी कंपोस्ट खाद के हल्की परत ऊपर से डाल दें। इसके बाद बीज स्थली को नम बनाए रखने के लिए पुआल से ढक दें। फिर पुआल के ऊपर फुहारे विधि से सिंचाई करें। ध्यान रहे कि कहीं जल जमाव न हो। बिचड़ा इस विधि में मात्र 8 से 12 दिन का बिचड़ा जब पौधे में 2 पत्ती आ जाएं रोपने के लिए प्रयोग करें। इस तरह के बिचड़ा से बहुत कल्ले निकलते हैं एवं मजबूत जड़ों का विकास होता है जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। खेत की तैयारी के लिए श्री विधि से धान की खेती के लिए धान को रोपने से 1 माह पहले खेत में सड़े हुए गोबर की खाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर या बर्मी कंपोस्ट 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें तथा रोपाई के 4-5 दिन पहले खेत की तैयारी अच्छी तरह

0: से कर लें। अगर खेत में कीड़ा मकोड़ा जैसे कजरा, दीमक, पिल्लू, गिडार इत्यादि हैं तो खेत का उपचार कर लें। उपचार के लिए 2.5 लीटर क्लोरोपायरीफास 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर या 20 से 25 किलोग्राम बालू में मिलाकर छिड़काव करके पाटा लगा दें, लेकिन खेत में नमी रहने पर बालू मिलाकर छिड़काव करना होगा। रोपाई के लिए खेत की तैयारी करते समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम स्फुर, 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर मिला करके अच्छी तरह से खेत को समतलीकरण कर दें। रोपाई के लिए खेत के चारों ओर 8 इंच गहरी और 1.5 फीट चौड़ी नाली बनाते हैं और जल जमाव की स्थिति में जल निकास के लिए खेत में 8 से 10 मीटर पर सहायक नाली बनाते हैं। रोपाई करते समय खेत गीला होना चाहिए एवं खेत में 1 इंच से कम पानी होना चाहिए। बिचड़ा कम दिनों का होने के कारण बहुत ही कोमल होता है, इसलिए बिचड़ों को उखाड़ने एवं रोपाई में सावधानी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बिचड़े की रोपाई श्री मार्कर के द्वारा चिन्हित स्थानों पर करें। रोपाई वर्गाकार विधि में होती है। नर्सरी से निकालने के बाद बिचड़ों को आधे घंटे के अंदर तैयार खेत में रोपाई कर दें। बिचड़ों को मिट्टी में अधिक गहराई पर न गाड़ने के बजाय केवल मिट्टी में हल्का संपर्क स्थापित करा दें। पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करना है वो 8 से 10 टन बर्मी कंपोस्ट या 12 से 15 टन कंपोस्ट खेत में तैयारी के समय दे दें। नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत की तैयारी के समय दें। रोपाई के 25 से 30 दिन बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर उपरिवेशन करें। रोपाई के 55 से 60 दिन बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर उपरिवेशन करें। सिंचाई की जो प्रबंधन करनी है इस विधि में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन खेत में हमेशा नमी रहना चाहिए। इस विधि से खेती करने के लिए सिंचाई सुनिश्चित करना होता है ताकि जब पानी चाहिए दिया जा सके। श्री विधि में खेत एक अंतराल पर नम एवं सूखा रखें, परंतु कल्ले निकलने के 8 से 10 दिन बाद से तथा कटाई के 10 से 12 दिन पूर्व तक 2 से 2.5 सेंटीमीटर पानी रख सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए पौधे से पौधा एवं कतार से कतार के बीच पर्याप्त स्थान होने से खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कोनोविडर यंत्र का आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। कोनोविडर यंत्र को रोपाई के 10 से 12 दिन के बाद 10-10 दिन के अंतराल पर 3-4 बार चलाते हैं, जिससे खरपतवार निकालने पर हर बार 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज बढ़ता है। कोनोविडर यंत्र मिट्टी को नीचे से पलट देती है, जिससे मिट्टी में हवा लगती है, जिससे रूट जड़ का अच्छा विकास होता है तथा कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। खरपतवार मिट्टी में मिल जाने पर वह हरी खाद का काम करता है तथा खेत में मल्चिंग भी हो जाता है, जिससे खेत का नमी बरकरार रहता है। श्री विधि से धान की खेती की कुछ विशेषताएं हैं। एक जगह पर प्रत्येक बिचड़े से 40 से 80 कल्ले फूटते हैं तथा उसमें अच्छी बालियों वाले 25 से 50 कल्ले मिलते हैं और हरेक बाली में 150 से 200 दाने आते हैं। इस विधि से बीज की बचत लगभग 75 से 80% तक होती है। जल की बचत लगभग 35 से 40% होती है। रासायनिक उर्वरक की बचत 20 से 25% तक हो जाती है। खरपतवार का बेहतर उपयोग हो जाता है। जैविक खाद का अत्यधिक प्रयोग होता है। फसल उपयुक्त समय पर पक कर तैयार हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण में सुविधा होता है एवं ऊंची एवं मध्यम जमीन के लिए उपयुक्त है। छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। श्री विधि की खेती में जो सावधानी बरतनी है वो ऊंची एवं मध्यम जमीन के लिए उपयुक्त है, ये जल जमाव वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। पौधशाला और खेत की दूरी होने पर काफ़ी परेशानी होती है। कोमल बिचड़ा क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। वर्षा आश्रित क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। श्रम संसाधन कमी वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। तो किसान भाई इन बातों को ध्यान में रख करके श्री विधि से खेती करें तो उत्पादन लगभग 1.5 से 2 गुना तक हम लोग पा सकते हैं।
1: बढ़िया जानकारी देने अमित कुमार सिंह जी के, श्री विधि तकनीक से धान के कैसे खेती कर जाए। और यहाँ का अमित कुमार सिंह जी के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद अच्छा सा जानकारी खातिर।
1: और देखिए अब कार्यक्रम के आगे बढ़ावे से पहले कुछ संदेश बा,
2: फिर हमने के वापस अपना चर्चा पर आवल जी।
1: तो आए हमने के संदेश सुन लिया।

0: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं, जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतरवर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
1: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
0: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
2: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
3: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
4: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पर कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
5: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
0: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
6: श्रोता भाई बहन, अभी हमने का सुनत रहने जा संदेश। और देखें, केला के उन्नत खेती जोन बा, केला बहुत लाभदायक बा।
7: केला के तो कई गो व्यंजन बा, लेकिन व्यंजन तबे हमने के बना सकब जा और लाभ तबे उठा सकब जा जब हमने के अगर खेती कर जी। तो कौन कौन उन्नत किस्म बा ये बताइए।
6: देखिए, हाल के दिन में केला इतना महंगा बिक भी रहल बा
7: जी जी,
6: कि खेती करे वाला किसान भाई लोग के बहुत लाभदायी बा। तो एकरा के हमनी के बम्पर पैदावार खातिर टिशू कल्चर से, अगर विधि से
7: जी,
6: G9 किस्म के पौधा के चुनाव करत रही जाए और एकर पौधा जुलाई अगस्त के

0: बीच में 7 × 5 फीट के दूरी पर रोपित कैल जाय, जोना में कि 1 एकड़ में लगभग 1200 से 1400 पौधा लागी। और एकरा खातिर अच्छा जल निकासी वाला उपजाऊ दोमट मिट्टी रखे के चाही और 15 से 35 डिग्री के बीच के तापमान केला खातिर सबसे बढ़िया होखेला। खेत के 2 से 3 बार गहरे जुताई करके पाटा लगा लेवे के चाही ताकि मिट्टी जोन बा भुरभुरा रहे। और देखिए प्रत्येक गड्ढा में लगभग 10 से 15 किलो सड़ल गोबर अगर डाल के और 250 ग्राम नीम के खली डाल के केला के पौधा लगावल जाए तो हमें रोग लागे के संभावना कम रहेला।
1: देखिए वो बहुत अच्छा बतैनी 9G वाला। एकरा साथे साथे एक दो और प्रभेद बा जेकरा के हमनी के उपयोग में लावल जा सकता, मालभोग, रोबस्टा, पुअन और स्थानीय, ये सब उपयुक्त स्थानीय किस्म है।
0: आ देखिए अब हमनी के अब धान के जो रोपनी बा वो पहले धान के रोपनी खाती हमनी के जुलाई के अंतिम सप्ताह तक रोपनी हमनी के कर ले
1: खत्म, मतलब मान के चली कि लास्ट कगार पर।
0: हाँ,
1: चल रहा
0: बा
1: हमनी के अब जितना जल्दी हो सके, 10 दिन अभी और समय बचल बा, दस
0: हाँ।
1: दिन में हमनी के एकदम रोपनी खत्म कर देवे के बा।
0: अगर ओकरा से देरी करत हैं तो ओकर उत्पादन पर, धान के उत्पादन पर असर
1: पड़ी।
0: और अब चला चला देखिए मौसम के मिजाज पर भी एक नज़र हमनी के डालल जाओ तो मौसम के अधिकतम तापमान जौन बा 30 डिग्री सेल्सियस और 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहल। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 90% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 75% रहल। 30 मिलीमीटर वर्षा आकल गिल बा। और देखी जौन पूर्वानुमान बा कि आसमान में घना बादल छौले रही, जिला में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी तेज चले के या मध्यम से भारी वर्षा होके के संभावना बा। और गरज चमक, वज्रपात, तेज आंधी, तेज सतही हवा चली, ऐसे हमनी के बचाव करे के चाही। कहीं बाहर निकले से पहले भी कौन ऐसा जगह पर ना ठहरे के चाही पेड़ उड़ के नीचे जहाँ के संभावना होके कि वज्रपात
1: से हमनी के बचे के
0: बचे के चाहिए।
1: जितना भरपूर प्रयास कर सकते नहीं जा करी जा।
0: अब देखें कार्यक्रम के समय और आ गई बस सुगिया बहन, तब चले गल मती लिहल जा। सब श्रोता भाई बहन के सुमन भाई की ओर से प्रणाम, सुगिया बहन
1: सुगिया बहन के तरफ से भी सब श्रोता भाई बहन के और सुमन भाई रुआ के भी नमस्कार।

अभी हमारे किसान भाई अपना प्रसारण सुन रहे थे, किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए, भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम है सांझ गीत।

ये थी कार्यक्रम की पहली पेशकश और आपने सुना सर्वेश मिश्रा के साथ सुचिता व्यास को। एमडी प्यासा ने गीत लिखा था, संगीत रचना थी संतोष सुमन की, फिल्म थी आपन भइल पराया। श्रोताओं आइए सुनते हैं सुरेश वाडेकर के साथ नीलिमा नीले को। भाई जी भोजपुरिया के लिखे गीत की तर्ज बनाई है दिलीप दत्ता ने, फिल्म है आवत हुई हैं सांवरिया। लेकिन गीत सुनने के पहले एक छोटा सा संदेश।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत। आइए सुनते हैं आपन माटी आपन देश फिल्म का एक गीत। उदित नारायण और खुशबू जैन की आवाजें हैं। एस के चौहान ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है आरपी ठाकुर ने।

0: सुन सोचतानी की काहे न आपन बिजनेस बढ़ाई
1: तो रोकले के बा
0: रोकले तो कोई नहीं खे बाकी समझ में नहीं खे आवत की कैसे मदद मांगी
1: हमरा से
0: तुहरा से तो बताओ
1: आकाशवाणी बाना हम सुनले बानी की आकाशवाणी के नेटवर्क देश भर में फैलल बा
0: तो ओकरा से हमरा की का फायदा बा
1: फायदा बा जौना शहर में चाही विज्ञापन के माध्यम से ओही जगह पहुंच जाई
0: तो इहो बता द कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे होई
1: बहुत आसान बा हम बतावत बानी नंबर लिखी 8700014242
0: ओ 8700014242
1: हाँ
0: तो बहिने फोन लगावत बानी 8700014242 पर

तो श्रोताओं, अभी आप अनुराधा पौडवाल को सुन रहे थे। फिल्म थी पिया तो से नैना धागे। कार्यक्रम का समापन मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में धरती मैया फिल्म के इस गीत से।

मानवीय संवेदनाओं को स्पर्श करने वाला गीत अभी आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी की अमर आवाज़ में। धरती मैया फिल्म के इस गीत को लिखा था लक्ष्मण शाहबादी ने, संगीत रचना थी चित्रगुप्त की। श्रोताओं, इसी नगमे के साथ ही सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7:15 हुए हैं, लीजिए सुनिए सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास के आज के इस अंक के साथ मैं हूं संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। जिला जनसंपर्क कार्यालय रोहतास से प्राप्त सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आज दिनांक 21/7/2026 को रोहतास जिले के सभी प्रखंडों की चयनित 66 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। दावत प्रखंड के जमसोना पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविर में जिला पदाधिकारी रोहतास और पुलिस अधीक्षक रोहतास ने भाग लेकर आम जन से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। शिविर के दौरान पात्र लाभुकों के बीच राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र तथा शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को आयोजित होने वाले सहयोग शिविरों का उद्देश्य प्रशासन को जनता के और अधिक निकट लाना है। एक अन्य सूचना के अनुसार आज दिनांक 21/7/2026 को मॉडल सदर अस्पताल सासाराम के प्रांगण में 100 दिवस टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त और सिविल सर्जन रोहतास के संयुक्त नेतृत्व में 500 टीबी से ग्रसित मरीजों के बीच पौष्टिक आहार युक्त फूड बास्केट यानी पोषण किट का वितरण किया गया। वहीं आज दिनांक 21/7/2026 को रोहतास जिले में प्रस्तावित अटल कला भवन के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए जिला पदाधिकारी रोहतास ने सासाराम के दवनपुर में भूमि का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि कला एवं संस्कृति विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित अटल कला भवन रोहतास जिले के लिए महत्वपूर्ण सौगात सिद्ध होगा। यह भवन जिलेवासियों के लिए कला, संस्कृति एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा, जहां विभिन्न कला विधाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजनों को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कला एवं संस्कृति के विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है तथा अटल कला भवन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 12 जुलाई को

क्षमा करेंगे, 22 जुलाई को 12 परीक्षा केंद्रों पर होगी अवर निरीक्षक सहायक अवर निरीक्षक लिखित परीक्षा, कदाचार मुक्त संचालन को लेकर अधिकारियों की हुई ब्रीफिंग। जिला रोहतास बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 22 जुलाई 2026 को रोहतास जिले के सासाराम में 12 परीक्षा केंद्रों पर एकल पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा में 6624 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा के स्वच्छ निष्पक्ष कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण संचालन तथा विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी रोहतास के निर्देशानुसार आज DRDA सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी की संयुक्त अध्यक्षता में केंद्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग आयोजित की गई। वहीं कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार कैमूर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जैतपुर भगवानपुर में साइबर पुलिस स्टेशन कैमूर की ओर से साइबर मंगलवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। वहीं एक अन्य खबर में जन समस्याओं के त्वरित निष्पादन हेतु कैमूर जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित किया सहयोग शिविर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं आइए सुन लेते हैं एक नगमा।

0: एक कली मुस्काई फिल्म के इसी गीत के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल, विधानमंडल समीक्षा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
2: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, MPR स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, MLC की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा UDID कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
3: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
4: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
5: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
6: कोई मतदाता ना छूटे।
7: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का किया आह्वान। नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों पर टैक्स लगाने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं, विपक्ष भ्रम न फैलाए। विधानसभा में आज बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 समेत 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। और मौसम विभाग ने भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि गरीबों पर टैक्स लगाए जाने की बात पूरी तरह निराधार और भ्रामक है। मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में आज इस संबंध में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि गरीबों पर टैक्स लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर भ्रम ना फैलाए।
2: गरीबों के ऊपर टैक्स लगने वाला ऐसा कोई प्रावधान उसमें नहीं। सरकार ने एक नियम बनाया, इसके आधार पर रूल्स में कई चीजों का बदलाव करेंगे, लेकिन जो ये उन्होंने चर्चा किया कि पूरी तरह गरीबों के ऊपर टैक्स लगाने की बात है, पूरी तरह निराधार है।
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने राज्य में बंद चीनी मिलों को लेकर भी स्पष्ट घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इन्हें पुनः चालू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। श्री चौधरी ने कहा कि गोपालगंज, सकरी और रैयाम चीनी मिल जल्द शुरू की जाएगी।
2: बंद चीनी मिलों में कई जगह पर, चाहे वो गोपालगंज में हो, सकरी हो और रैयाम, ये तीन जगह पर हम लोग अभी ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आईपीएल जो भारत सरकार की संस्था है उसके साथ हम लोग एमओयू करने जा रहे हैं। तीन नए जगह पर हम लोग तुरंत चीनी मिल प्रस्तावित करके शुरू करने जा रहे हैं।
0: बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे और टोका टोकी के बीच सुचारू रूप से चली। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विधानसभा में राजद के गौतम कृष्ण के एक सवाल के जवाब में बताया कि सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए शिक्षक स्थानांतरण नीति लाई है, इसके तहत प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्री तिवारी ने कहा कि TRE-4 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अधियाचना भेज दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज विधानसभा में 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इन विधेयकों में बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक, बिहार माल सेवा कर संशोधन विधेयक, बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक, बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक, बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक, बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक और बिहार कृषि भूमि विधेयक 2026 शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि दूसरे राज्यों के चिकित्सकों को

0: बिहार में प्रैक्टिस करने के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्व प्रमाणन पत्र के आधार पर उनका राज्य में निबंधन किया जाएगा।
1: कोई भी चिकित्सक जिसका रजिस्ट्रेशन पहले किसी और राज्य में था या फिर केंद्र में है, तो वो आकर बिहार में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो पहले करनी पड़ती थी। अब सिर्फ वो स्व प्रमाणन पत्र देंगे तो उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
0: गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि बिहार चीनी उपक्रम संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में पारित होने से राज्य में गन्ना उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
2: इस विधेयक के तहत रोजगार का सृजन होगा, गन्ना उत्पादन की वृद्धि में काफी नीति काम करेगी। जो मॉडल कॉम्प्लेक्स हम लोग लाए निवेशकों को लाने के लिए, उस पर सरकार काम करेगी।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज जीविका के अंतर्गत चयनित 2446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह के दौरान श्री चौधरी ने नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के संकल्प को लेकर कार्य कर रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित थे। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संसद की कार्यवाही में भाग लिया। श्री कुमार राज्यसभा की सदस्यता लेने के बाद पहली बार सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पांचवीं सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM ने परिणाम जारी करते हुए बताया कि 5 जून को आयोजित परीक्षा में सभी श्रेणी के 30% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस परीक्षा में 14,512 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें 4,353 शिक्षक सफल हुए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम आवेदन संख्या की मदद से बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा में सफल शिक्षकों की आगे काउंसिलिंग की जाएगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल, शेखपुरा, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत प्रदेश के उत्तर पूर्वी

0: में कई स्थानों पर बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 22 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार जिले के मनिहारी में सबसे अधिक 109 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश के बीच राज्य के अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले में 4 जबकि सीवान जिले में 2 लोगों की मौत हो गई। इधर हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि जिले के असरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी कोरियन गांव में वज्रपात की चपेट में आने से आज एक युवक की मौत हो गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश के विभिन्न भागों में भारी बारिश के कारण गंडक, कोसी, बागमती और कमला बलान समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न जिलों में निचले इलाकों में पानी फैल जाने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गोपालगंज संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकि नगर बराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पानी का बहाव अभी सामान्य बना हुआ है। जिले में सभी बांध और छरकी सुरक्षित हैं। इधर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने विभागीय अधिकारियों के साथ बांधों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता साजिद इकबाल ने बताया कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है, फिलहाल कोई खतरा नहीं है।
2: अभी हम लोगों का जितना भी तटबंध, सारण तटबंध जो है 80 से 152 और उसके बीच जितना संलग्न छरकी है सब सुरक्षित है। तो इस स्थल में कटाव निरोधक कार्य बार जो कराया गया है परकुपाइन से दीपो छरकी से लेके महारानी छरकी तक, और आज यहाँ जो है बहुत अच्छा कारगर रहा है।
0: राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने आज दानापुर छावनी स्थित चर्च परिसर में सिंदूर का पौधा लगाकर ऑपरेशन सिंदूर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। श्री हसनैन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आयोजित यह अभियान हमारे वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और उनकी राष्ट्र की सुरक्षा के संकल्प को सम्मान का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर के खिलाफ फर्जी सोशल मीडिया नेटवर्क चलाने और पैसों के बल पर चुनाव प्रभावित करने की शिकायत की है। पटना के दानापुर स्थित 4 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दानापुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने की सूचना के बाद इन स्कूलों में जांच की गई, कहीं कोई विस्फोटक अथवा ज्वलनशील पदार्थ नहीं पाया गया है। प्रदेश के विभिन्न पंचायतों में आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गईं और कई आवेदनों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। रोहतास के 66 पंचायतों में आयोजित सहयोग शिविर के दौरान दाखिल खारिज, राशन कार्ड, शौचालय, महिला सुरक्षा समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतों का निपटारा किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार दावत प्रखंड के जमसोना पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल हुए। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आज साइबर सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड अंतर्गत सर्वा माध्यमिक विद्यालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्रों को साइबर अपराध से बचाव और सुरक्षा के टिप्स दिए गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 26 जुलाई को पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिलाधिकारी तरनजोत सिंह और अन्य अधिकारियों ने प्रस्तावित सभास्थल नदी घाटी योजना उच्चतर विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। बेगूसराय के सिमरिया धाम में 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 इलेक्ट्रिक और लकड़ी के शवदाह गृह का निर्माण किया गया है। इन शवदाह गृहों को नगर परिषद प्रशासन को सौंप दिया गया। दरभंगा के विभिन्न शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में आज CPR जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों को हृदयघात की स्थिति में तत्काल CPR सहायता देने की तकनीकी जानकारी दी गई। सारण जिला मुख्यालय छपरा में जनगणना 2027 के दूसरे चरण के सफल संचालन के लिए चार्ज अधिकारियों और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कल से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 6 दिनों का होगा। रोहतास जिले के विक्रमगंज स्थित मंडल कारा में कैदियों के लिए 4 दिवसीय वर्मी खाद उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का

0: आह्वान किया। नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, गरीबों पर टैक्स लगाने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं, विपक्ष भ्रम न फैलाए। विधानसभा में आज बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 समेत 7 महत्वपूर्ण विधेयक पारित। और मौसम विभाग ने भोजपुर, रोहतास, बेगूसराय समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में आज तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्निकांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
2: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
3: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
2: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
6: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हील चेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पोल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
8: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्णिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता होमी चंदन।
9: पूर्णिया जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के कार्यों में तेजी लाने के लिए सभी 14 प्रखंड मुख्यालयों और नगर निगम क्षेत्र स्थित उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के DCR भवन में विशेष शिविर लगाए गए। शिविर में विद्युत विभाग के अधिकारियों, विभिन्न सरकारी बैंकों के प्रतिनिधियों और अधिकृत सोलर वेंडरों ने भाग लिया। पूर्व सत्यापित 1414 लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें 476 लोग शामिल हुए। इस दौरान 87 नए आवेदन प्राप्त हुए। 26 लाभार्थियों ने सोलर पैनल लगाने के लिए वेंडर का चयन किया और 15 लोगों ने ऋण के लिए आवेदन दिया। एक लाभार्थी के घर सोलर संयंत्र भी लगाया गया। विभाग का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़कर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और बिजली खर्च में कमी लाना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के 551 सरस्वती विद्या निकेतन यानी आदर्श विद्यालयों का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके तहत पूर्णिया जिले में 19 सरस्वती विद्या निकेतन शुरू किए गए हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण और समग्र शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 211 डिग्री कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके तहत पूर्णिया जिले में 6 नए डिग्री कॉलेजों में

पठन पाठन शुरू हुआ। जिले के मां कामाख्या स्थान डिग्री कॉलेज के उद्घाटन समारोह में भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह और जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों को उनके आसपास की गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार नए संस्थान खोल रही है। जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सेवा संवाद समाधान अनुसरण प्रणाली के तहत नियमित जन सुनवाई जारी है। जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से आए लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, जन कल्याण योजनाओं और अन्य विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। यह कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जिला मुख्यालय के साथ साथ अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर शीघ्र समाधान हो सके। जिले में स्वास्थ्य विभाग टीबी उन्मूलन

0: और अन्य विभागों से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। यह कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जिला मुख्यालय के साथ साथ अनुमंडल, प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर शीघ्र समाधान हो सके। जिले में स्वास्थ्य विभाग टीबी उन्मूलन अभियान को प्रभावी ढंग से चला रहा है। इस क्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से लाइन बाजार स्थित रेड क्रॉस भवन में टीबी मरीजों को पौष्टिक आहार के पैकेट वितरित किए गए। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया ने बताया कि टीबी मरीजों के लिए दवा के साथ संतुलित पोषण भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निक्षय पोषण योजना के तहत इलाजरत मरीजों को 6 महीने तक हर माह 500 रुपये की सहायता राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि वे पौष्टिक भोजन खरीद सके। उन्होंने लोगों से टीबी के लक्षण दिखाई देने पर समय पर जांच और इलाज कराने की अपील भी की। पूर्णिया जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूर्णिया व्यवसायिक संघ तथा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यवसायियों ने सुरक्षा और यातायात से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में डायल 112 की गश्ती व्यवस्था को और सुदृढ़ किया गया है, जिसके तहत 39 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल तैनात किए गए हैं, जो औसतन 10 से 11 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। साथ ही जिले की सीमाओं पर पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है और मुख्य मार्गों पर नियमित गश्ती जारी है।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्णिया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता होमी चंदन।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानमंडल की कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा। विधानसभा की कार्यवाही मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्षी सदस्यों ने अपराध, नीट सहित कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए। हालांकि हल्के विरोध के बाद वे शांत हो गए। इसके बाद प्रश्नकाल शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने राज्य के विद्यालयों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जिनके भवन या तो जर्जर होकर गिर चुके हैं, या फिर 2 कमरों में 500 से 600 विद्यार्थियों की पढ़ाई कराई जा रही है। इस मुद्दे पर सरकार को घिरता देख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने के भीतर स्थिति में सुधार का दावा किया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानक की तुलना में लगभग 63,000 अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। इसी दौरान मंजीत सिंह ने कहा कि राज्य के 33 जिलों में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 2,294 विद्यालयों का अपना भवन नहीं है। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने कहा कि बिहार के लगभग 40% विद्यालयों के भवन गिर चुके हैं, जिसके कारण इन विद्यालयों को दूसरे गांवों में स्थानांतरित करना पड़ा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़े प्रश्नों पर भी सदन में विस्तृत चर्चा हुई। जदयू विधायक श्याम रजक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के कुल 3,456 पद स्वीकृत हैं। राज्य में कुल 96 विद्यालय स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में 91 संचालित हो रहे हैं। मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विभाग ने बीपीएससी के माध्यम से 1,048 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी है। राजद विधायक गौतम कृष्णा ने शिक्षा मंत्री से पूछा कि सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए अगस्त से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल क्यों नहीं हुई। जवाब में शिक्षा मंत्री श्री तिवारी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 20,000 शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE4 के संबंध में जुलाई के अंतिम सप्ताह तक बिहार लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। इसके बाद आयोग भर्ती प्रक्रिया की आगे की रूपरेखा तय करेगा। योजना एवं विकास मंत्री

मान सिंह कुशवाहा ने सदन को बताया कि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत विधायकों को बिना निविदा के 25 लाख तक की योजनाओं की अनुशंसा करने का अधिकार मिल सकता है। अभी विधायक मात्र 15 लाख तक की योजनाओं की अनुशंसा किया करते हैं। ध्यानाकर्षण के पूरक प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के दो दर्जन से अधिक सदस्यों ने अपनी बात रखी। आलोक कुमार मेहता, प्रमोद कुमार, नीरज बबलू, अख्तर उल ईमान, वशिष्ठ नारायण सिंह और माधव आनंद समेत कई विधायकों ने कहा कि 15 लाख रुपए तक की सीमा मौजूदा समय में उचित नहीं है। सभी सामग्रियों की कीमतों में वृद्धि हुई है, इसलिए 25 लाख रुपए तक बिना निविदा के काम कराने की शक्ति विधायकों को दी जाए। साथ ही विधायक निधि की राशि भी 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 से 8 करोड़ रुपए की जाए। भोजन अवकाश के बाद सदन ने चर्चा के उपरांत 7 विधेयकों को पारित कर दिया। बिहार में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, कंप्यूटर अथवा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से खेले जाने वाले जुए सहित सभी प्रकार के जुए पर प्रतिबंध लगाने संबंधी बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हो गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि विधेयक में बकारा, 6 व्हील, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, केम इन द फेयर, क्रैप्स, फ्लश, ब्रेग, 3 कार्ड गेम, केनो, पॉन्टून 21, रूलेट, स्लॉट्स, सुपर पैन 9 तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य भाग आधारित खेलों पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में जुए से संबंधित विज्ञापन देने, उसके मुद्रण, प्रकाशन अथवा किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार पर रोक लगाने का प्रावधान भी किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बताया है कि बिहार में अब स्वप्रमाणन प्रमाण पत्र देकर दूसरे राज्यों में पंजीकृत डॉक्टर और नर्सें भी प्रैक्टिस कर सकेंगी। इस संबंध में विधानसभा ने चिकित्सकों के प्रैक्टिस से संबंधित बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 तथा नर्सेज स्वास्थ्य आगंतुक दाई और प्रशिक्षित दाई से संबंधित बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर भी मुहर लगा दी है। सदन ने बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 तथा बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026 पर भी सहमति प्रदान की। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार किरणेश कुमार। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को बिहार विधान परिषद की कार्यवाही सुचारू रूप से चली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही राजद के सुनील कुमार सिंह ने कार्यस्थगन की सूचना पढ़ी। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 50 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक होल्डिंग टैक्स वसूलने का फैसला लिया है। यह फैसला जन विरोधी है और सरकार इसे वापस ले। सभापति ने कहा कि कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं है, इसलिए इसे नामंजूर किया जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि गरीबों से टैक्स वसूलने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। गांव के अंदर होल्डिंग होने पर टैक्स देना होगा। नल जल के लिए 30 रुपए और साफ सफाई के लिए 30 रुपए टैक्स देना होगा। भाकपा माले की शशि यादव के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब देते हुए गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू करने के लिए नीति निर्धारित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि बंद पड़ी गोपालगंज, सकरी और लोहट चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। इन चीनी मिलों को चालू करने के लिए भारत सरकार की संस्था आईपीएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बेतिया राज की संपत्तियों को निहित करने वाली नियमावली 2026, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2025, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती संशोधन नियमावली 2024 तथा बिहार काश्तकारी संशोधन नियमावली 2023 की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखी। राजद के अजय कुमार सिंह, जदयू के नीरज कुमार और राजद के सुनील कुमार सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सूखे नशे पर रोक लगाने की मांग की। भोजन अवकाश के बाद सदस्यों के गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। भाजपा के दिलीप कुमार सिंह, जदयू की रीणा यादव, भाकपा के संजय कुमार सिंह, निर्दलीय महेश्वर सिंह, राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, कांग्रेस के मदन मोहन झा समेत अन्य सदस्यों के गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा हुई। सरकार के आश्वासन के बाद सदस्यों ने अपने अपने संकल्प वापस ले लिए। अभी आप विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार आलोक चंद्रा, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार किरणेश कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।

राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आप नहीं बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में

0: नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खरगे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खरगे ने कहा कि नीट पेपर लीक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा से लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में 2 सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने

0: अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में ICP शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपने विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे लोकधारा के अंतर्गत भोजपुरी लोकगीत और गजलों की महफिल सजेगी 9:15 पर। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग और 10:30 पर सुनिएगा चित्रपट तरानी।

कार्यक्रम संबंधी जानकारियां समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम।

ई मनपसंद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला नगमा। आप सभी सुधी श्रोताओं की फरमाइश पर गाइड फिल्म से गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशें आप सबकी मिली हैं। आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराओं बिहार से आप हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से आप हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से इस गीत को सुनना चाहते हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। और नेहरू पार्क निज़ामाबाद तेलंगाना से आप हैं अजीज़ भाई, मतीन भाई, शैख चांद, फारूक फुल वाले और सईद खलील, मुबीन भाई और करीम शैख सलीम ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और एक गीत इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और जयपाल यादव। तो चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गाइड फिल्म का ये नगमा।

इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, स्वरबद्ध किया था सचिन देव बर्मन ने। चलिए हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में अंदाज फिल्म का गीत। सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा, और इसी गीत को सुनने के लिए पुराना तालाब डुमराहों से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान आज अंसारी और शबनम भानो, तथा जेल रोड बक्सर से राज एस टी अंसारी और फातिमा नाज ने भी हमें मेल किया है। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप भी हमारे श्रोतागण। आप हैं वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, और एक फरमाइश और भी इस गीत के लिए आती हुई दिख रही है। श्रोताओं, आप हैं वैष्णव कॉलोनी सनावद से पाकिजा रेडियो श्रोता संघ की ओर से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमस खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, और जामा मस्जिद रोड से आप हैं हाजी इसाक लोलामानी, मोहम्मद उनमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। हम आपको सुनाते हैं आपकी फरमाइश का अंदाज फिल्म का ये गीत। लीजिए सुनिए।

0: व्यास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आजाद देश के गुलाम, जी हाँ, ये फिल्म है जिसका गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल के जुगल स्वरों में। शब्दकार समीर, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फरमाइशें आप सभी श्रोताओं की। आप हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुंवर, अनुश्री श्याम कुंवर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई से आपने यह मेल किया, और छोटी बलिया करजत मुंबई से आप हैं अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फुलवाले, इमरान अहमद फुलवाले, कापसड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आप हैं बीटिया आमरा नसरीन, आसमा परी राबिया मंदशा, आशु अहमद फुलवाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमी मोहम्मद राइन, अखलाक अहमद फुलवाले और समस्त फुलवाले फैमिली की ओर से ये फरमाइश है। और साथ ही साथ एक फरमाइश इस गीत के लिए और है, आप हैं मेहर नगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता गवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर, टुक टुक। चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और आप हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश, रेशिता और आपके परिवार के सभी सदस्यगण। तथा साथ ही एक और फरमाइश आई है इस गीत के लिए, आप हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, डब्बू बब्बू। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

और कार्यक्रम के आखिर में आइए सुन लेते हैं साजन फिल्म का एक गीत, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम नहौना प्रखंड सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। और इसी गीत के लिए हमें आपकी भी फरमाइशें आई हैं श्रोताओं। आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया देशानी और निमित, और साथ ही साथ इस गीत को सुनना चाहते हैं।

हमारे श्रोतागण, नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, जेके मिश्रा, श्वेता रानी पाठक, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, केशवी, गिल्लू, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। और एक और फरमाइश इस गीत के लिए है, जी हाँ, आप हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया और मास्टर अल कबीर। और ये फरमाइश आपने हमें ईमेल किया है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। और रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का भी ईमेल हमें मिला है। गांव फ्रांसी जिला हिसार से ईमेल करते हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। चलिए सुन लीजिए कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम के हवाले से बस इतना ही। दीजिए संजय चतुर्वेदी को आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
4: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद

0: समापन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
1: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार

0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की, ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले तीन दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचएस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, जुगराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं। देखिए सुनिए लोकधारा कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुधा सिन्हा की गाई इस बरसाती गीत से।

हर डिम डिम बाजेला डमरुआ, अरे डिम डिम बाजेला डमरुआ, अरे करी सुमी।

अभी आपने शिव भजन सुना प्रेम रंजन सिंह और साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है महफिल। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में सबसे पहले हरिहरन को। नगमानी गा रहे हैं अकबर हैदराबादी।

ठहर जाओ कि हैरानी तो जाए, तुम्हारी शक्ल पहचानी तो जाए। गुलाम अली की गई इसी रचना के साथ ही आज की ये महफिल अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गीतकार की जिसने मुंबई की शहरी चमक दमक के बारे में ये बात कही।

0: पागल।
1: दोस्तों आनंद बख्शी की गीतकारी का संसार इतना विस्तृत है कि आधे घंटे के एक कार्यक्रम में उनकी गीतों की दुनिया को समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपने तरीके से याद करेंगे इस अनमोल गीतकार को जो 21 जुलाई 1930 को जन्मा था रावलपिंडी में। वो रावलपिंडी जो बंटवारे के बाद सरहद के उस पार रह गई, तब ये लड़का 17 बरस का था और उसकी प्यारी रावलपिंडी उससे छूटी जा रही थी। इस रावलपिंडी की याद में बहुत बरस बाद आनंद बख्शी ने लिखी एक नज्म, और ये नज्म हमें फोन पर सुना रहे हैं उनके बेटे राकेश बख्शी।
2: जब पार्टीशन हुआ था, बख्शी साहब 17 साल के थे, तो उन्होंने 17 साल जिंदगी जीती रावलपिंडी में, तो दूसरा देश बन गया, लेकिन वो थी बख्शी साहब की जन्मभूमि, उन्होंने वहां जन्म लिया था, वहीं गाने सुने, वहां उधर का कल्चर उन्होंने पिया और खाया, जिसकी वजह से वो गीतकार भी बने आगे जाके। पंजाबी कल्चर, फोक कल्चर, सूफी गाने, जब यहाँ हिंदुस्तान आए तो उन्होंने एक नज़म लिखी, उस नज़म का नाम है रावलपिंडी, और तकसीम के ऊपर है उनकी फीलिंग्स, और उन्होंने इस खूबसूरत पोएम को इस तरीके से लिखा जैसे कि एक आदमी एक बिलेवड के लिए लिखता है या कोई जो छूट जाता है जिंदगी में पीछे, उन्होंने उस हिसाब से ये पोएम लिखी है। तो मैं ये नरेट करना चाहता हूँ दो अपने बख्शी साहब फैंस के लिए।
1: जरूर।
2: सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, सनहा ये मेरी जिंदगी सह गई, मैं यहाँ आ गया वो वहां रह गई, कुछ ना मैं कर सका, कुछ ना मैं कर सका, देखता ही रह गया, कुछ ना वो कर सकी, देखती रह गई। लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, लोग कहते हैं तकसीम सब हो गया, जो नहीं बट सकी चीज वो रह गई। याद पिंडी की आती है अब किस लिए, याद पिंडी की आती है अब किस लिए, मेरी मिट्टी थी जहलम में वो बह गई। इन जमीनों ने कितना लहू पी लिया, ये खबर आसमानों तलक है गई। रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, रास्ते में खड़ी हो गई सरहदें, सरहदों पे खड़ी बेबसी रह गई। दे गई घर गली शहर मेरा किससे, दे गई घर गली शहर मेरा किससे, क्या पता किससे बख्शी वो क्या कह गई।
1: क्या बात है।
2: ये तकसीम के ऊपर बख्शी आपका जो दर्द था कि अपनी जन्मभूमि को पीछे छोड़ के आना पड़ा
1: जी जी
2: माँ की तरह, इस पोएम से ही जाहिर होता है।
1: जी, आनंद बख्शी एक जमाने में फौज में थे, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था, वो तो फिल्मी दुनिया में बतौर गायक शामिल होना चाहते थे, लेकिन ये हो न सका। मुंबई में उन्होंने संघर्ष किया और किस्मत ने उन्हें गीतकार बना दिया। सन 1962 में आनंद बख्शी को पहली कामयाबी मिली, फिल्म थी मेहंदी लगी मेरे हाथ। सन 1965 आनंद बख्शी की कामयाबी का एक बेमिसाल साल, क्योंकि तब आई जब जब फूल खिले। इसी बरस आई हिमालय की गोद में।

ये वो दौर था जब आनंद बख्शी बाकायदा एक कामयाब गीतकार बनने के रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। सन 1967 में फिल्म मिलन के गाने उन्होंने लिखे।

आनंद बख्शी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। वो रेल से सफर कर रहे थे, एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकी थी और गांव का एक व्यक्ति मिलन फिल्म का उनका एक गाना गा रहा था। आनंद बख्शी का दिल बहुत खुश हुआ और उन्हें यह एहसास हो गया कि अब वो पक्के गीतकार बन चुके हैं, क्योंकि अब वो जन जन तक पहुंच चुके हैं। आनंद बख्शी के कुछ गानों की कहानी फोन पर

0: अपना रही हैं उनकी बेटी राकेश बख्शी।
1: शुक्रिया यूनुस जी, और मैं इतना खुश हूँ कि मैं विविध भारती पे हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं हर चैनल सुनता हूँ। मैं हिंदुस्तान में जितने चैनल हैं, बाहर के भी जो चैनल हैं, मैं ऑनलाइन सुनता हूँ। और मैं अभी भी कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई चैनल नंबर वन है भारती जो है, दैट इज एक्चुअली द रीडर्स डाइजेस्ट ऑफ रेडियो।
0: राकेश जी, बख्शी साहब की याद का दिन है और पूरा देश जो है वो उन्हें याद कर रहा है, संगीत के चाहने वाले, गीतों के चाहने वाले। हम चाहते हैं कि कुछ गानों के बनने की कहानियां आप सुनाएं।
1: बख्शी साहब का एक गाना था एक फिल्म में, जहां पर विलियन और वैम्प ने हीरो को बांध कर रखा हुआ है और उसका फैसला नहीं हो रहा कि क्या किया जाए इसके साथ। तो बख्शी साहब को एक लाइन याद आई, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ी थी या कहीं कहानी में पढ़ी थी, कि जब इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने हरमक हमला किया था हिंदुस्तान पे, तो तब जब किंग पोरस को कैद कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, तो तब ये सवाल उठा था कि क्या किया जाए उनका, उनको मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो उनको ये बात याद आई, और जो राजकोर साहब की फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश में जो सिचुएशन बनी, तो उन्होंने फिर वो वहां यूज किया, मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए।
0: क्या बात है, मतलब देखिए इतिहास से रेफरेंस लेके और उन्होंने उसे एक मॉडर्न गाने में बदल दिया।
1: यस यस,
0: एक तो अच्छा तो हम चलते हैं कि भी बड़ी दिलचस्प कहानी है।
1: हाँ, वो बख्शी साहब और जब सेटिंग चल रही थी गाने की, तो काफी वक्त निकल गया, मेरे ख्याल में एक दो दिन कुछ बात नहीं बनी, सेटिंग हो रही थी लक्ष्मी जी प्यारलाल और बख्शी साहब और डायरेक्टर साहब जीवन प्रकाश जी, और कुछ बात नहीं बन रही थी, कुछ मुखड़ा नहीं बन रहा था, कुछ अंतरे नहीं बन रहे थे, कुछ बन ही नहीं रहा था। जब तो मुखड़ा नहीं बनेगा फिर अंतरे नहीं निकल सकते, क्योंकि अंतरे मुखड़े से ही निकलते हैं। तो बड़े परेशान हो गए, फड़प हो गए वो लोग, और उन्होंने बख्शी साहब ने उठा, या बख्शी साहब उठे या लक्ष्मी जी उठे, उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, अच्छा तो हम चलते हैं। बख्शी साहब ने पूछा फिर कब मिलोगे, तो जब वो जवाब देने लगे तो बख्शी साहब ने उनको रोक दिया, उन्होंने कहा कि रुको रुको, बैठो बैठो, अभी मुझे एक आइडिया है। और वहीं उन्होंने वहीं थर्ड लाइन लिखी, जब तुम कहोगे, और उससे गाना गाने की शुरुआत होती है, अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, जब तुम कहोगे, आधी रात को, हाँ हाँ आधी रात को, कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं।
0: क्या बात,
1: तो ये वहां से वो बात निकली।
0: अच्छा,
1: गाना है अपना, एक बार सुभाष भाई साहब आए थे घर पे
0: जी,
1: उन्होंने बख्शी साहब से कहा कि मैंने नई फिल्म बना रहा हूँ, तो मैं आपको आज आके स्टोरी सुनाता हूँ। तो स्टोरी सुनते सुनते वो रात हो गई और खाने का वक्त हो गया, और खाना वाना खाया, और जब खाना खा के जब हाथ धोने चले गए बख्शी साहब वॉश बेसिन पे, तो हाथ धोते धोते बख्शी साहब ने सुभाष जी का हिसाब को कहा कि एक यार मुझे एक लाइन याद आ रही है, तेरी फिल्म का नाम सौदागर है, मुझे एक लाइन याद आ रही है, सौदागर सौदागर सौदागर, दिल लेकर दिल देकर। वॉश बेसिन में हाथ धोते धोते वो लाइन उनके दिमाग में आ गई। एक और मुझे बड़ा अच्छा किस्सा याद आ रहा है कि एक बार वो बख्शी साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे बम्बई, उनके शायद फादर आ रहे थे बाहर गाँव से, तो वो बम्बई सेंट्रल स्टेशन जा रहे थे उनके अपने पिताजी को लेने के लिए। उनके साथ एक दोस्त था उनकी गाड़ी में, उनके दोस्त अपने दोस्त की गाड़ी में गए थे, क्योंकि तब उनके पास पैसे नहीं थे अपनी गाड़ी खुद की गाड़ी खरीदने के लिए। तो दोस्त की गाड़ी में जा रहे थे और बख्शी साहब बैठे थे बाजू में और दोस्त चला रहे थे, तो वहीं पर रस्ते में कहीं बख्शी साहब ने गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, कुछ लिखना है मुझे। और उन्हें एक कागज पे लिखा कि गाना है अपना मेरे हम सफर का, राह पर इस मोड़ पर कहीं तुम,
0: किसी राह पर किसी मोड़ पर कहीं चल न देना छोड़कर।
1: हाँ, तो वो एक आगे ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा था मेरे हम सफर।
0: ओहो,
1: तो वहां से उन्होंने ये लाइन पकड़ी के गाड़ी निकल जाएगी, सड़क निकल जाएगी, लोग निकल जाएंगे, मेरा साथ नहीं छोड़ना, मेरे हम सफर।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: दोस्त है उनका हरी मेहरा, उनके दोस्त हैं जिनके रिकॉर्ड की शॉप थी, अभी भी है स्वीट, तो रोज डेली जाते थे पान खाने खार स्टेशन के बाहर। तो एक बार पान खा के वहां से निकले और वहां पर एक स्कूल है खार में, सेक्रेड हार्ट स्कूल, स्कूल के स्कूल से आगे आ रहे थे एसवी रोड की तरफ, और सामने से कोई बहुत खूबसूरत लड़की चलती हुई आ रही थी, तो वहीं पर बख्शी साहब ने वापस गाड़ी रोक दी, बोला रुक रुक रुक, मुझे कुछ लिखना है। उन्होंने कुछ अपना, उनके पास एक, जब उनके पास किताब नहीं रहती थी ना, तो वो अपना 555 सिगरेट पैकेट पे पीछे लिख देते थे लाइने, मंत्रे जो भी था, क्योंकि पेपर तब तो मोबाइल नहीं था, कुछ लोग हमेशा पेपर लेके नहीं घूमते थे, पेन तो हमेशा रहता था जेब में, राइटर है तो हमेशा पेन लेके घूमते थे। तीन चार छह महीने बाद जब एक बार ट्रायल हुआ फिल्म का, तो बख्शी साहब ले गए अपने दोस्त को ट्रायल के लिए, चलते को नई फिल्म दिखाता हूँ लगने वाली है दो हफ्ते में, वो चले गए फिल्म देखने। और जब वो गाना आया तो बख्शी साहब ने बोला, याद है तेरे को, हमने वो खूबसूरत लड़की को देखा था, तूने क्या कहा था, तूने कहा था क्या रूप पाया इस लड़की ने, तो मुझे वहीं पे लाइन स्ट्राइक की थी, और मैंने ये गाना लिखा था तब कि रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कहीं हमसे ना हो जाए।
0: ओहो, तो इस तरह से बहुत छोटी छोटी जिंदगी की घटनाओं को उन्होंने गीत का रूप दे दिया। कोई एक घटना बताइए, एक फादर के तौर पर कैसे थे बख्शी साहब, पिता

0: पुत्र की कोई घटना याद कीजिए।
1: हजारों घटनाएं हैं। दो घटनाएं जो हैं, एक तो जब मैं छोटा था तो हमेशा रात को लेट आते थे काम से, क्योंकि 70s में बहुत पॉपुलर हो गए थे बख्श साहब। 68, 64 के बाद बहुत पॉपुलर हो गए थे। जब जब फूलगले रिलीज हो गई थी, मिलन आ गई थी, आराधना आ गई थी, तो ही वॉज वेरी पॉपुलर, वेरी इन डिमांड। तो लिखते भी थे 10-15 घंटे डेली, 10 घंटे लिखना डेली, फिर रात को फिर दोस्तों की पार्टी, फिल्मी पार्टी में जाना, इवेंट्स में, अपना अवार्ड फंक्शन में जाना। काफी बार लेट आते थे रात को, हम सो जाते थे, बख्श डैडी आए घर पे, लेकिन हम तो सोए हुए रहते थे। 1-2 बजे आते थे, 3, कभी 3 बजे आते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, उनकी उनकी आदत थी, वो हमेशा आके सर को या बदन को हमारे थपथपाते थे, यू नो, लाइक जैसे माँ कैसे लोरी गाती है बच्चे के लिए,
0: हाँ
1: वो हमेशा वो बच्चे को थपथपाती है हाथ से, यू नो, हाथ के हाथ ऐसे लगा के टप टप करके। तो वो हमेशा रात को आके, ही शुड डू दैट फॉर टू मी एंड टू माई ब्रदर, टू माई सिस्टर। लेकिन उनके हाथ लगाने से मैं जाग जाता था। जब मैं जाग जाता था, वो शर्मा जाते थे और वो चले जाते थे, फिर वो फिल्म नहीं करते थे, वो छोटा कोई लोरी सुनाना या कुछ। तो मुझे याद है कि मैं हमेशा, फिर जब आते थे, अगर मैं उठ जाता था तो मैं आंख बंद ही रखता था ताकि उनको पता चल जाएगा तो चले जाएंगे। मैं आंख बंद करके उसका मजा लेता था, उनकी
0: क्या
1: उनकी
0: बात है,
1: लोरियों का। दूसरी मुझे एक बात याद है कि जब शायद कॉलेज में था, तो मैंने नाश्ता किया और अंडा छोड़ दिया, अंडा नहीं खाया मैंने। तो मेरे डैडी ने कहा कि तेरे को पता है इस अंडे का भाव क्या है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, होगा 50 पैसे, 25 पैसे, जो भी होगा, 1 रुपया होगा, आई डोंट नो। तो इसे की जब तुम छोटे थे ना, तुम दो भाई दो बहनें छोटे थे, तुम्हारी माँ एक अंडा चार टुकड़े में बांट के तुम चारों को देती थी और खुद नहीं खाती थी ताकि तुमको न्यूट्रिशन मिले। तुम्हारी माँ ने ये प्राइस पे किया एक अंडे का, बिकॉज माई फादर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स ऑफ करियर इन द बिगनिंग।
0: बिल्कुल।
1: तो तब उनके पास शायद अंडे के भी पैसे नहीं होते थे, तो एक ही अंडा हम चारों को बांटना पड़ता था फैमिली में। तो मेरे फादर ने कहा था कि ये है अंडे की कीमत, तो ये तो तुम्हारी माँ ने जो अंडे की कीमत दी है ना, वो अंडे की कीमत कभी नहीं भूलना, फूड कभी वेस्ट नहीं करना, खाना कभी वेस्ट नहीं करना,
0: क्या बात है,
1: भले वो एक अंडा ही हो।
0: क्या बात है,
1: इसी बात
0: बात
1: मुझे बड़ी अच्छी याद है कि एक बार मैं, मेरा कॉलेज में किसी के साथ अफेयर हो गया
0: जी।
1: और वो मेरे डैडी की पसंद की थी। तो मेरे डैडी ने कहा कि मिलना जुलना सब बंद करो, ये सब लव वर्व्स नहीं चलता, अभी पढ़ाई का वक्त है, पढ़ाई करो। तो मैंने झट से एकदम रूडली उनको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। मैंने कहा अरे आप तो आनंद बख्शी हो, आपने तो अभी लव स्टोरी में गाना लिखा है, आपने प्रेताप में गाना लिखा है, जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे, आपने लव स्टोरी में कुमार गौरव के लिए कितने अच्छे गाने लिखे हैं, आपने बॉबी में इतना अच्छा लगा गाना लिखा है, आपने रॉकी फिल्म में इतना लव स्टोरी लिखी, अच्छी गाने लिखे, आपने एक दूसरे के लिए कितने अच्छे लव स्टोरी गाने लिखे, अब अभी मेरी वक्त मेरा वक्त आया तो आप बोल रहे हो कि यू कैन नॉट मीट हर, अभी तुम्हारा रोमांस का टाइम नहीं है, पढ़ाई का टाइम है। तो
0: जी
1: मुझे डैडी ने कहा कि वो मेरा शौक नहीं है, वो मेरा काम है। काम में और शौक में फर्क होता है। वो मैं जो गाने लिखता हूँ लव स्टोरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ क्योंकि वो स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर की डिमांड होती है, एक सिचुएशन की डिमांड होती है, वो मैं अपनी फैमिली के लिए लिखता। अब तुम्हारा वक्त है स्टडीज करने का, लव लव स्टोरी में पढ़ने का अभी तुम्हारा वक्त नहीं है।
0: क्या बात है। अच्छा अब
1: एंड
0: मुझे बताइए
1: हाँ
0: कि बख्शी साहब की याद में आप कौन सा गाना समर्पित करना चाहेंगे अपनी तरफ से विविध भारती पर।
1: गाने तो बहुत हैं, हजार है। जैसे कि क्या होता है, हर गाना आपको एक, जब आप किस मूड में हो उस मूड के हिसाब से आपको कोई गाना अच्छा लगता है।
0: मैं समझ
1: जैसे
0: सकता
1: मुझे
0: हूं।
1: याद है एक बार मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरा अफेयर डामल डोल से चला गया था, यू नो, विद विद अ गर्ल, कॉलेज में था शायद, वो मेरा अफेयर टूट गया था, मेरा बड़ा दिल दिल का बड़ा मुझे दर्द हुआ था। तो मैं कम से कम 2 हफ्ते एक ही गाना सुनता रहा, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया था। तो मेरे डैडी ने झट से एक बार रूम में आके पूछा था क्या हो गया तेरे को, तू 2 हफ्ते से एक ही गाना सुन रहा है मेरा, कुछ लफड़ा वफड़ा नहीं हो गया लड़की के साथ कुछ? तो मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है,
0: क्या
1: जीत
0: बात है,
1: चाहेंगे हम अगर तू संग है।
0: क्या बात
1: क्योंकि काफी वक्त हम जिंदगी में, शायद अगर हमारे साथ कोई नहीं होना, हम हार मान जाते हैं। तो अगर कोई हो साथ में, माँ हो, बाप हो, लवर हो, बिलवड हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, तो हर एक इंसान को कुछ ताकत चाहिए। तो इसलिए वो गाना मुझे, आई थिंक, इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: क्या
1: ये
0: बात
1: ऐसा
0: है।
1: ही एक गाना है बख्शी साहब का जो मेरे ख्याल में किसी की भी जिंदगी के में काम आ सकता है, और ये गाना है फिल्म अंगार का, मुश्किल में है कौन किसी का, मुश्किल में है कौन किसी का, लेकर अपना नाम कभी तुम खुद को आवाज दो।
0: क्या बात है, क्या
1: क्योंकि हम
0: बात
1: काफी बार क्या होता है, हम जब मुश्किल में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दोस्तों पे, रिलेटिव्स पे, लेकिन काफी बार ये सब भाग जाते हैं ये लोग, कोई साथ नहीं देता। तो बख्श साहब ने ये कहा था मुझे कि कभी भी तुम जिंदगी में तकलीफ में होगे तो खुद को याद करो हमेशा,
0: क्या बात
1: दुनिया
0: है,
1: अपने आप साथ चलेगी तुम्हारे,
0: क्या बात है
1: लेकिन पहले खुद को याद करो, किसी
0: जी,
1: और को याद करने से पहले, भगवान को याद करने से पहले भी पहले खुद को याद करो। तो
0: वाह
1: ये लाइन, आई थिंक ये गाना किसी की भी जिंदगी के काम आ सकता है। मुझे लगता है यही एक अच्छा गाना हो सकता है जो किसी की जिंदगी के काम आ जाए।
0: जी। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बख्शी साहब की याद का दिन और आपने ये लम्हे हमारे लिए यादगार बनाए, बहुत शुक्रिया।

0: किसी का।
1: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
0: सुनो

0: किसी का।
1: आनंद बख्शी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने हर तरह के हर सिचुएशन के गीत लिखे हैं, और कमाल की बात यह है कि बातचीत को गीतों में बदल देने का हुनर है आनंद बख्शी के पास।
2: सुनो कहो, कहा
3: सुना,
2: कुछ हुआ क्या
3: अभी तो नहीं।

0: फिल्मी दुनिया के तमाम संगीतकारों के साथ आनंद बख्शी ने काम किया, और कोई ऐसा रेडियो स्टेशन दुनिया में नहीं होगा, और शायद दुनिया में कोई ऐसा हिंदी रेडियो स्टेशन नहीं होगा जहां से आनंद बख्शी के गाने नहीं बजते होंगे।
1: रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना।

फिल्मी दुनिया के युग बदलते चले गए, संगीतकारों की पीढ़ियां बदलती चली गईं और आनंद बख्शी का काम बदलता चला गया। जहां उन्होंने चित्रगुप्त के साथ लिखा तो आनंद मिलिंद के साथ भी लिखा, एसडी बर्मन के लिए गाने लिखे तो आरडी बर्मन के लिए भी लिखे, रोशन के लिए लिखे तो उनके बेटे राजेश रोशन के लिए भी लिखे, कल्याण जी आनंद जी के लिए लिखे तो विजू शाह के लिए भी लिखे। यानी संगीतकारों की ही कई पीढ़ियों के साथ बख्शी साहब ने काम किया। फिल्म फेयर पुरस्कारों की बातें करें, सन 1979 फिल्म अपनापन का ये गाना।

आनंद बख्शी ने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए हैं। आइए एक झलक सुने उनके गाए इस गाने की। फिल्म का नाम है बालिका वधू।

बख्शी साहब 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपने हजारों गाने, और उन गानों का गाने सुनने वाली जनता से अभूतपूर्व लगाव।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गीतकार आनंद बख्शी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। रस रंग लीजिए, सुनिए इस कार्यक्रम में कुछ एल्बम सॉन्ग्स।